FM 107 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई 2026। समय इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हुए हैं। मंगलध्वनि के साथ हमारी ये प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। समय सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। सभा के आरंभ में श्रोता सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरों मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, आप जानेंगे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में। कार्यक्रम विवरण में

आप सुन रहे हैं हमारी आज के कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, अभी थोड़ी ही देर बाद 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन। आज का हमारा विषय रहेगा, की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। 6:15 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार आप सुनेंगे 6:45 पर। श्री रामचरित मानस कांड आप सुनेंगे 7:20 पर। आज आप सुनेंगे उत्तरकांड से संकलित एपिसोड संख्या 369। 7:30 पर कार्यक्रम होगा नमस्कार चूरू। 8:00 हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा सुर संगम। 9:00 हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे।

9:10 पर श्रोता सुनेंगे देशगान कार्यक्रम धरा की पुकार। आप सुनेंगे 9:15 पर आपकी पसंद ईमेल्स पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम। आप सुनेंगे 9:30 पर। 10 बजे हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम होंगे। 11:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 12 बजे। 12:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा माटी के स्वर। आज के कलाकार श्रीमती छोटू देवी और साथी रहेंगे। 1 बजे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे। 1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। 2:00 आप सुनेंगे मिड डे न्यूज। दोपहर समाचारों के लिए समय है 2:15 का। दो बजकर 30 मिनट पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे तराने नए और पुराने। शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी के साथ आरंभ होगी हमारी आज की दूसरी सभा। शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। देशभक्ति फिल्मी गीत 6:10 पर होंगे। 6:20 पर संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से होंगे। 6:30 पर हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। तत्पश्चात 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। 8:45 पर हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ एट 9। 9:15 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम बाता ही चाले। ईमेल्स पर आधारित राजस्थानी राजस्थानी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गोरबंद आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। शास्त्रीय संगीत के लिए समय है रात्रि 10:30 का।

नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम चिंतन में मैं हूं आपके साथ रेडियो साथी अंकिता। हमारा विषय है की गई मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती। साथियों, जब भी हम कोई काम करते हैं, उस काम में हमें सफलता और असफलता, इनमें से जो प्राप्त होती है उसके अनुसार हम अपने काम को तोल देते हैं। अगर हम सफल हुए हैं तो हमें सुनने को मिलता है कि हमने बहुत मेहनत की है और हमने इसके पीछे बहुत लगन दिखाई है। लेकिन जब हम असफल होते हैं तो हमें सुनने को मिलता है, या हम स्वयं भी ये बात सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है। और ये सत्य भी है कि अगर पूर्णतः काम किया जाता, मेहनत की जाती तो सफलता तय थी। लेकिन जिस जिसने सफलता प्राप्त की है उसकी मेहनत आपसे कहीं ज़्यादा है, इसीलिए वो सफल हुए हैं। लेकिन इस दरमियान हम भूल जाते हैं कि जिस प्राप्ति के लिए हमने मेहनत की है, अगर हमने कोई मेहनत की है तो वो बर्बाद कभी नहीं होती, वो हमेशा आज की मेहनत आने वाले समय में काम आती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है क्योंकि हम इसे महसूस कर सकते हैं। मेहनत या तो आपको सफलता दिलाती है या फिर इतना अनुभवी और मजबूत बना देती है कि आप अगली बार सफलता प्राप्त कर सकें। अगर मेहनत का तुरंत फल न मिले तो भी वह मेहनत अनुभव के रूप में आपके हमेशा काम आती रहेगी। लगातार मेहनत करने से अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ता है, जो जीवन में हर जगह काम आता है। जब भी हम किसी रूप में मेहनत करते हैं, हो सकता है उस रास्ते पर वो हमारे काम नहीं आई, लेकिन उससे संबंधित अन्य रास्तों पर वो हमें ज्ञान जरूर देती है। मेहनत अगर सही दिशा और सही योजना के साथ की जाए तो सफलता भी निश्चित है। सफलता पाने के लिए सुदृढ़ संकल्प और धैर्य की आवश्यकता होती है। हो सकता है फल देरी से मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। अगर फल की प्राप्ति देरी से हो भी रही है तो भी जो मेहनत हमने की है वो प्रेजेंट में हमें एक ऐसा ज्ञान प्राप्त करा देगी, एक ऐसा ज्ञान दे देगी जिससे हम जीवन को सही और सरल रूप में जीना सीख जाते हैं। जीते सभी हैं, लेकिन किसी के पास समय ही समय है और किसी के पास समय है ही नहीं। इसके पीछे भी हमारा अनुभव, हमारा ज्ञान ही है जो हमें हमेशा कुछ मेहनत करने के बाद प्राप्त होता है। और वो मेहनत हमें ये सिखाती है, उन्हीं 24 घंटों में हम 10 काम भी कर सकते हैं और 2 काम पर भी अटक सकते हैं। तो किस तरह से हम अपने समय का नियोजन करें, समय को एक सारणीबंध करें, ये सभी हमें मेहनत सिखाती है। मेहनत करने के बाद अगर सफलता मिल जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। हमेशा हम अपने जीवन में उसी सफलता की तरह आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर कभी सफलता ना भी मिली हो तो हम इस चीज़ को महसूस करें कि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो ज्ञान व्यर्थ नहीं है। उस ज्ञान ने हमें हो सकता है वो नहीं दिया जो हम चाहते थे, लेकिन और अन्य कितने ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां वो ज्ञान हमें अपना रूप दिखा रहा है, अपना जादू दिखा रहा है, उपस्थित सभी लोगों में हमें ज्ञानी सिद्ध कर रहा है। ये ज्ञान हमें हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ाता है। असफलता मिलने पर भी वो मेहनती या मेहनत आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। जहाँ जहाँ आप जाते हैं वो ज्ञान जो आपने ग्रहण किया था वो आपके साथ जाता है, और जहाँ जहाँ आप अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं उस प्रस्तुति में वो आपको हमेशा आगे रखता है। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो मेहनत एक ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न देर से सही पर बेहतरीन मिलता है। तो हमें मेहनत करने से कभी नहीं चूकना चाहिए। सफलता असफलता जीवन के हिस्से हैं, चलते रहते हैं। तो श्रोताओं, ये था चिंतन।

श्रोता भी सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत बहार में सभी श्रोताओं का स्वागत है। गीत बहार की पहली प्रस्तुति आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम है श्री 420।

पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म का गीत श्रोताओं ने भी सुना लता मंगेशकर की आवाज में। कश्मीर की कली फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में।

गीत बहार की ये प्रस्तुति आपने सुनी लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में, वो कौन थी फिल्म से। आशा भोसले की आवाज में अब आप सुनेंगे गीत बहार की अंतिम प्रस्तुति। फिल्म का नाम है दो बदन।

0: श्रोता, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री राम चरितमानस कान। आज आप सुनेंगे उत्तरकांड से संकलित एपिसोड संख्या 369। कलाकार हैं सुरेश वाडकर, संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।
1: एपिसोड नंबर 369।

संत असंत लक्षण की व्याख्या करते हुए श्री राम भरत से कहते हैं, संतों के मन में कोई कामना नहीं होती, उनका हृदय शांति, वैराग्य, विनय और सरलता का आगार होता है। उनमें सबके लिए प्रीतिभाव और धर्म के लिए प्रेरक शक्ति होती है। वे कभी इंद्रियों के निग्रह, नियम तथा नीति के मार्ग से विचलित नहीं होते। संतों के विपरीत असंतों के हृदय में सदा संताप का निवास होता है। उन्हें दूसरों की सुख समृद्धि से ईर्ष्या होती है, पर निंदा में उन्हें अपार सुख मिलता है। काम, क्रोध, लोभ तथा मोह उनके विशेष लक्षण होते हैं। उनका तन और मन निर्दयता, कपट, कुटिलता और पाप के घर होते हैं। जो उनकी भलाई करता है वे उसे भी क्षति पहुंचाते हैं, अतः भूलकर भी उनकी संगति में नहीं पड़ना चाहिए। झूठ ही उनका लेना देना, भोजन, ओढ़ना और बिछौना होता है। माता पिता, गुरुजन तथा पूजनीय व्यक्तियों के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं होता। हे भाई, इसी कारण मैं असंतों के लिए काल रूप हूं और उनके कार्यकलाप का उचित फलाफल देता हूं।

श्रोता भी सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार शुरू में। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में मैं अंकिता आपकी रेडियो साथी कार्यक्रम में आपके साथ बनी रहूंगी, बहुत सारी और अच्छी अच्छी बातों के साथ, साथ ही प्यारे प्यारे गीतों के साथ। बने रहे कार्यक्रम नमस्कार शुरू में।

प्यारे से गीत के बाद श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम में बातें करते हैं कुछ ऐसी जो हमारे जीवन से जुड़ी हो। श्रोताओं, हम हमेशा सब कुछ जानते हैं कि हमारा जीवन स्थायी नहीं है, किसी का भी स्थायी नहीं है। एक दिन सबको, जैसे हम जन्म लेते हैं वैसे ही हमें मृत्यु को प्राप्त होना है। बीच का जो सफ़र है, उस सफ़र में हम किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, क्या हम पाते हैं, क्या खोते हैं, इन सभी जद्दोजहद में हम अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन जो अपना जीवन सार्थक करना चाहता है, वो अपने जीवन में खूब मेहनत करता है, लगन से अपने कामों को पूरा करता है। ऐसे ही होड़ में हम अक्सर अपना जीवन जीना भूल जाते हैं। हम अच्छी प्रकार सब कुछ जानते हुए भी कि जो आज है, जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा। हो सकता है आज हम बहुत दुखी हैं, लेकिन कल फिर एक नया सूरज निकलेगा और फिर कुछ अलग होगा। ये हमें जीवन के अनुभव हमेशा सिखाते हैं कि जैसा हमारा आज है वैसा हमारा कल नहीं होगा। उसमें कुछ चेंजेस होंगे, कुछ अलग होगा, और उस कुछ अलग में हम बहुत कुछ सीखेंगे। इन सभी के बीच में हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन कितना अनमोल है। हमारे जीवन में हम इस बहुत खूबसूरत से जीवन को जो हम जी रहे हैं, अवसाद यानी डिप्रेशन हमें कब अपने अंदर घेर लेती है हमें पता ही नहीं लगता। जीवन में तकलीफें परेशानियां सभी के होती हैं। कुछ अंदर से इतने स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, इनको झेल लेते हैं और साथ ही इनसे निकल जाते हैं। कुछ हमारे साथ ही ऐसे होते हैं जो इनको झेल नहीं सकते हैं, इनसे निकल नहीं सकते हैं, और इसी वजह से अवसाद यानी कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस प्यारे से जीवन को इस दिशा में मोड़ देते हैं कि इस जीवन का जीना और इसको समझना ही हम भूल जाते हैं। इसीलिए हमें अगर इस अवसाद यानी डिप्रेशन को छोड़ना है या इससे नहीं गुजरना है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अवसाद की शुरुआत को समय रहते हमें पहचानना होगा। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में अगर हम अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो फिर वहाँ से वापस आना यानी बहुत लंबे समय तक अगर हम डिप्रेशन में हैं तो वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर शुरुआती चरण में इसका इलाज हो जाए तो हम इससे निजात पा सकते हैं। मनुष्य का जीवन हमेशा ज़रूरी नहीं है उसके अनुसार ही चले। कुछ बातें, कुछ काम ऐसे होते हैं जो उसके अनुरूप नहीं होते हैं, और जब उसके अनुरूप नहीं होते हैं तब वह अवसाद से ग्रसित हो जाता है। ये अवसाद हमेशा बहुत गहरे दुख के रूप में नहीं दिखता, ये एक धीमी प्रक्रिया भी हो सकता है। इसकी पहचान की अगर हम बात करें, क्योंकि हमें कैसे पता लगे कि हम टेंशन में है, अवसाद से ग्रसित हैं। नॉर्मली टेंशन सभी को चलती है, थोड़ा बहुत जीवन में उतार चढ़ाव सभी को चलता है, लेकिन कैसे पहचाने कि एक बीमारी का रूप ले रहा है। श्रोताओं, अगर हम हर समय खालीपन महसूस करते हैं, छोटी छोटी बातों पर खुद को असफल समझ रहे हैं, हमेशा खुद को नीचा पा रहे हैं, तो हम डिप्रेशन में हैं। पहले जिन कामों में हमें मजा आता था और अब उनमें रुचि नहीं रही है, मजा नहीं आ रहा है, तो फिर हम अवसाद से ग्रसित हैं। हर समय हम थका थका महसूस करते हैं, बिना किसी मेहनत के काम के हम अगर थक रहे हैं, अपने आप को बोझिल महसूस कर रहे हैं, तो भी हम इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोना या बिल्कुल ना सोना, दोनों ही परिस्थितियां हम नज़रअंदाज ना करें, इसे गहराई से लें और सोचें कि हो सकता है कि हम इन टेंशन वाली, डिप्रेशन वाली, अवसाद वाली स्थिति में जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, असहज महसूस करना, कभी किसी निर्णय की स्थिति में न पहुंच पाना, इनके शुरुआती लक्षण हैं। काम या पढ़ाई में ध्यान लगाने में हमें दिक्कत हो रही है, बिना किसी स्पष्ट कारण के शरीर में दर्द है, दर्द का कारण पता नहीं लग रहा है, या फिर दोस्तों और परिवार से दूर हो रहे हैं, कट रहे हैं, लोगों से अलग रहना पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम अवसाद से ग्रसित हो सकते हैं। अगर ये लक्षण रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगे हैं और लगातार 2 सप्ताह से अधिक समय तक बने रहे हैं, तो ये अवसाद का संकेत हो सकता है। अगर हमारे साथ ऐसा है तो हमें इनको पहचानना होगा, क्योंकि अगर समय रहते हम इसे पहचान लेंगे तो इससे निजात पाना भी आसान हो जाएगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे ही हमें पता लगे कि हम अवसाद से ग्रसित हैं, हम डिप्रेशन में हैं, क्योंकि मनुष्य खुद इस बात को आसानी से समझ सकता है, ये संकेत हमें बता देते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं। अगर हम समझ चुके हैं तो हमें कुछ
क्रियाएं स्वयं को ही करनी शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद तो हम स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, लेकिन खुद क्या करें? हम किसी भरोसेमंद व्यक्ति या परिवार के सदस्य से अपनी भावनाओं को साझा करें। हो सकता है वो आपका दोस्त हो सकता है रिश्तेदार हो, कोई भी आपके परिवार में, आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति जिससे आप मानते हों कि वो आपकी बात को समझेगा और आपको सही उसके पीछे के कारणों को बता पाएगा, ऐसे व्यक्ति से हमें बात करनी चाहिए। उसके बाद अगर डॉक्टर या थेरेपिस्ट की अगर हम सलाह ले सकते हैं तो हमें ज़रूर लेनी चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये एक नॉर्मल बात है, इसमें कोई बहुत यूँ नहीं है कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, ये बहुत लोगों के साथ होता है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डिप्रेशन में है, लेकिन कुछ वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ नहीं निकल पाते हैं। सही समय पर उपचार से अवसाद को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। अगर हमारी जीवन शैली सही नहीं है, हल्की कसरत करना और स्वस्थ दिनचर्या अपनाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप या आपका कोई परिवार या परिचित व्यक्ति इस हद तक चला गया है कि वो अपने आप को ख़त्म करने पर तुला हुआ है, या फिर अपने आप को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है, अपने आप को पीछे ले जा रहा है, तो हम भी उसके बारे में समझ सकते हैं। स्वयं के बारे में तो समझ ही सकते हैं, दूसरे के बारे में, परिवार या रिश्तेदार या दोस्त कोई भी जो अगर इन परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो हमें चलकर उनकी मदद करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उनकी परेशानी का कारण क्या है। या फिर वो परेशान हैं तो इसके पीछे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये परेशानियाँ जीवन का हिस्सा है। हो सकता है आपकी दो बातें किसी के जीवन को बहुत सफल बना सकती हों, तो अपनी इन दो बातों को बताने के लिए हिचके नहीं, आप भी किसी के साथ मिलकर उसकी परेशानियों को समझकर उसकी इस अवसाद से या डिप्रेशन से मुक्ति दिलाने में मदद कर सकते हैं।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
3: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ,
4: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट।
3: कृषि विज्ञान कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध।
4: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति।
3: अनुभवी साफ सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम।
4: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में।
3: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ 9413360।
2: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
5: श्रोताओं, अंतराल के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार चूरू में। श्रोताओं, हम हमेशा ये सुनते हैं कि हमें वातावरण को शुद्ध करने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अगर हम कुछ ना भी कर रहे हैं तो भी हम अपना कुछ ऐसा दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन कर हम वातावरण को अपनी तरफ से प्रदूषित करने से बच सकते हैं या अपनी भागीदारी निभा सकते हैं उसको शुद्ध रखने में। श्रोताओं, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग अगर हम करें तो प्रदूषण कमी में अपनी भागीदारी दे सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना पर्यावरण और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सबसे प्रभावी तरीका मान सकते हैं। निजी वाहनों के बजाय बस, मेट्रो या ट्रेन

हानिकारक गैसों का उत्सर्जन काफी हद तक कम हो जाता है। मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसें पारंपरिक पेट्रोल डीजल वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं। कम निजी वाहन होने से ट्रैफिक जाम जो हो रहा है वो भी नहीं होगा, जिससे निष्क्रिय इंजन द्वारा फैलाया जाने वाला धुआं कम होगा। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से जीवाश्म ईंधन को बचाने में मदद मिल सकती है, जिससे प्रदूषण के स्तर में कमी आ सकती है। अपने दैनिक कार्यकलाप या कॉलेज जाना या किसी भी रूप में हम बाहर निकल रहे हैं तो बस या मेट्रो का उपयोग हमें करना चाहिए। अगर हम यदि सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है हमारे पास तो हम कार पूलिंग, जो एक ही गाड़ी में कई लोगों को ले जाए, उसका प्रयोग कर सकते हैं। पास की जगहों पर जाने के लिए पैदल चलें या साइकिल का उपयोग करें। इससे हम शारीरिक स्वस्थ भी रहेंगे और साथ ही पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचाएंगे। यदि वाहन खरीदना हो तो इलेक्ट्रिक या CNG वाहनों का हो, ऐसी हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। तो श्रोताओं, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर हम प्रदूषण कमी में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: श्रोताओं कार्यक्रम नमस्कार शुरू में अब बात करते हैं मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना के बारे में, जानकारी देते हैं आपको। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना, इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल तकनीक का उपयोग करके स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर, तेज और सुलभ बनाना है। ये योजना डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को प्रबंधित करने और मरीजों को ऑनलाइन सुविधा देने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुव्यवस्थित करना, स्वास्थ्य संस्थानों को वाईफाई युक्त बनाना और मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखना है। मरीजों के इलाज, जाँच और रिपोर्ट को और दवाइयों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाता है, जिसके बार बार कागजी रिपोर्टें ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग घर बैठे ही बड़े डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। राज्य के सरकारी अस्पतालों में आधुनिक डिजिटल तकनीकी के माध्यम से उपचार में तेजी और पारदर्शिता लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। श्रोताओं, इससे हमें अस्पतालों में लंबी लाइनों से छूट मिलती है, रिपोर्ट्स खोने का डर नहीं रहता, तेज और बेहतर इलाज होता है। ये योजना मुख्य रूप से राज्यों और द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को एकीकृत करना है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार चूरू। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 8 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़।

0: समाचार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया

0: एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3-सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
7: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
3: धन्यवाद निखिल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएस इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at Business Forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military access to its bases and airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at Ikana Stadium. BJP Central Observer for West Bengal and Union Home Minister Amit Shah will meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. We have more from a correspondent.
9: After its sweeping victory in Bengal, the BJP is seeking to turn the swearing-in ceremony into a political event of national significance. The first BJP government in West Bengal will take oath on Saturday, the 25th Boishakh, at the Brigade Parade Ground. Preparations for the stage and security arrangements at Brigade began on Wednesday itself. According to BJP sources, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Nitin Gadkari, JP Nadda, BJP President Nitin Naveen and several other central ministers may attend the ceremony. Chief Ministers and Deputy Chief Ministers of various BJP and NDA ruled states are also being invited. On Friday, a meeting of the newly elected BJP MLAs will be held at Bishwa Bangla Convention Centre in New Town, where the leader of the legislative party will be formally elected. Amit Shah will be present as the central observer. Since the oath-taking ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, special emphasis is also being given to cultural performances. The BJP is planning to showcase Bengali culture through Rabindra Sangeet and other cultural presentations. Shondipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
8: In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, talks have been held to reach the magic number of 118 to prove the majority. The DMK and the AIADMK held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappatti Palaniswamy has been elected as a leader of the legislative party during the meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party, TVK. We have more from a correspondent.
10: The situation in the state has taken interesting political outcome with the AIADMK and the DMK Legislative Party meeting held yesterday. Both of the parties have commented on the governor's decision on proving the majority. DMK spokesperson TKS Ilangovan has said that it is the duty of the single largest party to prove its majority and added that DMK chief MK Stalin does not want any constitutional crisis. It is to be noted that Puducherry AIADMK Secretary A. Anbaragan, who met the media after the legislative party meeting, had said that the power to decide has been given to the general secretary of the party. He hailed the decision of the governor on the issue of majority and said that there will be unexpected decisions in the prevailing political uncertainty. He also informed the media that their leader felt sad about Stalin's loss in this election. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
8: President of Vietnam Tho Lam has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Speaking on the occasion, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis asserted that entrepreneurs, investors and professionals from the technology and manufacturing sectors in countries like India and Vietnam will shape the future of Asia.
4: India and Vietnam offer something important to the world: trusted partnership, stable governance, economic dynamism and long-term strategic confidence. The future of Asia will be built by entrepreneurs, innovators, investors, technology leaders, manufacturers and young people from countries like India and Vietnam working together.
8: After concluding his visit to India, the Vietnamese president arrived in Sri Lanka last night on a two-day state visit aimed at deepening bilateral ties and boosting trade and investment cooperation. The visit, undertaken at the invitation of the Sri Lankan president Anuradha Kumaradesanayake, coincides with the 55th anniversary of diplomatic relations between the two countries and marks the first visit by a Vietnamese president to Sri Lanka in 15 years. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a meeting with the chairman of the Indian Chamber of Food and Agriculture, Dr. M.J. Khan. Sharing this information in a social media post, Mr. Goyal said they discussed initiatives to further enhance the quality of life of our farmers, strengthen India's position in the global agriculture landscape, deepen collaboration with the African region, and share India's expertise in the sector. He added that they also deliberated on new pathways to enhance agricultural cooperation for long-term food security. Foreign Secretary Vikram Misri met UAE Minister of State for International Cooperation Rim Al-Hashimi in Abu Dhabi yesterday. In a social media post, External Affairs Ministry said that both sides reviewed the full spectrum of the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership and identified areas for further cooperation. They also discussed the ongoing regional situation and global issues of mutual interest. The government has debunked a digitally altered video of External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal, wherein he is seen stating that India lost 4 Rafale fighter jets during the conflict with Pakistan. In a social media post, the fact-check unit of the Press Information Bureau clarified that the video is an AI-generated deepfake video and has been circulated by Pakistani propaganda accounts to spread misinformation. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Akashvani organized a marathon in the national capital today to mark its 90th anniversary. The nearly 3.5 kilometer marathon began from Akashvani Bhavan and passed through Krishi Bhavan, Rail Bhavan and the RBI building before concluding at Akashvani Bhavan. Employees of Akashvani, Doordarshan and Prasar Bharati along with the family members participated in the marathon. Prasar Bharati CEO Gaurav Dwivedi and Director General of Akashvani Rajiv Kumar Jain were present on the occasion. Akashvani was established in 1936 and continues to be one of the country's most trusted broadcasting platforms. Police have arrested absconding accused Nida Khan from Chhatrapati Shambhaji Nagar in connection with an alleged forced religious conversion case linked to a TCS company employee in Nashik. A joint operation was carried out last evening by a Nashik police team with the help of the crime branch in Chhatrapati Shambhaji Nagar. A case had earlier been registered against Nida Khan at Deolali Camp police station in Nashik for allegedly trying to force the religious conversion of a girl working in the TCS company. After the case was filed, she had gone absconding. Even after anticipatory bail plea was rejected, police were unable to trace her for nearly a month. IndiGo Airline has announced that it will begin commercial flight services from Noida International Airport in Jewar from the 15th of June. With this, IndiGo is set to become the airport's first launch carrier. IndiGo will gradually connect Noida International Airport with more than 16 cities across the country through direct flights. These include major metro cities like Bengaluru and Hyderabad, along with important destinations such as Amritsar, Chandigarh, Dharamshala, Jaipur, Lucknow, Navi Mumbai, Pantnagar and Srinagar. This will provide passengers with better travel options and faster connectivity. The Uttar Pradesh government has issued orders to operate all smart meters installed across the state in post-paid mode. Energy Minister Arvind Kumar Sharma stated that all smart meters installed under the RDSS scheme have been converted to the post-paid system with immediate effect. Under this arrangement, consumers will receive bills after electricity consumption. The bill for electricity consumed in May 2026 will be issued in June 2026 under the post-paid system. The Energy Minister said that prioritizing the convenience of electricity consumers, the Uttar Pradesh government has decided to discontinue the smart prepaid meter system. Saudi Arabia suspended U.S. military access to its bases and airspace, forcing President Donald Trump to abruptly abandon his plan to escort ships through the Strait of Hormuz, 2 U.S. officials have confirmed. The move marks a significant setback for Washington's Gulf strategy, with a key regional ally effectively blocking the operation, known as Project Freedom, before it could gain traction. Mr. Trump has shifted focus to diplomacy, describing recent talks with Iran as very good and saying a permanent deal is very possible.
11: Iran is now reviewing a 14-point U.S. proposal to end the war, with Tehran's Foreign Minister Abbas Araghchi calling for dialogue and diplomacy. The proposed framework would pause hostilities and open a 30-day window of final negotiations, even though core issues including Iran's nuclear program would be left for later talks. Washington says it expects an Iranian response imminently. The diplomatic picture remains fluid. Iran has not publicly confirmed acceptance of any terms, and Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Khalibaf has dismissed some media reports as fake. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
8: While diplomacy advances, fighting across West Asia shows no sign of stopping. Israel bombed Beirut, southern suburbs on Wednesday in the first strike on the Lebanese capital since a U.S. brokered ceasefire nominally took effect on the 17th of April.
12: The Israeli military says its operations target Hezbollah's infrastructure and fighters and has reported more than 220 Hezbollah members killed since the ceasefire began. In Gaza, Israeli strikes have continued, with Hamas condemning the attacks as a continuation of what it calls Israel's war of extermination. Meanwhile, the US military has carried out strikes on Iranian military facilities after responding to attacks on Navy ships. Washington said that it does not want the conflict to grow but is ready to defend its forces. Earlier, US claimed that Iran attacked three US Navy ships in the Strait of Hormuz, but American forces intercepted the attacks and no ships were damaged. In IPL cricket, Lucknow Super Giants defeated Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method in a rain-hit match at the Ekana Stadium in Lucknow last night. Chasing 213 runs for victory, Royal Challengers Bengaluru made 203 for 6 in 19 overs. Earlier put into bat, Lucknow Super Giants scored 209 for 3 in 19 overs. Multiple rain interruptions reduced the match to a 19-over-a-side affair, setting Bengaluru a DLS target of 213. Mitchell Marsh scored a dazzling 111 off 56 for Lucknow, while Rajat Patidar contributed 61 off 31 for Bengaluru. Mitchell Marsh was adjudged player of the match. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra.
10: Thank you, Abhishek. BJP preparing to assume office in Kolkata after its stunning victory in West Bengal finds prominent mention in most of the dailies. Governor dissolves West Bengal Assembly leads the pioneer. Amit Shah to meet Bengal MLAs today on choice of new chief minister, says the Asian Age. Bengal's re-industrialization roadmaps being chalked out, informs the statesman. India urges Bangladesh to speed up verification of illegal migrants, reports Hindustan Times. In another story, Hindustan Times headlines, Governor keeps Vijay waiting as Tamil Nadu deadlock deepens. The Tribune in its editorial piece says, hung mandate led Tamil Nadu Assembly floor decide. The paper writes that Tamil Nadu's unfolding post-election uncertainty has once again brought the constitutional role of the governor under scrutiny. With Vijay's Tamaraga Vetri Karagam falling short of the halfway mark, the question before Raj Bhavan is politically explosive yet constitutionally settled. Who should be invited to form the government? The constitution does not automatically grant the single largest party the right to govern. The governor is expected to determine which formation is most likely to command the confidence of the assembly. And finally, Financial Express citing Niti Aayog's National Education Report released yesterday says that Indian school kids are weakest in mathematics, higher reasoning. And with that, it's back to you, Abhishek.
12: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. BJP Central Observer for West Bengal Amit Shah to meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam, Tho Lam, emphasizes India-Vietnam role in global supply chain and business forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military access to its bases in airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at the Ekana Stadium. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
13: FM 107.7 MHz पर ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय दिन के 8:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

अभी आप सुन रहे थे सुरसंगम। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 9 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: जयपुर अजमेर है। अब आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर में चल रहे संयुक्त कमांडर सम्मेलन में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भविष्य की युद्ध रणनीतियों और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। कृषि और एग्रीटेक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्राम 2026 के तहत आज हैदराबाद में चौथी इन्वेस्टर मीट का आयोजन। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हुआ, ये बफर स्टॉक की जरूरत से लगभग तीन गुना अधिक है। और राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी, वहीं पश्चिमी राजस्थान हीट वेव की चपेट में। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में कल से शुरू हुए दो दिन के संयुक्त कमांडर सम्मेलन में नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता पर विचार विमर्श किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित इस सम्मेलन में भाग लिया। जयपुर सैन्य स्टेशन में हो रहे इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी की। इस फिल्म में आतंकवाद को राज्य नीति के रूप में इस्तेमाल किए जाने की पाकिस्तान की नीति को उजागर किया गया है। वहीं 26/11 मुंबई हमलों और पहलगाम आतंकी हमलों की घटनाओं को दिखाया गया है। सम्मेलन के पहले दिन भविष्य की युद्ध अवधारणाओं पर नए सिद्धांत भी जारी किए गए। वहीं आज रक्षा मंत्री सीडीएस अनिल चौहान की मौजूदगी में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें भविष्य की युद्ध रणनीतियों और तीनों सेनाओं की संयुक्तता तथा तालमेल को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। साथ रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए स्वदेशीकरण और नागरिक सैन्य सहयोग पर विमर्श किया जाएगा। इसमें थिएटर कमान के गठन की भी समीक्षा की जा सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में उन्होंने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
2: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ सालों में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल सीकर जिले के खंडेला में ग्राम विकास चौपाल लगाई। जाजोद गांव में लगी इस चौपाल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से ही देश और प्रदेश मजबूत बनेगा। राजीविका से जुड़ी महिलाओं के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने किसानों से फलों की खेती और नवाचार करने के बारे में भी चर्चा की।
3: हमको फलों की खेती भी करनी चाहिए क्योंकि अनुभव होता है फलों की, जब खेती हम करते हैं तो एक प्रफुल्लता भी आती है मन में। आपने आम का पेड़ लगाया है, आम फल दे रहा है, तो आप कहीं भी रिश्तेदारी में भेजोगे तो कहोगे ये मेरा खेत का आम है, तो आपको 10-20-50 पेड़ हर किसान को अपने फलों के लगाने चाहिए जिससे कि वो ये महसूस करे कि ये फल तो मेरे घर का है, तो ये भी मैं आपसे, तो पर्यावरण भी बचेगा और हमारा फल भी पैदा होगा। हमको पर्यावरण का ध्यान रखते हुए फलदार, फूलदार, छायादार वृक्ष भी हमें लगाना चाहिए।
1: राजस्थान को कृषि नवाचार और खेती की आधुनिक तकनीक का केंद्र बनाने के लिए जयपुर में 23 मई से ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले एग्री बिजनेस, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक में निवेश के लिए कृषि विभाग की ओर से देश के विभिन्न शहरों में इन्वेस्टर मीट और रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हैदराबाद में ये मीट रखी गई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा और कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल तथा पशु पशुपालन मंत्री जोरा राम कुमावत का भी इसमें भाग लेने का कार्यक्रम है। ग्राम 2026 से किसानों को जोड़ने के लिए प्रदेश भर में ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने सांचौर के चितलवाना में कहा कि इस अभियान में सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ ही पात्र लोगों को इनसे जोड़ा जा रहा है।
4: अपने विकास के कार्यों को और कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, किस तरीके से जमीन तक जागरूकता और बढ़ाई जाए ताकि आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार की योजनाएं चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं उनको और प्रभावी रूप से नीचे तक पहुंचा सके।
1: हनुमानगढ़ जिले के पल्लू क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कथित फर्जी बीमा क्लेम का मामला सामने आया है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कल SBI पल्लू शाखा में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 162 फर्जी किसानों के नाम पर बीमा करने का खुलासा किया। गौरतलब है कि कृषि मंत्री के हस्तक्षेप से करोड़ों रूपये की बीमा क्लेम राशि जारी होने से पहले ही रोक दी गई। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि

0: करोड़ रुपए की बीमा भुगतान राशि को समय रहते ही रोक दिया गया।
1: जमाबंदी नहीं है तो कैसे, जमीन की जमाबंदी नहीं है तो प्रीमियम कैसे काट लिया और क्लेम कैसे बना दिया? बिना जमाबंदी बिना जमीन के इन्होंने प्रीमियम जमा करा के क्लेम पास कर दिया। ये जाने वाला था उससे पहले हमारी जानकारी में आ गया। इस चक्र में कोई भूमि नहीं है, जितने भी नाम है ना 162 किसानों के, इनकी कोई जमीन यहाँ पर नहीं है। ये है बजरू तेजपुरा गजनेर तहसील।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। भारी खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से देश में खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने के साथ ही गर्मी के तेवर फिर से तीखे हो गए हैं। हालांकि कुछ हिस्सों में दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली। सवाई माधोपुर, वनस्थली, जालौर और दौसा सहित कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। टोंक, करौली और कोटपुतली बहरोड में ओले भी गिरे। बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली, किंतु अधिकतर स्थानों पर तेज धूप और उमस से लोग परेशान रहे। भरतपुर में आज भी बादल छाए हुए हैं और सुबह से ठंडी हवाओं के साथ रुक रुक कर हल्की बरसात हो रही है। वहीं सवाई माधोपुर में देर शाम धूल भरी हवाएं चलने से यातायात प्रभावित हुआ। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बाड़मेर में फिर से प्रचंड गर्मी का असर शुरू हो गया है। जैसलमेर में कल दिन का तापमान 45 डिग्री को पार कर गया, वहीं 15 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों में अब कमी होने की संभावना है। इससे अगले 3-4 दिन में तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं सीमावर्ती जिलों में हीट वेव का नया दौर शुरू होने का अनुमान है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में आज और कल कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के पुलिस बेड़े में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 84 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार कई जिलों, पुलिस आयुक्तालय, एसीबी, सीआईडीसीबी, ट्रैफिक और महिला अपराध अनुसंधान सेल में अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर में चल रहे संयुक्त कमांडर सम्मेलन में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भविष्य की युद्ध रणनीतियों और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। कृषि और एग्रीटेक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्राम 2026 के तहत आज हैदराबाद में चौथी इन्वेस्टर मीट का आयोजन। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हुआ, ये बफर स्टॉक की जरूरत से लगभग तीन गुना अधिक है। और राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी, वहीं पश्चिमी राजस्थान हीट वेव की चपेट में। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 107 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। अब आप सुनेंगे देशकांत।

0: आप सुन रहे थे देशकान। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय 9:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम धरा के पुकार। कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता, विषय है गोग्रीन प्रेत क्लीट, वार्ताकार हैं कनिष्क शर्मा।
1: हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम धरा की पुकार में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपने परिवार का खूब अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। सिर्फ परिवार का? अरे भाई, ये धरती भी तो हमारा ही परिवार है, इसका ख्याल भी तो हमें ही रखना है। श्रोताओं, गर्मी के तीखे तेवर शुरू हो चुके हैं। सुबह 8 बजे भी यदि हम बाहर निकलते हैं और 50-100 मीटर भी अगर पैदल चलना पड़े तो सर को कपड़े से ढकते हैं या छतरी का इस्तेमाल करते हैं या छांव तलाशते हुए चलते हैं। यदि दफ्तर या बाजार जाना हो तो बाइक या कार तो है ही, परंतु छायादार पार्किंग की बड़ी दिक्कत रहती है। कहीं छायादार पार्किंग मिल जाए तो या तो वहां नो पार्किंग का बोर्ड लगा होता है या फिर पहले से कुछ गाड़ियां बेतरतीब खड़ी होती हैं। आजकल अधिकांश घरों या दुकानों के बाहर हमें हरे पर्दे देखने को मिलते हैं। अब इतनी गर्मी है तो घर या दुकान को ठंडा रखने के लिए पर्दे तो लगाने ही होंगे, हम कौन सा पेड़ लगाने बैठेंगे। जी हाँ, समझ गए आज हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हम आज हमारे हरे भरे पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं। इनकी हरियाली और इनकी ठंडक की चाहत हम सभी को है, परंतु हम में से कितने लोग वृक्ष लगाते हैं। श्रोताओं, जल्द ही बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं और छुट्टियों में बच्चों की क्या डिमांड होती है? सैर सपाटा, पिकनिक, घूमने जाना। और हम भी कहां जाना पसंद करते हैं? प्रकृति के बीच, है ना? ऊंचे ऊंचे पहाड़, चारों तरफ हरियाली, झरने, नदी और ऐसे ही किसी मनमोहक स्थान पर ठहरने को रिजॉर्ट। परंतु आज आधुनिकता व शहरीकरण के कारण ये सब नजारे सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट तक ही सीमित रह गए हैं। शहरों में तो हमें पार्क, मैदान या बगीचे ही देखने को मिलते हैं, लेकिन वे भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें ही पुकार रहे हैं। साथियों, पेड़ कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। ये धरती पर जीवन का प्रतीक है। वृक्ष और धरती एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। स्वच्छ पर्यावरण के लिए किसी भी राष्ट्र के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में घने वन होना आवश्यक है। परंतु क्या आप जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष 30 मिलियन हेक्टेयर वनों को काटा जा रहा है? ये क्षेत्रफल इंग्लैंड के क्षेत्रफल से भी अधिक है। जो हमारे पोषक हैं, हम उन्हें ही नष्ट कर रहे हैं। साथियों, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन विश्व वनों की स्थिति पर रिपोर्ट जारी करता है। इनकी 2022 की रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 1990 से 2020 के बीच 420 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए हैं, जो कुल वन क्षेत्र का लगभग 10% है। जी हाँ, 30 वर्षों में 10% वन खत्म हो गए हैं। साथ ही 250 उभरते संक्रामक रोगों में से 15% को वनों से जोड़ा गया है। इसकी प्रमुख वजह वनों की कटाई और भूमि उपयोग में परिवर्तन है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2050 तक दुनिया की आबादी 9.7 बिलियन होने का अनुमान है तथा इस आबादी के लिए भोजन की मांग 35-36% तक बढ़ सकती है, जिसके लिए वनों को काटकर ही कृषि हेतु भूमि उपयोग में लाई जाएगी। आपने अमेजन वर्षा वन के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, जिन्हें हम पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में भी जानते हैं। यह 6.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय जंगल है। यह दक्षिण अमेरिका के विभिन्न देशों में फैला हुआ है। यहाँ भी लगभग 17% क्षेत्रफल खनन, बांध, पशु फार्म आदि के लिए काट दिया गया है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि सन 2022 के पहले 9 महीनों में ही रिकॉर्ड स्तर पर वनों को नष्ट किया गया है। इसका एक प्रमुख कारण जंगल की आग है, लेकिन यह आग मनुष्य द्वारा लगाई जाती है ताकि फसलों के लिए जमीन साफ की जा सके, और फिर आग बेकाबू होकर एक बड़े भूभाग के वृक्षों को भी नष्ट कर देती है। हम जानते हैं कि वृक्ष गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर हमें ऑक्सीजन देते हैं, परंतु अब ये जंगल जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण से हटा रहे थे उससे अधिक स्वयं उत्सर्जित करने लगे हैं, और कारण मनुष्य द्वारा लगाई गई आग। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ कुल वन क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.6% है। अभी 33% के आंकड़े से पीछे हैं हम, लेकिन भारत में प्रतिवर्ष 12 लाख हेक्टर वन काटे जा रहे हैं, और यदि यही गति रही तो शताब्दी के अंत तक केवल 5% भूभाग पर ही वन रह जाएंगे। वनों की कटाई के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बढ़ रही है, और यह धरती के तापमान को बढ़ा रही है। कैसे? अजी जनाब, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य की किरणों को धरती पर आने तो देती है, परंतु वापस जाने नहीं देती। और यदि इस गैस की मात्रा इसी प्रकार बढ़ती रही तो अगले 30 से 40 वर्षों में धरती का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, और डैमों तो शुरू हो ही चुका है। आज अप्रैल में ही जून की सी गर्मी है, तापमान निरंतर बढ़ रहा है, वृक्ष घट रहे हैं, कंक्रीट सीमेंट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार तो कब से ध्यान भी दे रही है, नियम भी बना रही है, और उसे सख्ती से पालन भी करवा रही है। इसी का परिणाम हमें 2021 की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में देखने को मिला है। जानना चाहेंगे? प्यारे श्रोताओं, इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश में कुल वन क्षेत्र में 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जी हाँ, यह एक सकारात्मक परिणाम है। आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि भारत के 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक क्षेत्रफल पर वन है।

0: तो क्या अब हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है?
1: जी नहीं, क्योंकि यह रिपोर्ट और भी कुछ बता रही है।
0: इसके अनुसार वर्ष 2030 तक लगभग भारत के 45% जंगल क्लाइमेट हॉटस्पॉट बन सकते हैं, अर्थात इतनी बड़ी मात्रा में जंगल क्लाइमेट चेंज से सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। श्रोताओं, भारत में 2 वर्षों में हुई वन वृद्धि इस बात का संकेत है कि यदि प्रत्येक नागरिक सरकार के साथ इस मुहिम में जुड़ जाए तो यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। साथियों, आपने 1730 ईस्वी के खेजड़ली आंदोलन के बारे में जरूर सुना होगा, जिसे बिश्नोई आंदोलन भी कहा जाता है। साल 1973 का चिपको आंदोलन, 1966 का सेव साइलेंट वैली आंदोलन, 1983 का अपीको आंदोलन, 1982 का जंगल बचाओ आंदोलन, ये सभी आंदोलन आम जनमानस के प्रयासों को बखूबी दर्शाते हैं। ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं कि किस प्रकार प्राणों की आहुतियां देकर वृक्षों को बचाया गया। ये आंदोलन हमें वृक्षों की अहमियत बताते हैं। जीवन के प्रतीक वृक्षों के गुणों की कोई सीमा नहीं है। जहां एक ओर ये हमें सूर्य की तपती किरणों से बचाते हैं, वहीं दूसरी ओर पृथ्वी का तापमान बढ़ने से भी रोकते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी के कटाव को तो रोकती ही हैं, साथ ही बारिश के पानी को धरती के निचले स्तर तक पहुंचाने का काम भी करती हैं, जिससे भूमिगत जल स्तर बढ़ता है। क्या आप जानते हैं, एक बड़ा वृक्ष एक दिन में लगभग 230 लीटर ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ता है, जो 7 लोगों के लिए पर्याप्त है। ये सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से भी हमें बचाते हैं, जो विभिन्न स्किन प्रॉब्लम्स के लिए उत्तरदायी हैं। वृक्ष सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि सारे जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। ये उन्हें आवास भी देते हैं तो आहार भी देते हैं। ये रेगिस्तान को बढ़ने से भी रोकते हैं तो ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। साथियों, राजस्थान की बात करें तो यहाँ 9.6% क्षेत्रफल पर वन है, सर्वाधिक उदयपुर में, तो न्यूनतम हमारे शहर चूरू में। अरे भाई, वन कम है तो क्या हुआ, वृक्षावरण तो हम बढ़ा ही सकते हैं, और जितने अधिक वृक्ष उतना ही हरा भरा हमारा वातावरण। यदि हम कोशिश करें तो यह संभव है। यदि शहर का प्रत्येक घर 2 वृक्ष भी लगाए तो सोचिए पूरा शहर कितना हरा भरा होगा। इसके अलावा हम स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, अस्पताल, पार्क जैसी जगहों पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर अपना योगदान दे सकते हैं। आजकल तो विभिन्न सामाजिक उत्सवों, पारिवारिक कार्यक्रमों में भी वृक्षारोपण एक अभिन्न अंग बनता जा रहा है। हम अपने बच्चों को भी उनके जन्मदिवस पर वृक्षारोपण के लिए प्रेरित कर सकते हैं, साथ ही उन्हें कागज बचाने, रिसाइकल्ड कागज का इस्तेमाल करने की भी सलाह दे सकते हैं। इनके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी वृक्ष लगाए गए हैं उनका उचित ख्याल भी रखा जाए, तभी तो हमारा हरित पर्यावरण, स्वच्छ सांसें का उद्देश्य पूरा होगा। श्रोताओं, जब जरूरत सबकी है तो सबको जागना भी होगा। और हाँ, हमने पिछली कड़ी में भी कहा था, कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता, इसलिए दृढ़ता से अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाए रखें। अपने परिवार, आस पड़ोस, दोस्तों, सबको इस मुहिम में शामिल करें और अपनी भावी पीढ़ी के लिए एक स्वस्थ, सुंदर धरा का निर्माण करने में सहयोग दें।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरा के पवार। कार्यक्रम में आपने सुनी वार्ता ग्रो ग्रीन ब्रेथ क्लीन। वार्ता कर रहे कनिष्क शर्मा। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे ईमेल्स पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद।

सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंदी। कार्यक्रम में आपके द्वारा भेजे गए ईमेल्स और आपके द्वारा फरमाइश किए हुए गानों के साथ कार्यक्रम में मैं आज आपके साथ बनी रहूंगी, रेडियो साथी अंकिता। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गीत आप सुन रही हैं फागुन फिल्म से। अभी जो गीत आपने थोड़ा सा सुना है इसे पूरा भी सुनवाएंगे। इस गीत की फरमाइश हमें मिली है छत्तीसगढ़ से। बबलू जामुन देवी प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल समीक्षा आराध्या और साहू की। मेरिट कैंट से इस गीत को पसंद किया है दिग्दर्शन कविता कर्ण, शक्ति रिया जया दर्शन भाई ने। हरियाणा से बिट्टू रीटा भाटिया ने। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश गौरव गरिमा शर्मा हर्ष आहूजा। यूपी से मोहम्मद फरमान सलमान इरफान नरगिस खातून।

इसी गीत को पसंद किया है यूपी से मुकेश, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह ने। दिल्ली से सुखविंदर सिंह चौड़ा, सिटी दीवाना जनकपुरी से पिंटू राजेंद्र सिंह। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है हरियाणा से जसवीर सिंह, जतिंद्र कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत कौर। छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, पायल जोशी। ईमेल हमें मिला है इसी गीत के लिए खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे का। आइए सुनते हैं इन सबके पसंद का फागुन फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद। आपके द्वारा भेजे गए ईमेल्स को हम पढ़ रहे हैं और आपकी पसंद के गीतों को सुनवा रहे हैं। अगली फरमाइश हमें मिली है अर्पण फिल्म के गीत के लिए। पसंद करने वाले हमारे साथी हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय सुजाता, शशांक, सीमा साहू, साथ ही पंजाब से थांदी तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका, वाणी, इन सब ने भी पसंद किया है अर्पण फिल्म का गीत। जाकिर, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीरपुरा,

नसीर पूरा मालानी परिवार। इसी गीत को पसंद करने वाले हमारे साथी हैं श्री गंगानगर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, लोहागढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप गुड़नूर, गुड़लाल, अविराज सिंह। अगला ईमेल हमें मिला है चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आशु, गुड्डू। इन सब ने पसंद किया है ये प्यारा सा गीत।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: श्रोताओं, अंतराल के बाद फिर से स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में। अगला ईमेल हम पढ़ने जा रहे हैं महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया साजिद, शाहिद शेख, और ये पसंद करते हैं अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से इसी गीत के लिए फरमाइश मिली है कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा गोस्वामी का। संबलपुर कांकेर से फागुराम, ज्योति, ओजस्वी यादव। हनुमानगढ़ राजस्थान से वेदल का मिड्डा, इसी गीत को पसंद किया है। एटा से नबी हसन, शहनाज, नवेद, सुहेल, रशीद, अनम, यशफ, मुबीन, अब्बासी। दत्रेगी से भागवत, शांति, लीलावती, विनीता, रुद्रवर्मा। नेहरू चौक पैंठण से सुरेश, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद, सोनल, सिया, सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष चंद्र, संगीत जाधव। इसी गीत को पसंद किया है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी, विपुल ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का अमर अकबर एंथनी फिल्म का ये गीत।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: अंतराल के बाद श्रोताओं फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी पसंद में। अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत एफएम चूरू से तो हमें ईमेल जरूर भेजें, कार्यक्रम का नाम आपकी पसंद जरूर लिखें। अगर आप हमें अपना ईमेल और अपनी पसंद का गीत भेजते हैं तो हम एफएम चूरू से आपकी पसंद का गीत जरूर सुनवाने की कोशिश करेंगे। अगली पसंद हमें मिली है राज फिल्म के गीत के लिए। पसंद करने वाले हमारे साथी हैं फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिलसिला चूरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोमल, कार्तिक समस्त सोनगरा परिवार। इनका इसी गीत को पसंद किया है महाराष्ट्र से पी एस नुहाकर, निर्मला, विशाल, नारायण इंगले, मंगला, आशीष। और महाराष्ट्र से इस गीत को पसंद करने वाले हैं गंगाधर, प्रमोद, प्रदीप, बिमला, सतीश, अनेजा, ये पसंद करते हैं इस गीत को। चंडीगढ़ से सीकर राजस्थान से दातार सिंह, संगीता, तुषार, रिंकी, शेखावत। इसी गीत की फरमाइश हमें मिली है महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी, राजेश, राकेश, ऋषिता का। अगला ईमेल हमें मिला है इस गीत के लिए छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल, राधिका, अनिष्का, तन्मय गजभिय का। छत्तीसगढ़ से ही रोशन, देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल का। इसी गीत को पसंद किया है मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र, विश्वकर्मा, तारा, सोनाली, सोनम, आशीष। इन सब ने राज फिल्म के इस प्यारे से गीत को पसंद किया है। आइए इनके साथ हम भी इस गीत का आनंद लेते हैं।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे आपके ईमेल्स के साथ, आपकी पसंद के गीत के साथ। तब तक दें इजाजत रेडियो साथी अंकिता को। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय दिन के 10 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय रेडियो स्टेशन विविध भारती। कहते हैं वक्त के साथ चलना ही जिंदगी की पहचान है, जो ठहर गया वो किस्सों में, जो बढ़ गया वही नई उड़ान है। पुराने कार्यक्रमों की अपनी एक अलग ही खुशबू होती है, यादों से भरी, अपनापन लिए हुए, और नए कार्यक्रम अपने साथ लाते हैं ताजगी, नए विचार और एक नई ऊर्जा। जिंदगी की तरह रेडियो भी हमेशा गतिमान रहता है, क्योंकि बदलाव ही वो धड़कन है जो हर चीज को जीवंत बनाए रखती है। इन्हीं खूबसूरत बदलावों के साथ हमारे रेडियो पर कुछ नए कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है, वहीं कुछ पसंदीदा कार्यक्रम अब नए समय पर आपसे मुलाकात कर रहे हैं। तो आज के इस खास फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में हम जानना चाहेंगे आपकी राय, क्या ये बदलाव आपको

0: पसंद आ रहे हैं, कौन सा नया कार्यक्रम दिल को छू रहा है और बदले हुए समय आपकी दिनचर्या में कितने फिट बैठ रहे हैं। तो आइए अपनी बात खुलकर कहिए अपनी आज की हेलो फरमाइश कार्यक्रम की साथी यानी कि मैं नेहा आगरकर देसाई के साथ, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारे हर कार्यक्रम की असली जान है। और आइए अब देखते हैं पहला कॉल किसका है। हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब बात कर रहे हैं?
1: जी हम भोपाल से बोल रहे हैं, राम गोपाल मालवीय।
0: भोपाल से गोपाल जी? जी गोपाल जी, बताइए आप क्या करते हैं?
1: हाँ, हमारा ये लॉन्ड्री का काम है, ये काम वाम करते हैं और एफएम सुनते ही रहते हैं हम तो, सुबह से लेके शाम तक आपके प्रोग्राम विविध भारती के।
0: अच्छा, तो आप बिल्कुल रेगुलर श्रोता हैं?
1: हाँ जी जी जी बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन फोन पहली बार लगाया है।
0: ओहो क्या बात है, पहली बार आपका फोन लग रहा है, खुशी जरूर हो रही होगी।
1: हाँ जी बहुत खुशी हो रही है।
0: अच्छा ये बताइए कि विविध भारती के कुछ कार्यक्रमों में अब बदलाव आए हैं, तो आप उन बदलावों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे लगे आपको ये बदलाव?
1: बिल्कुल अच्छे लगे हैं, जो वो अपना मन चाहेगी, जो अपने पत्रों पे वो आधारित प्रोग्राम शुरू किए हैं संडे और सैटरडे को 3 बजे से, वो प्रोग्राम अच्छे, और हमने 2 पत्र डाल दिए, एक ना एक तो शामिल हो ही जाएंगे हमारे।
0: ओहो हो, हमें भी इंतजार है आपके खतों का और आपकी बातों का। तो अच्छा, मतलब इस बार आपका कॉल भी लग गया है और अब आपको उम्मीद है कि पत्र भी शामिल हो ही जाएगा।
1: हाँ जी जी,
0: यानी चित भी आपकी और पट भी आपकी।
1: हाँ जी बिल्कुल, एक छोटा सा बदलाव आपने किया है ठीक है, लेकिन मंगलवार को वो जो नया प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो ये हेलो फरमाइश एक ही दिन आएगा, सिर्फ गुरुवार?
0: जी एक ही दिन आएगा।
1: अच्छा,
0: और आप उसको रिपीट में भी सुन सकते हैं अगले दिन, जैसे गुरुवार को आप नया प्रोग्राम सुनेंगे और शुक्रवार को वही कार्यक्रम सुबह 10 बजे सुन सकेंगे, तो रिपीट में भी आप इसे सुन सकेंगे। जरा अपने दिल को थाम के रखिए, क्योंकि हम नए कार्यक्रम आपसे परिचित करवाने वाले हैं, तो और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि इन कार्यक्रमों के साथ भी आपको उतना ही मजा आएगा जितना हेलो फरमाइश के साथ आ रहा है।
1: जी जी।
0: चलिए ये बताइए गोपाल जी, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: संगीत फिल्म का एक गाना है इसमें, सुनो ऐ हसीनो।
0: सुनो ऐ हसीनो संगीत फिल्म से, और फिलहाल आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन जनाब बात कर रहे हैं?
1: ग्राम नंगला काचियान पोस्ट औरंगाबाद जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह शाक्य बात कर रहा हूँ। और मैम कैसे हैं?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप क्या करते हैं, कैसे हैं?
1: बढ़िया है, खेतीबाड़ी करता हूँ। और आकाशवाणी परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
0: जी बिल्कुल, आपकी दुआ से सब सही है, सब सलामत है।
1: जी सर, सभी को रहना भी चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। और आपके कार्यक्रम जितने भी आते हैं वो सुनना चाहिए, जिससे कि वैज्ञानिक भरे हुए भी हैं और मनोरंजन भी है।
0: जी
1: भी है,
0: क्या बात है, इतनी सारी तारीफें आपने की हैं। अब मैं कुछ बातें आपसे पूछ लूं। देखिए आपकी बातों से तो ये समझ आ रहा है कि आप हमारे कार्यक्रम बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। अब ये बताइए कि जो नए बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं?
1: बढ़िया जी, नए नए प्रोग्राम जब चलते हैं तो अच्छा भी रहता है, क्योंकि समय का परिवर्तन जरूरी होता है ना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी जो नए कार्यक्रम शुरू हुए हैं या फिर जिन कार्यक्रमों के बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं? आपके जिन कार्यक्रमों के समय में बदलाव हुआ है वो आपके टाइम के हिसाब से फिट हो रहे हैं?
1: जी जी बिल्कुल।
0: क्या बात है, तो खेतीबाड़ी करते हुए आप हमारे कार्यक्रम सुना करते हैं?
1: जी जी, कहीं पर भी सुन सकते हैं, खेत पर भी, घर पर भी, क्योंकि अब मोबाइल ऐप पर जो चालू हुआ है उसके माध्यम से कहीं भी सुना जा सकता है।
0: जी बिल्कुल, न्यूज ऑन AIR ऐप जो है उसके जरिए फोन पर भी सुना जा सकता है। चलिए बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म है गिरफ्तार, धूप में निकला न करो रूप की रानी।
0: गर्मी के हिसाब से गीत को पसंद किया है क्या आपने?
1: बिल्कुल, इसी की वजह से सुनना चाहता हूँ। जैसे मौसम चेंज भी हो रहा है ना, इसलिए, और थोड़ा पानी वगैरह साथ लेकर रखें।
0: ये तो बिल्कुल सही है। मेरा तो ये मानना है कि सिर्फ रूप की रानी क्यों, बल्कि रूप के राजा को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। यानी कि इन धूप के कड़ी गर्मी के दिनों में किसी को भी बिना वजह या फिर जब तक जरूरी ना हो बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना?
1: जी
0: बिल्कुल। चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश
1: जी। हमारा नाम है चंद्र प्रकाश पात्र
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: रामपुर ग्राम पालीगंज पटना बिहार।
0: क्या बात। तो चंद्र प्रकाश जी बताइए, क्या करते हैं आप?
1: हम तो अभी अप्लाई कर रहे हैं ऑफिसर के ड्यूटी में।
0: ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किस क्षेत्र में?
1: जी RBI के। हम CST रंगराजन, हमारा रुपया है गवर्नर, तो उसी में हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी ज्वाइन न किए हैं, सामान वन मंगा लिए हैं और लेंगे आजकल।
0: अच्छा, तो मतलब आपका सिलेक्शन हो गया है?
1: जी मैम।
0: अरे वाह, क्या बात है। विविध भारती परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी
0: चलिए, ये बताइए आज कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: जी हमको सुनना है अखियों की झरोखों से फिल्म के हेमलता की आवाज़ें।
0: चलिए चंद्र प्रकाश जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश
1: जी। नमस्ते मैम, मेरा नाम रामेश्वर रैकवार है। मैं ग्राम भगवता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ मैडम जी।
0: रामेश्वर जी, बताइए क्या करते हैं आप?
1: खेती का काम निपट गया है।
0: खेती का काम हो चुका है तो फिर अब क्या विचार है आपका आगे?
1: आषाढ़ आएगा ना मैडम, जून के महीने में, तो उसमें बुआई होगी अगली फसल की।
0: कौन सी फसलों की बुआई करेंगे आप
1: मैडम जी? ये उड़दा और मूंग।
0: क्या बात है, तो इसकी पूर्व तैयारी भी कुछ लगती होगी?
1: अभी तो ऐसे खेत खाली पड़े हैं, अभी नहीं है कुछ नहीं।
0: तो फिर अभी आप बिल्कुल फ्री हैं विविध भारती के सारे कार्यक्रम सुनने के लिए?
1: जी मैडम, मैं सुनता हूँ सभी। जो दोपहर में आता है कमेंट वाला, वो भी सुनते हैं, और छाया गीत सुनते हैं, हवा महल भी सुनते हैं।
0: तो अब जो कमेंट वाला आता है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं? क्या बदलाव है जानते हैं आप?
1: जी मैडम, पहले गीत माला था, अब सुरीला सफर हो गया।
0: पर उसके क्या बदलाव आए हैं कार्यक्रम के अंतर्गत? ये तो आपने नाम का अंतर बताया, कार्यक्रम में क्या बदलाव आए हैं वो बताइए।
1: मैडम जी, कार्यक्रम में तो काफी बदलाव है, थोड़ी जानकारी मुझे कम है।
0: चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको एक बार बता देते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे ये पहेली पूछी, बस इसी तरह की एक इबारत यानी कि एक टेक्स्ट उस कार्यक्रम में आता है, और उस टेक्स्ट या इबारत में कुछ शब्द ऐसे शामिल होते हैं जिनके ऊपर कुछ गीत बजने वाले होते हैं, उन शब्दों से शुरू होने वाले, या फिर उन शब्दों को लिए हुए कोई गीत, उस गीत के बीच में कोई शब्द आ सकता है, तो ऐसे गीतों की वो इबारत होती है और आपको पहचानना होता है कि कौन सा गीत बजने वाला है।
1: जी मैडम
0: जी, तो ये तो था यूं ही, ताकि आपको भी और हमारे श्रोताओं को भी पता चल जाए, और हम तो जानना चाहते थे कि आपने उस कार्यक्रम को कितना समझा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी कार्यक्रम नया नया है, 2-3 दिन ही हुए हैं, तो धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा और फिर आपके भी कमेंट्स उसमें आएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं।
1: जी मैडम।
0: अच्छा ये बताइए रामेश्वर जी, कौन सा गाना आज आप सुनना चाहेंगे?
1: मैडम जी, पड़ोसन फिल्म का है, चतुर करके सिंगार।
0: तो चलिए रामेश्वर जी, आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश।
1: मैं राजकुमार यादव बोल रहा हूँ, बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से।
0: क्या बात है राजकुमार जी, क्या करते हैं आप?
1: किसान हूँ, खेती बाड़ी में व्यवसाय है मेरा।
0: आपकी पसंद का काम है या फिर आपके यहाँ पूर्वज जो आपके पिताजी होंगे, दादाजी होंगे, तो ऐसे करते आ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं?
1: जी मैम, वो जो हमारा बचपन से ही काम है खेती बाड़ी का,
0: अच्छा,
1: पहले से ही चलती आ रही है खेती बाड़ी। किसान ही है हमारे गांव में, सब किसान ही है।
0: इसके अलावा और क्या शौक है आपके?
1: हमारे तो विविध भारती रेडियो सुनना, और थोड़े बहुत समय मिल जाए तो खेती बाड़ी में हाथ बटा लेते हैं।
0: क्या बात है, तो जब आपका शौक है विविध भारती सुनना, तो चलिए आपसे कुछ सवाल जवाब कर लिए जाएं।
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, विविध भारती में जो कार्यक्रमों में बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं?
1: मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और पसंद भी आ रहे हैं मैम। आपकी आवाज भी हम सुनते रहते हैं प्रोग्राम में, है जो हेलो फरमाइश है, साकी सहेली है।
0: पसंद आता है आपको कार्यक्रम?
1: जी जी मैम आता है।
0: क्या बात है, चलिए ये बताइए राजकुमार जी, कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे?
1: आज मुझे कच्चे धागे फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम। उसमें एक गीत है लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में, दिल का आना आया परदेसी हो गया, दिल परदेसी हो गया।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए राजकुमार जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत, दिल का।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं शेर खान बोल रहा हूँ हैदराबाद से।
0: जी शेर खान जी, बताइए क्या करते हैं आप?
1: जी मैं पहले तो सभी सुनने वाले भाई बहनों को, दोस्तों को आपको प्यार भरा सलाम कहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ आपको सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे।
0: जी बिल्कुल, हम भी आपके लिए यही दुआ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नेहा जी, मैं वैसे तो रहने वाला महाराष्ट्र का हूँ और हैदराबाद आके कुछ 7-8 साल हो रहे हैं।
0: अच्छा।
1: और मैं बता दूं कि मैं ब्लाइंड हूँ, दोनों आंखें नहीं है मेरी। 3 साल की उम्र में आंखें चली गई थी कैंसर की वजह से।
0: अच्छा,
1: और मैं
0: अच्छा।
1: विविध भारती को बचपन से सुनता हूँ।
0: अच्छा
1: जी हाँ, बचपन से सारा प्रोग्राम सुनता हूँ मैं। पहले भी जो प्रोग्राम आते थे, आज भी जो आते हैं, जो बदलाव हुआ है, बचपन से मेरा साथी है, जीवन साथी बना हुआ है रेडियो और विविध भारती।
0: क्या बात है। तो इन बदलावों के बारे में आपकी क्या विचार है, कैसे लग रहे हैं आपको ये बदलाव?
1: हाँ, बहुत अच्छा है। वक्त के साथ बदलाव भी जरूरी है और भी ज्यादा मजा आ रहा है और भी अच्छा लग रहा है कि आप जो है तो मोबाइल ऐप पे या किसी स्पेशल प्राइमरी चैनल से ये सुनने को मिलता है।
0: जी, तो ऐसा है कि समय के साथ हर चीज में बदलाव आते हैं, हर बात बदलती
1: जी जी
0: जाती है।
1: बदलाव आते हैं और बदलाव स्वीकार करना ही इंसान की एक अच्छी कामयाबी है।
0: जी बिल्कुल, स्वीकार
1: और
0: करना
1: मैं
0: जरूरी
1: यहाँ
0: है।
1: हैदराबाद में आके हमको 7-8 साल हो गए, तो यहाँ के रेडियो से ही मेरे कुछ दोस्त बने हैं, चैनल है, भाई बहन बने हैं। कॉल
0: बिल्कुल
1: लगना बोले तो
0: बिल्कुल।
1: बिल्कुल एक चांद को छूले नहीं जैसी कामयाबी है। और मैं भी इतने
0: ओ हो।
1: सालों से ट्राई कर रहा था, आज मेरा कॉल लग गया, बहुत खुशी हो रही है मुझे भी।
0: आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जब भी किसी श्रोता का पहली बार कॉल लगता है और उनकी जो खुशी होती है वो हमें सुनने को मिलती है, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है।
1: और मेरी गाने की फरमाइश है, फिल्म का नाम है हुकूमत, धर्मेंद्र साहब की फिल्म है, मोहम्मद अजीज अलका याग्निक और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में है गाना। ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा।
0: अच्छा, क्या आप गाते भी हैं?
1: नहीं बस ऐसे ही थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं।
0: तो फिर गुनगुना दीजिए थोड़ा सा।
1: ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा, प्यार रहेगा।
0: क्या बात है शेर खान जी, बहुत अच्छा गाया आपने। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका यानी कि श्रोता और विविध भारती परिवार का प्यार भी हमेशा यूं ही बना रहे। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: ना जुल्म ना जालिम का।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: क्या बात है, जिस तरह से मैंने बोला उसी तरह से उधर से भी रिस्पांस आ रहा है, बिल्कुल जोश के साथ। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम को नमस्कार।
0: बिल्कुल, आपको भी मेरा नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम मैं उदयपुर वारियों की घाटी से सत्यनारायण वारी बोल रहा हूँ। मैडम
0: बताइए क्या करते हैं आप?
1: मैडम मैं ऑटो में सवारी घुमाने का, पर्यटक घुमाने का काम करता हूँ।
0: अरे वाह, उदयपुर है तो फिर तो घूमने घामने की बात तो होगी ही होगी।
1: जी बिल्कुल, लेक सिटी।
0: तो जब आप अपने पर्यटकों को घुमा रहे होते हैं तो क्या उन्हें जिस जगह ले जा रहे हैं उसकी जानकारी देते हैं या फिर सिर्फ गाड़ी चलाने का काम करते हैं?
1: नहीं मैडम, कोई पूछना चाहे तो हम उसकी जानकारी बिल्कुल देते हैं।
0: क्योंकि ऐसा कई बार हम भी अनुभव करते हैं कि हम किसी नए शहर में जाते हैं तो हमारे जो ऑटो चलाने वाले भैया होते हैं वही हमारे आधे गाइड बन जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, हम पूरी जानकारी जो मांगते हैं पूरी जानकारी देते हैं मैडम। में जो भी है घूमने की जगह उनको बता देते हैं। ये जैसे उदयपुर में सिटी पैलेस है, जगदीश टेम्पल है, फतेह सागर है, सर्कल है, सेलियों की बाड़ी है।
0: क्या बात है। अच्छा ये बताइए, उदयपुर में किस मौसम में आना चाहिए?
1: उदयपुर में मैडम खासकर तो दीपावली के दिनों के बाद शुरुआत ज्यादा आती है, पर्यटक ज्यादा आते हैं, विशेषकर गुजरात से, मुंबई से।
0: यानी कि ठंड के दिनों में?
1: जी बिल्कुल, दीपावली की छुट्टियां पड़ती है मैडम, उस टाइम ज्यादा टूरिस्ट आता है।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनने का समय आप कब निकालते हैं? ऑटो चलाते समय सुनते हैं?
1: मैडम बिल्कुल चलता रहता विविध भारती हमारा उस समय।
0: तो क्या कभी आपके किसी यात्री ने ऐसा कहा है कि अरे यार क्या आप ये रेडियो सुनते रहते हैं, थोड़ा आवाज कम करिए या फिर ऐसे कुछ?
1: नहीं मैडम, हमारा बिल्कुल ही मध्यम आवाज से चलाते मैडम, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं बिल्कुल। पंच सुने और सवारी सुन सके, बाहर तक आवाज नहीं जाती, इतनी वॉल्यूम रखते हैं मैडम।
0: जी ये बिल्कुल सही बात है,
1: और हमको विविध भारती कभी डिस्टर्ब नहीं करता हमारे काम के अलावा।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा ये बताइए कि कौन सा गाना आज आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो।
0: जी और
1: गाने के बोल है ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, क्योंकि उदयपुर में अभी मैडम गर्मी बहुत चल रही है।
0: ठंडे ठंडे पानी की आपने बात कर दी है, उदयपुर क्या पूरे भारत भर में इन दिनों अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है।
1: और मैडम इस गाने को हमारे साथ में हमारी वाइफ शांति वारी भी सुनना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो आपको और हमारे सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नेहा जी नमस्ते।
0: नमस्ते, आपने आवाज से पहचाना या फिर आपको पहले से पता चल गया था कौन है आज?
1: जी पता चल गया।
0: बताइए कौन बात कर रहे हैं?
1: धर्मपुरी जिला धार मध्य प्रदेश से मोहम्मद तस्लीम से बोल रहा हूँ नेहा जी।
0: जी बताइए क्या करते हैं आप?
1: मेरी फ्लोर मैंने धर्मपुर में बाईपास चौराहे पे और यहाँ से मांडो 23 किलोमीटर है। आइए नेहा जी आप बारिश में।
0: जी मैं मांडो घूम चुकी हूँ। जी जी, जब हम स्कूल में थे तब हमें हमारी स्कूल की तरफ से एक ट्रिप गई थी, जब हम मांडो, महेश्वर, मंडलेश्वर तीनों एक साथ घूमे थे। जी तस्लीम जी, ये बताइए आप हमारे विविध भारती के रेगुलर श्रोता हैं?
1: जी जी, कम से कम मैं 35-40 साल से सुन रहा हूँ।
0: तो फिर आपको इन 35-40 सालों में कार्यक्रमों में जो बदलाव हुए वो भी आपको भली भांति पता होंगे।
1: जी जी, और ये अपना SMS के बहाने यूएस के तराने तो बहुत पसंदीदा प्रोग्राम था हमारा।
0: ओ ऐसा, तो अभी जो कार्यक्रमों में बदलाव हुए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं?
1: वो अभी मैडम बराबर सुन नहीं पा रहा हूँ, अभी 2-3 दिन के लगभग हुए हैं।
0: जी
1: बराबर मालूम भी नहीं है, वो ज्ञापन सुना करते थे, वो सुनते रहेंगे तो वो मालूम पड़ जाएंगे सर।
0: जी मैं आपको बता दूं कि यदि आपको पूरी तरह जानकारी नहीं है तो सुबह 6:30 बजे और शाम में 6:30 बजे इन दोनों समय पर आप झरोखा सुन सकते हैं, जिसके अंतर्गत किस दिन कौन सा कार्यक्रम कितने बजे जाने वाला है उसकी पूरी जानकारी होती है।
1: जी नहीं, मैं सुनता हूँ, शुरू सुबह 8 बजे से तो रात तक की फ्लोर में चला करती है, 9-10 भी बज जाती है, गीत तक सुना करता हूँ मैं।
0: क्या बात है, ये बताइए तस्लीम जी कौन सा गाना आज आप सुनना चाहेंगे?
1: 2 अक्टूबर फिल्म में गीत है साधना सरगम जी और उदित नारायण जी की आवाज में, चांद तारों में नजर आए तेरा तेरा।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: पान बीड़ी सिगरेट तमाकू ना शराब, हमको तो नशा है। हेलो फरमाइश प्रोग्राम का जनाब।
0: क्या बात है, नमस्कार नमस्कार। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी बात अमरीश पुरी साहब से हो रही है।
1: जाना मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: ओ हो, डायलॉग पे डायलॉग, क्या बात है।
1: सतीश गुलियानी दिलकुशा मार्केट जलंधर, और रहता है अपने दोस्तों के दिल के अंदर। हर टाइम आपको याद करते हैं, आपकी मिलने की फरियाद करते हैं।
0: क्या बात है,
1: नहीं लगता तो आपको फोन लगाते हैं।
0: ओ हो, क्या बात है क्या बात है। आपकी ये आगाज करने का तरीका बड़ा अच्छा लगा हमें।
1: मैडम जी सब कुछ आपसे सीखा जी आपने। हमें क्या आता है, हम तो बिल्कुल अनजान है। जो सीखा है रेडियो से, आकाशवाणी से सीखा है जी।
0: जी बिल्कुल सही बात है, रेडियो पर इतनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, विविध भारती पर इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं।
1: अपने तो दिल में ही रहते हैं, बस गैरों को याद किया जाता है। काश मिल जाए आप जैसे अच्छे एंकर दोस्त जिन्हें अक्सर हेलो फरमाइश में याद किया जाता है।
0: क्या बात है, आपने तो लड़ियां लगा दी हैं शायरियों की, डायलॉग्स की। लगता है आज बातें नहीं होंगी, डायलॉग्स ही होंगे।
1: डायलॉग ही चलेगा जी।
0: ये बताइए सतीश जी, अपने यारों दोस्तों के दिल में तो आप रहते हैं, मगर भौतिक तौर पर कहाँ रहते हैं?
1: मैं जलंधर दिलकुशा मार्केट, दवाइयों वाली मार्केट है जी हमारी।
0: अच्छा अच्छा जी, और क्या करते हैं आप
1: जी? मैडम अभी तो तंग ही कर रहे हैं घर वालों को।
0: तंग करते हैं घर वालों को?
1: फ्री है जी।
0: अच्छा अच्छा,
1: हो गया ना।
0: ओहो, अरे आपकी आवाज से लगता नहीं कि आप रिटायर हो गए होंगे।
1: कहते दिल होना चाहिए था, जवान उम्र की रखिया। मैडम सैर करते हैं एक घंटा सुबह एक घंटा शाम, और आज टाइम खुश रहते हैं। मैडम गीत सुनेंगे, राजकुमार फिल्म है जी वो, देखो मुझसे रूट कर मेरी जान जा रही है, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है।
0: ओहो क्या बात है, क्या आप गीत गाते भी हैं?
1: हाँ जी हाँ जी, मैं पंजाबी में सुना दूं हिंदी वाला।

0: कोई भी गीत सुना दीजिए।
1: पंजाबी में सुनाता हूँ आपको।
0: बिल्कुल।
1: ठंडा हो जाऊ चूल्हा चौंका बेड़ा सुनम सुना दस जा किंज दाल बनावा किंज आटा गुन्ना उन्हां नी याद आऊगी ओए होए मैं क्या नी जदों मैं क्या नी जदों तुर जाएंगी ओ पेके जान वाली है। सभी दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि कहीं जा रहे हो तो गाड़ी मोबाइल में फोन आ जाता है तो गाड़ी जूस कैन पे लगाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जानवरों को दाना डालें, गर्मी है अपने कोठों पे वो कटोरे रखें उनके आप अपने पानी और दाना जूस डालें।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। चलिए सतीश जी फिर आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है वो देखो।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। आदाब मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: जी आपकी दुआएं हैं और अल्लाह का करम है, हम भी ठीक हैं। मैं फहीम बोल रहा हूँ श्रीनगर कश्मीर से।
0: जी फहीम जी, बताइए क्या करते हैं आप?
1: जी मैं एक्चुअली टूरिस्ट गाइड हूँ, टूरिस्ट से रिलेटेड काम करता हूँ, गाइडिंग करता हूँ। अभी मैं डल झील के अंदर हूँ, कस्टमर के साथ को गाइडिंग कर रहा हूँ।
0: आप कस्टमर के साथ हैं और आपने फोन भी लगा लिया?
1: हाँ जी हाँ जी, मुझे आपसे बात करने हुए बहुत टाइम हो गया, तो सोचा आज विविध भारती के हेल्प फरमाइश प्रोग्राम में आपसे बात कर लूँ और अपनी पसंद के नगमे यहाँ डल झील के अंदर शिकारे में बैठ के सुन लूँ।
0: क्या बात है, मगर आपके जो टूरिस्ट हैं वो इस पर कोई नाराजगी तो नहीं जताएंगे?
1: नहीं नहीं नहीं, वो अभी फोटोज के साथ बिजी है, उन्होंने कश्मीरी ड्रेस में वो फोटोज कैप्चर कर रहे हैं अभी। जिस तरह शमी कपूर शर्मिला टैगोर ने वो नगमा जल्दे के अंदर शूट किया था जान सा रोशन चेहरा, तो वैसे ही उन्होंने भी ड्रेस पहने हैं कश्मीरी ड्रेस और ज्वेलरी के साथ, वो अभी फोटोज कैप्चर कर रहे हैं डल झील के अंदर शिकारे में बैठ के। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला आपसे बात करने का,
0: तो आपने मौके पे चौका मार लिया।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा ये बताइए कौन कौन सी भाषाओं में आप गाइडिंग करते हैं?
1: जी सबसे पहले देश की भाषाएं हमारी हिंदी है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, कर्नाटका है, थोड़ा सा ये महाराष्ट्र भी आता है।
0: अच्छा आप इतनी सारी भाषाएं बोल लेते हैं?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए आप जो काम करते हैं ये गाइड

0: जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, हर देश के हर कोने से लोग आते हैं यहाँ पे, और जो विदेश के लोग हैं वो भी बहुत सारे आते हैं, कश्मीर को एक्सप्लोर करके जाते हैं और बहुत अच्छी मैसेज लेकर जाते हैं। वो तभी जाते हैं जब उनके हम अच्छी गाइडिंग करते हैं, उनका अच्छे से साथ देते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव रखते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि लोग यहाँ से एक अच्छी मैसेज लेके जाए, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो ऊपर वाले का शुक्र है कि ऐसा ही हो रहा है, लोग यहाँ से बहुत अच्छे खुशी होके वापस जा रहे हैं। एक कस्टमर आया था, वो केरला से था, काफी अच्छा रहा है उनके साथ। उनके साथ इतना अच्छे से हुआ कि वो जब नेक्स्ट टाइम आए तो वो डायरेक्ट हमारे घर ही आए थे।
1: तो क्या बात है,
0: अच्छा रहा था।
1: फहीम जी से अच्छी खासी बात चल रही थी मगर शायद उनका कॉल कट हो गया बीच में से और हमारी बातचीत पूरी नहीं हो पाई, इसके लिए हमें बड़ा खेद है। बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी लेकिन हमारे जो साथी होते हैं उन तक ये कौन सा गीत फहीम जी सुनना चाहते थे इसकी जानकारी उन्हें मिल चुकी है। तो आइए फहीम जी की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं इज्जत फिल्म का ये गीत, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं।

श्रोताओं, आज के इस फोन इन कार्यक्रम में आपने जिस उत्साह से अपनी राय हमारे साथ साझा की, उसके लिए हम दिल से आभारी हैं। आपकी बातें, आपके सुझाव और आपके अनुभव ही हमें बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं, बदलाव से ही निखरती है हर एक कहानी, आपके साथ से ही मिलती है हमें नई रवानी। उम्मीद है कि हमारे नए कार्यक्रम और बदले हुए समय आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे और आपके हर दिन को और भी खास बनाएंगे। साथ ही हम अपने साथियों को बताते चले कि अब आपसे अगली मुलाकात होगी अगले सोमवार को सुबह 11 बजे इसी कार्यक्रम यानी कि हेलो फरमाइश में, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1, जहां हम रिकॉर्ड करेंगे आपसे की हुई बातें। हमारा टेलीफोन नंबर है 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड 022। हमारा दूसरा नंबर है 28670288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर सुने, 4002-4662, मुंबई का एसटीडी कोड 022। हमारा दूसरा नंबर 2687-0288, मुंबई का एसटीडी कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण आप सुन सकेंगे गुरुवार को दिन में 4 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार को दिन में 10 बजे। आपसे विनम्र निवेदन है कि जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, वे कृपया अब 2 माह के बाद ही कॉल मिलाएं, ताकि अन्य श्रोताओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सके। और आपको बता दें, इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रहा सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। इसी के साथ आज के इस हेलो फरमाइश कार्यक्रम से दीजिए इजाजत अपनी दोस्त नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के प्रोग्राम FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में अब आप जानेंगे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में। अब से कुछ ही पलों बाद दिन में 11:05 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग लेकर आएंगे दिन में 12:00। 12:30 पर होगा लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम माटी के स्वर। आज की कलाकार होंगी श्रीमती छोटू देवी और उनके साथी। आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे दिन में 1:00। 1:05 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज का प्रसारण किया जाएगा दिन में 2:00 और दोपहर समाचार होंगे 2:15 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे तराने नए पुराने।

हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे युवा साथियों के प्रोग्राम युववाणी के साथ। आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार होंगे शाम 6 बजे, 6:05 पर अंग्रेजी में और 6:20 पर संस्कृत में समाचार होंगे। प्रादेशिक समाचारों में शाम 6:30 पर हिंदी में और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी जयपुर से। आकाशवाणी जयपुर से जिले की चिट्ठी होगी शाम 6:40 पर।

फिल्मी गीतों का गुलदस्ता सजेगा रात्रि 8 बजे। आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का अंक रिले किया जाएगा रात 8:45 पर और रात 9 बजे News@9। बाता ही चाले ये कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर और रात 10 बजे आप सुनेंगे ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी राजस्थानी गीतों का प्रोग्राम गोरबंद। 10:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी चूरू से ही शास्त्रीय संगीत। सभा के अंत में रात 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की और उनके प्रसारण समय की।

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू का प्रसारण। दिन के 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

इला अरुण और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे मिस्टर रोमियो फिल्म का गीत। ये गीत लिखा था पीके मिश्रा ने और संगीत था एआर रहमान का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से चित्रपट संगीत एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हंसराज हंस और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना मौसम फिल्म का गीत। अब आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम, अलका याग्निक और शादाब साबरी की आवाज़ में मुझसे शादी करोगी फिल्म का गीत। गीत लिखा है अरुण भैरव ने और संगीतबद्ध किया है अन्नू मल्लिक ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से चित्रपट संगीत FM 100.7 MHz पर।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

आप सुनेंगे छोटे सरकार फिल्म का गीत। आवाजें होंगी कुमार सानू और अलका याग्निक की। शब्द रानी मल्लिक के हैं और धुन आनंद मिलिंद की।

हसीना मान जाएगी। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं और ये आवाजें हैं सोनू निगम, सुदेश भोसले, अलका याग्निक, संजय दत्त और गोविंदा की। नितिन रायकवाड़ के शब्दों को धुनों में ढाला है अन्नू मल्लिक ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से चित्रपट संगीत FM 100.7 MHz पर।

0: अभी मुखड़ा कम्प्लीट हो गया ना, लेकिन कुछ वैल्यू नहीं मिल रही है।
1: अरे मोनू, लड़की लोग का नाटक तेरे को क्या मालूम, बहुत पापड़ बिलने पड़ते हैं यार।
0: ये पापड़ का प्यार से क्या ताल्लुक
1: यार। अरे कहावत है यार।
0: अरे कहावत गई तेल बेचने, तू क्या भाव खा रही है, मैं पीछे आ रहा हूँ तू आगे जा रही है, देख तेरा बोध हो गया, बोध हो गया अभी। चल अभी थोड़ा अपना कम कर, कम कर। माँ माँ बोले तो मेरे होने

0: माँ ये नहीं पढ़ रही थी अपनी तो हट रही है।
1: मोनू भड़क मत वो पटरी पे आ रही है।
0: अरे काएगा ये मुंबई है मुंबई यहाँ सब कुछ फास्ट है। वो बाजू वाले अप्पा को देखना आज मिले राजकुड़ा कल मिले मंगलसूत्र पे नाम बोलो तो दो दो बच्चे का बाप है बोलो ना यार।
1: ये काय को मचमच कर रही है माँ कसम अपनी भी थोड़ी सी हट रही है। नाटक वाटक छोड़ सीधा हाँ बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे, बोल दे।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दिलीप सेन और समीर सेन की धुन। समीर के शब्द हैं, आग फिल्म का गीत है, आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। प्रोग्राम है चित्रपट संगीत।

हम हैं राही प्यार के, फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं साधना सरगम की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, हलचल फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं अलका याग्निक और शान की आवाजों में। विद्यासागर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है समीर ने।

ये गीत लिखा है नासिर फराज ने और संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने। ये था प्रोग्राम का अंतिम गीत। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत FM 110.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
1: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
1: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
1: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को

0: आगे बढ़ाएं?
1: जी श्रोताओ, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
0: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
1: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
0: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
1: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
0: जी,
1: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
0: जी।
1: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
0: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
1: जी श्रोताओ, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
0: जी,
1: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, यानी माउना केया
0: जी।
1: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
0: जी।
1: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
0: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया, आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
1: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
0: जी।
1: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
0: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
1: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
0: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहां पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहां कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
1: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
1: 8800-440-559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
1: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

0: ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे एई भारतेर महामानवीर सागर तीरे।
2: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन कीर्तन कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सॉनेट शैली में लिखे गए हैं। सॉनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल भंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक।

0: 7 मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कविंद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।

सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यही वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणे बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।

0: है।
1: आमादेर शांति निकेतन यानी हमारा शांति निकेतन।
2: आमादेर शांति निकेतन
1: सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
3: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
3: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
3: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
3: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून, न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमरीका।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़ित ज्योति पीड़ा की बलने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। कलाकार हैं श्रीमती छोटू देवी और उनके साथी।

माटी के स्वर कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रीमती छोटू देवी और साथियों को। लीजिए सुनिए चंपा और मैथी को।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी स्वर। आज के इस प्रोग्राम में आपने सुना श्रीमती छोटू देवी और साथियों को, और साथ ही सुना चंपा और मेथी को। कार्यक्रम माटी स्वर अब यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में आज चौथी इन्वेस्टर मीट आयोजित की जा रही है। राज्य में कृषि, बागवानी और एग्री बिजनेस के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए ये मीट रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इसमें भाग लेने का कार्यक्रम है। 23 मई से जयपुर में होने वाली ग्राम 2026 के लिए दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद के बाद ये चौथी प्रमुख इन्वेस्टर मीट है। इसमें राजस्थान को एग्री हब बनाने और खेती के लिए नई तकनीक लाने सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जयपुर सहित प्रदेश के अस्पतालों में पर्याप्त अग्निशमन सुरक्षा के बारे में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक सीजी संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस विपिन गुप्ता की खंडपीठ ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। अदालत ने कहा है कि अगर किसी अस्पताल में समुचित अग्निशमन प्रणाली नहीं पाई जाती है तो संबंधित CMHO की ओर से तय टाइमलाइन के साथ उस अस्पताल को नोटिस जारी किया जाए। अदालत ने कहा कि प्रदेश के हर अस्पताल में नियमित रूप से फायर ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया इस साल अगस्त महीने में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में कल एक समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 40 साल पुरानी यात्री आरक्षण प्रणाली को नई प्रणाली में बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसके तहत पिछले साल जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ये नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है। इसे लोगों ने काफी पसंद किया है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए एक समझौता किया है। नई दिल्ली में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी AI के जिम्मेदार और व्यापक प्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाने के लिए की गई है। मंत्रालय ने कहा कि इस सहयोग के तहत दोनों संस्थान AI समाधान के लिए अपनी क्षमताओं के साथ साथ परिषद की चिकित्सा अनुसंधान विशेषज्ञता का लाभ लेंगे। केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के एक वीडियो को फर्जी बताया है। इस वीडियो में उन्हें ये कहते हुए दिखाया गया है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष में 4 राफेल विमान खो दिए। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो AI से

0: बनाया गया एक डीप फेक है और इसे पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट की ओर से गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। सरकार ने नागरिकों से इस तरह की सामग्री पर विश्वास नहीं करने और हमेशा सरकारी स्रोतों से इसकी पुष्टि करने का आग्रह किया है। इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कल लगाई जाएगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत लगेगी। इनमें आपसी सहमति से ट्रैफिक चालान, मोटरयान दुर्घटना, चेक बाउंस, बैंक ऋण और घरेलू विवादों सहित अन्य राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। इसके लिए प्रदेश में भी योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग शिविर रखा गया। इसमें विद्यार्थियों को विभिन्न आसनों का अभ्यास करवाया गया, साथ ही उन्हें दिनचर्या में नियमित रूप से योग को शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। इस साल की थीम मानवता में एकता रखी गई है। रेड क्रॉस एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो युद्ध और हर आपदा के समय लोगों की मदद के लिए तैयार रहती है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। दिन का 1:05 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम महिला जगत सुनने वाली तमाम श्रोता बहनों का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम महिला जगत में। और आज का महिला जगत लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

मैनो, हम बात करें कि जो हम औरतें होती हैं घर में, जो स्पेशल जो औरत रहती हैं, उनको कई बार ये लगता है कि कुछ भी अपनी पसंदीदा कोई अगर चीज़ लानी होती है या बच्चों को कुछ दिलाना होता है, तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो नहीं दिला पाती है, उसके पास कुछ ऐसी राशि जो है वो नहीं उपलब्ध होती है। ऐसे में कई बार महिला जो है वो टेंशन में आ जाती है, घरेलू जो औरत होती है वो टेंशन में आ जाती है। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करें कि जो औरतें घर में रहती है, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, फिर भी उद्यमिता के अवसर उनके लिए बहुत से, आज के समय की बात करें तो बहुत से उद्यमिता के अवसर जो है उनके सामने आ चुके हैं। आज महिलाएं केवल घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है, हम तो यही कहेंगे, बल्कि वे समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विशेष कर हम बात करें घरेलू जो महिलाएं होती हैं, वो उनमें इतनी प्रतिभा होती है, कौशल भी होता है और वो मेहनती भी खूब होती है, लेकिन कई बार प्लेटफॉर्म सही नहीं मिल पाता है या उन्हें ज्ञान नहीं होता है, उन्हें ये नहीं पता होता है कि किस तरीके से वो कुछ ऐसा करे कि आगे बढ़े। तो बहनों, अब आप उद्यमिता की दुनिया में कदम रख सकती है, क्योंकि आपके साथ तकनीक है, इंटरनेट है और इसका बढ़ता उपयोग जो है वो हमारे लिए बहुत से अवसर जो है वो अवसरों के द्वार जो है इसने खोल दिए हैं। अब आप घर बैठे बैठे अपने छोटे से छोटे व्यवसाय को शुरू कर सकती हैं और आत्मनिर्भर जो है वो भी बन सकते हैं, और आपकी जो आर्थिक स्थिति है, खुद की भी और परिवार की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत मजबूत कर सकती हैं। और सही मायने में हम देखें कि इसमें कोई बहुत किसी एक विषय में हम कहें कि पारंगत होने की भी ज़रूरत नहीं है, कि आपके लिए वो बहुत सारी ढेर सारी क्षमताएं होनी चाहिए। इसमें अगर आप खाना बहुत बेहतर बनाती हैं तो खाना बनाने में, सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी है आपकी, उसमें भी आप अपना भाग्य जो है वो आजमा सकती है, साथ ही ब्यूटी केयर है, या फिर बच्चों की देखभाल, अगर हम कहें कि जो वर्किंग वुमेन होती है उनके सामने छोटे बच्चों की देखभाल के लिए कई बार ये सवाल हो जाता है कि वो किस तरीके से बच्चों की देखभाल के लिए किसे छोड़े, तो ये क्रेश टाइप जो है वो भी चला सकती हैं जो औरतें घर पर रहती है। साथ ही हस्तकला है या

कुछ इस तरीके की सजावट का सामान अगर आपको बनाना आता है, सजावट और प्रबंधन जैसे बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिसमें हर एक महिला में कुछ ना कुछ स्किल्स होते हैं, किसी न किसी कार्य में वो निपुण होती है, तो उन कौशलों को ही आपको निखारना है, क्योंकि अब इन कौशलों को सही दिशा और अवसर जो है वो मिलने लग गए हैं, तो हम कहेंगे कि आप एक सफल उद्यमी जो है वो बन सकती है। पहले हम मान सकते हैं कि पहले महिलाओं के लिए ये व्यवसाय करना शुरू करना बहुत कठिन होता था। पहले बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता था, फिर सामान चाहिए होता था, फिर ये होता था कि किस किस को किस तरीके से बेचना है या कहाँ तक पहुँच जो है वो बनानी है। लेकिन अब सरकार जो है वो भी पूरी हेल्प कर रही है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने हो गए हैं, और साथ ही साथ सामाजिक जो जागरूकता है उसने भी इन उद्यमियों के लिए काफ़ी रास्ता जो है वो आसान बना दिया है। अब घर में हम कहें कि सबसे बड़ा अवसर जो है वो घरेलू उद्योगों में है। महिलाएं घर पे अचार है, पापड़ है, और मसाले जो है, पिसे हुए मसाले लोगों को शुद्ध नहीं मिलते हैं, मसाले कर सकती है, या फिर बेकरी में अगर आपको अच्छा आता है तो बेकरी उत्पाद बनाकर भी आप बेच सकती हैं। क्योंकि आज का समय ऐसा आ चुका है बहनों कि हमें शुद्ध चीज़ें मिलनी मुश्किल हो गई है, तो लोग चाहते हैं, उनकी डिमांड होती है कि घर के बने हुए शुद्ध और पारंपरिक अगर खाद्य पदार्थ उन्हें मिल जाए तो वो उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने जो भी उत्पाद होते हैं उनका प्रचार आसानी से कर सकते हैं। इसमें कम लागत होती है और ग्राहकों तक पहुंच जो है वो संभव हो गई है बहुत हद तक। सोशल मीडिया की बात करें तो स्मार्टफोन जो है आज हम कह सकते हैं कि हर एक के पास होता है, भले वो गाँव में रहता हो, भले वो शहर में रहता हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सब कोई आसानी से चला भी लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ग्राहकों के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ता है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पहले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में।

0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ,
1: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट,
0: कृषि विज्ञान कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध,
1: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति,
0: अनुभवी स्टाफ, सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम,
1: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में।
0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ 9413366097।
2: बहनों, हम बात कर रहे थे उद्यमिता की, तो सिलाई और फैशन डिज़ाइनिंग जो है वो भी महिलाओं के लिए हम कहेंगे कि बहुत ही अच्छा एक व्यावसायिक अवसर है। घर पे भी आप अपना बुटीक जो है वो चला सकती है, अगर आपको सिलाई बहुत अच्छी आती है या नहीं भी आती है और आपका सिलाई या कपड़ों में डिज़ाइंस में आपका बहुत दिमाग चलता है, तो आप किसी बच्ची को जिसको सिलाई अच्छी आती है उसको आप रख सकती हैं, उसको मंथली जो भी हो वो दे सकते हैं और आप उसको डिज़ाइन जो है वो बता के और उस वैसी सिलाई करवा सकती है। साथ ही साथ त्योहारों और शादियों के मौसम में हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत अच्छी आय जो है वो प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार मेहंदी है, ब्यूटी पार्लर है और मेकअप जो है ये भी महिलाओं के लाभदायक व्यवसाय में से गिने जाते हैं। बस थोड़ा सा प्रशिक्षण और अभ्यास जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वैसे वैसे और पारंगत जो है आप होती जाएंगी और इस क्षेत्र में आप अपना नाम जो है, परचम जो है वो लहरा सकती है। दूसरी अगर हम बात करें, अगर आप शिक्षित हैं, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल कार्यों में आपकी पकड़ अच्छी है, तो इन कार्यों में भी हम कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सी संभावनाएँ जो है वो पैदा हुई है। जो बहुत पढ़ी लिखी हैं वो घर से ट्यूशंस ले सकती हैं, ऑनलाइन क्लासेस चला सकती हैं, इसके अलावा कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉगिंग है या जो चैनल्स चलते हैं वो है, डेटा एंट्री है, ऐसे कार्य जो है वो घर बैठे किए जा सकते हैं और सिखाए भी जा सकते हैं। इससे महिलाओं को समय की स्वतंत्रता मिलती है, अपने परिवार के साथ रहती है, यानी परिवार काम दोनों के बीच में संतुलन जो है वो बहुत अच्छे से बन जाता है, किसी को शिकायत भी नहीं रहती है और आय की आय हो जाती है। सरकार की अगर हम बात करें तो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी योजनाएं जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। मुद्रा योजना है, स्टार्टअप इंडिया है, महिला कोष योजना है या फिर स्वयं सहायता समूह का नाम आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि ये काफ़ी समय से चला आ रहा है। इसमें जो है इसके माध्यम से महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण और प्रशिक्षण जो है उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम बात करें तो स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाएं मिलकर छोटे व्यवसाय जो है वो शुरू करती हैं और सामूहिक रूप से लाभ जो है वो अर्जित करती हैं। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि घरेलू महिलाओं के सामने कई चुनौतियां भी आती है, परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती है, आर्थिक संसाधन कई बार नहीं होते, उनकी कमी आ जाती है, या फिर सबसे बड़ी कमी अगर हम माने वो है आत्मविश्वास की कमी, और कई बार समाज की जो रूढ़िवादी सोच है वो भी रास्ते में हम कह सकते हैं कि एक बाधा बन ही जाती है। कई महिलाओं को व्यवसाय संबंधी जानकारी नहीं होती है, उन्हें प्रशिक्षण जो है वो नहीं मिल पाता है, लेकिन बहनों यदि परिवार है, समाज का सहयोग मिले तो इन कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। हम भी जो महिलाएं सुन रही हैं उनसे यही कहेंगे कि अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई महिलाएं हैं जिनमें ऐसा कौशल है तो उन्हें निखारने में आप उनकी सहायता कीजिए। शिक्षा और जागरूकता से महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो हम एक कह सकते हैं कि हमारी तरफ से एक छोटी सी मदद हो सकती है। महिला उद्यमिता का सबसे बड़ा लाभ जो है वो ये है कि इससे बहनों महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। जब अपनी कमाई से हम अपने परिवार की सहायता करते हैं तो हमें तो अच्छा लगता ही है, साथ ही साथ मान सम्मान जो है वो भी बढ़ता है। इसके साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था जो है वो भी मजबूत होती है। महिलाओं के द्वारा संचालित जो छोटे उद्योग है वो रोजगार के नए अवसर पैदा करते हैं। मान लीजिए आपने छोटा सा उद्योग शुरू किया, उसमें फिर आपने एक दो को और बच्चियों को काम पे लगाया, इस तरीके से उन्हें भी अवसर मिला, उन्हें भी रोजगार मिला और ग्रामीण विकास में भी एक तरीके से आपका योगदान जो है वो हो गया। बस आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज महिलाओं को केवल गृहिणी के रूप में न देखकर एक सक्षम उद्यमी के रूप में स्वीकारे। परिवार को भी चाहिए कि वे महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, उनके सपनों का समर्थन करें। यदि घरेलू महिलाओं को सही मार्गदर्शन मिले, प्रशिक्षण मिले और अवसर मिले तो वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। तो बहनों, हम यही कहेंगे कि घरेलू महिलाओं के लिए उद्यमिता आत्मनिर्भरता और सम्मान प्राप्त करने का सशक्त माध्यम है। आज का युग महिलाओं के लिए नए अवसरों का युग है। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर महिलाएं हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती है। इसलिए महिलाओं को अपने कौशल को पहचान कर उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सके और समाज में आपकी एक नई पहचान जो है वो बन सके।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: विराम के बाद कार्यक्रम महिला जगत में फिर से आपका स्वागत है। पहले हम बात करें कि महिलाओं की जब प्री मेनोपोज टाइम चलता है तो उस समय हार्मोनल डिस्टरबेंस जो है हो जाता है, इम्बेलेंस हो जाते हैं। ऐसे में कई बार ये होता है कि और भी यूरिन इन्फेक्शंस जो है वो लेडीज़ में आम बात होती है, तो इस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो इन्फेक्शन होता है इसके कारण कई महिलाएं जो है स्ट्रेस में चली जाती है, तनाव हो जाता है। और बात करें हम मौसम की तो मौसम के अनुसार भी कई बार इन चीज़ों से वो परेशान हो जाती है, तो अपनी आदतों और डाइट में थोड़ा सा बदलाव कर आप इन चीज़ों से बच सकती है। यूरिनरी ट्रैक्स इन्फेक्शन यानी जो मूत्र मार्ग में संक्रमण होता है उसे यूरिन इन्फेक्शन कहते हैं, जो कि ज़्यादा महिलाओं में दिखाई देता है। और इसका कारण यही है कि आलस्य की वजह से देर तक जब आप कहीं बाहर जाती हैं या पानी कम पीते हैं या यूरिन रोक के रखते हैं तो ऐसी दिक्कत आ जाती है। और यूरिन आने पर भी नहीं जाना तो उसका यही होता है कि जब तक आप यूरिन नहीं पास करेंगे तब तक बैक्टीरिया जो है वो पनपने लग जाते हैं, सीधा सीधा असर जो है हमारी किडनी पे पड़ता है। इसके लिए ज़रूरत है कि जब भी इच्छा हो पानी ज़्यादा पीजिए और यूरिन को ना रोके, क्योंकि ऐसी स्थिति में यूरिन इन्फेक्शन की स्थिति पैदा हो जाती है। ज़्यादा स्थिति जब बिगड़ जाती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये लक्षण अगर आपको दिखता है तो ये समझिए कि संक्रमण जो है बढ़ने लग गया है। पेल्विक भाग या किनारे की तरफ पेट में जो है दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, निचले पेल्विक की तरफ दबाव महसूस होता है, बार बार आपका मन करता है कि यूरिन आ रहा है लेकिन जैसे ही आप यूरिन करने के लिए जाती हैं वो पूरी तरीके से आता भी नहीं है, और या फिर त्यागने में दर्द होता है। लीकेज होना भी एक आम बात होती है, या फिर कलर जो है वो भी चेंज हो जाता है, और ज़्यादा संक्रमण होने पर कई बार रक्त जो है वो भी आने लगता है। ऐसे में महिलाओं को बहुत ज़्यादा कमजोरी होने लगती है, थकान महसूस होने लगती है।

तो हम बात कर रहे थे यूरिन इन्फेक्शन की। तो यूटीआई से निदान लेना है तो उसके लिए सबसे पहले यही है कि उसकी अगर थेरेपी की बात करें, डाइट थेरेपी की, तो सबसे ज़्यादा अहम रोल जो होता है बहनों, वो होता है पानी का। हम हमारे प्रोग्राम में कहें या अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी से भी कंसल्ट करेंगे, तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि पानी जो है उसकी मात्रा भरपूर रखिए। वो सिर्फ आपके स्किन को ही सही नहीं रखता है, आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है, साथ ही साथ कई बीमारियों से पानी जो है वो बचाने का काम करता है। इसका एक सबसे सीधा सा यही है कि हम जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतना ज़्यादा हमें यूरिन जो है वो पास करना होगा, जिससे कि जो संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं वो मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएंगे और इन समस्याओं से हमें राहत मिलेगी। इसलिए ज़रूरी है कि भले ही आप 7, 8 या 9 गिलास पानी ना पिए, लेकिन आप अपना जो है एक टाइम सेट कर लीजिए कि आपको 1 बोतल पानी जो है 1.5 घंटे में पूरी करनी है, 2 घंटे में पूरी करनी है। और बोतल को 3-4 बोतल भी अगर आप पी लेंगे तो आपको उससे ये रहेगा, क्योंकि एक या तो टाइमिंग सेट करनी होगी या आपको एक बोतल जो है वो गिन के रखनी होगी, ग्लास जो है वो गिन के रखने होंगे, इस तरीके से पानी पिया जाएगा। अगर आप ये सोचती हैं कि प्यास लगेगी तब पानी पियेंगे, तो हमें नहीं लगता कि प्यास लगे, क्योंकि महिलाओं की सबसे हम कहेंगे कि एक आदत होती है, बुरी आदत, कि वो पानी बहुत कम पीती हैं और सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो घर के काम या और जो काम है उन्हें तवज्जो देती हैं। तो इसलिए पानी जो है वो ज़्यादा आप पीजिए, साथ ही प्रोबायोटिक्स यानी दही या जो अन्य प्रोबायोटिक ड्रिंक्स होते हैं उनका सेवन जो है वो हमें ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी मात्रा को बढ़ाते हैं और बुरे बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। तो बहनों, हम तो यही कहेंगे कि यूरिन इन्फेक्शन जो है वो बहुत बड़ा रोग जो है वो हो सकता है अगर आपने इसमें लापरवाही बरती तो। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी सावधानी रखिए, थोड़ी सी स्वच्छता रखिए और पानी जो है, पानी और हेल्दी डाइट जो है वो लीजिए और खुद को स्वस्थ रखिए।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
2: बहनों, अब बात करते हैं शरीर के रोगों की, यूरिन इन्फेक्शन की जब बात करें तो इसी के बारे में आगे बात करें कि जब यूरिन का रंग जो है वो भी कई बार हमें संकेत देता है हमारे शरीर की स्थिति के बारे में। हालांकि हम कह सकते हैं कि रंग देखकर किसी रोग का निश्चित निदान नहीं किया जा सकता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएँ होता है उनकी प्रारंभिक संकेत जो है हम मान सकते हैं। अगर हम बात करें कि हल्का पीला या पारदर्शी पीला रंग जो है वो दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं कि स्थिति सामान्य है और शरीर में पानी की मात्रा जो है वो भी पर्याप्त है। इसी तरीके से बात करें कि गहरा पीला रंग अगर आपको दिखता है यूरिन का, तो आप मान लीजिए संभावित कारण हम बता रहे हैं आपको कि शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन, बहुत अधिक पसीना या उपवास करना या बहुत कम पानी पीना हो सकता है। तो उपाय तो यही है बहनों कि पानी जो है वो ज़्यादा पीना है, पर्याप्त पानी तो पीना ही पीना है। या फिर मानिए कि बिल्कुल पारदर्शी बहुत हल्का कलर आ रहा है तो या तो बहुत अधिक पानी पिया जा रहा है, क्योंकि अधिकता भी बहुत गलत होती है। कुछ लोग पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो एकदम पारदर्शी है, तो इसका मतलब है आप बहुत पानी जो है वो इंटेक करनी है। और कई बार ये होता है कि कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती है जो कि कलर जो है वो पारदर्शी कर देती है। और साथ ही हम बात करें कि अगर लाल या गुलाबी रंग आ रहा है तो आप थोड़े से अवेयर हो जाइए। हो सकता है पेशाब में खून आ रहा हो या पथरी हो, आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर यूरिन इन्फेक्शन हो, गुर्दे की समस्या जो है वो हो सकती है। या फिर कई बार ये होता है कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो जिनका कलर ऐसा होता है, मान लीजिए चुकंदर आपने बहुत ज़्यादा खाया हो तो भी आपके यूरिन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन बिना चुकंदर के खाया, बिना कुछ ऐसे कलरफुल कुछ खाए हुए अगर चेंज हो रहा है और बार बार ऐसा हो रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर से जाँच जो है वो करवा लेनी चाहिए। नारंगी कलर की हम बात करें तो पानी की कमी के साथ साथ कुछ दवाइयाँ या लीवर संबंधी जो दिक्कत है वो हो सकती है। भूरा कलर हो तो लीवर रोग, गंभीर डिहाइड्रेशन या कुछ संक्रमण जो है वो हो सकते हैं। जैसे चाय जैसा कलर अगर आपका यूरिन का आ रहा है तो ऐसे आपको देखना होगा बहनों कि यूरिन का कलर जो है वो बहुत से संकेत देता है, उन्हें आपको यूं ही नहीं लेना है, लाइटली नहीं लेना है। साथ ही सफ़ेद या धुंधला अगर कलर आ रहा है तो यूटीआई की प्रॉब्लम है, पस या अधिक लवण जो है वो हो सकता है या किडनी स्टोन भी हो सकता है। नीला या हरा रंग ये बहुत दुर्लभ होता है, ये कुछ

विशेष दवाइयों के कारण हो सकता है या कृत्रिम रंग वाले जो खाद्य पदार्थ है उनका आप सेवन कर रही हैं तो, या फिर कोई दुर्लभ संक्रमण जो है वो हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि परिवर्तन के साथ साथ आपके यूरिन में जलन हो रही है, अलग सी कोई स्मेल आ रही है, बुखार है, पेट या पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द हो रहा है या ब्लड आ रहा है या बार बार यूरिन की इच्छा हो रही है, तो आपको डॉक्टर से तुरंत जो हम कहेंगे जाँच कर

ज़रूर कर लेना चाहिए। साथ ही साथ हम बच्चियों की बात करें बहनों, तो स्टार्टिंग में जब बच्चियों को पीरियड्स आते हैं तो उस वक्त माँ की जिम्मेदारी बहुत हद तक बढ़ जाती है। उसकी जो संगी सहेली होती है वो उनको जानकारी देती है, लेकिन वो सही तरीके से नहीं दे पाती है। एक

0: अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत FM 110.7 MHz पर। ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से 2 बजे मिडडे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार।
1: गुड आफ्टरनून।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरू थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन

0: उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
2: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
3: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
2: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
3: इंक्लूडिंग मोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर कंट्रीज टू अवेल ऑफ इट।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए

0: कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 110.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं तराने नए पुराने। यह है प्रोग्राम का पहला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। शब्दकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

जहाँ प्यार मिले, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

आन बान फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, शब्दकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन।

पवित्र पापी फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार और संगीतकार हैं प्रेम धवन। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तराने नए पुराने।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

आकाशवाणी चूरू से श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत का प्रोग्राम तराने नए पुराने। इस वक्त आपके रेडियो सेट पर आ रहा है वारदात फिल्म का गीत उषा उत्थुप और बप्पी लहरी की आवाज़ों में। गीत लिखा है रमेश पंत ने और संगीत है बप्पी लहरी का।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम तराने नए पुराने अब यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। आज की हमारी प्रथम सभा अब यहीं संपन्न होती है। द्वितीय सभा में शाम 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा अब आरंभ होती है। आइए सुनते हैं हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

हेलो दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.7 एफएम, जहां हम लेकर आए हैं आपका यूथ स्पेशल प्रोग्राम युवानी, जहां आज आप सुन रहे हैं आपकी आज दोस्त भावना को। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

जी, स्वागत है दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम वाणी में। और हफ्ते के हर दिन जैसे ही हम आपके लिए कुछ नया लेकर आते हैं, उसी कड़ी में आज फिर हम आपके लिए वैसे ही कुछ नया लेकर आए हैं। शाम को हर रोज 5 बजे हम आपके साथ जुड़ते हैं, आप तक मनोरंजन पहुंचाने के लिए, आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए, साथ ही साथ आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए। दोस्तों बता दें, आज आपको शुक्रवार है और शुक्रवार को हमारा खास सेगमेंट होता है हेल्थ एंड फिटनेस, जहां बातें होती है हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की, जहां हम आपकी सेहत के साथ साथ आपकी फिटनेस की और उन जरूरी आदतों की बातें करते हैं जो हमारी लाइफ को बेहतर, संतुलित और स्वस्थ बनाती है। क्योंकि कहा भी गया है दोस्तों कि असली सेहत जो है वो अच्छी सेहत ही है, अच्छी सेहत ही असली दौलत है। और आज के समय में हर व्यक्ति जो है, अगर हम देखें तो वो अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, अपने जिम्मेदारियों में इतना ज्यादा बिजी हो गया है कि वह अपनी सेहत पर ध्यान देना भूल जाता है। लेकिन शरीर ही हमारा वह आधार होता है जिसके सहारे हम अपने सारे सपनों को पूरा करते हैं। अगर शरीर हमारा स्वस्थ नहीं है तो शायद हम अच्छे से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हमारा मन भी खुश नहीं रहेगा और वही जीवन में हमारी ऊर्जा जो है वो कम रहेगी। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले जरूरी काम होता है अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाना। और अभी अगर हम इस सीजन की बात करें, इस समय की बात करें, तो हम देखें तो गर्मियां जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो अपनी परवान पर है, गर्मी बढ़ चुकी है सभी।

की ओर जो है वो भयंकर गर्मी का माहौल है। ऐसे में ये जो गर्मी का जो मौसम होता है वो अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो लेकर आता है। तेज धूप, गर्म हवाएं, पसीना, डिहाइड्रेशन, थकान और चिड़चिड़ापन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो गर्मियों के दौरान हम अक्सर जो है वो देखते हैं, फेस करते हैं इन प्रॉब्लम से। कई बार बहुत लोग जो है वो छोटी छोटी गलतियों की वजह से, छोटी छोटी गलतियां करने के कारण जो है वो बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को प्राकृतिक तरीके से जो है वो ठंडा रखें, ताकि शरीर जो हमारा अंदर से स्वस्थ और संतुलित बना रहे। तो आज के इस हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट में हम आपसे बात करने वाले हैं, गर्मियों में हम किन प्राकृतिक तरीकों को अपनाकर अपने शरीर को ठंडा रख सकते हैं, खुद को फिट रख सकते हैं, साथ ही साथ गर्मी का ये जो माहौल है, इस गर्मी के जो भी दुष्प्रभाव है उनसे बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम जो है इस गर्मी अपनी सेहत का जो है वो ध्यान रख सकते हैं। बेसिक सी बातें दोस्तों बस यही है कि अक्सर हम हमारे बुजुर्गों से, हमारे बड़ों से सुनते आए हैं कि आप जो है वो गर्मियों में अपना किस तरीके से ध्यान रखें। तो हमें कहा जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, अच्छा खाना खाएं, संतुलित भोजन करें, फल खाएं। ये बेसिक सी बातें हम अक्सर सुनते हैं और इन छोटी छोटी बातों में ही हमारा ये जो राज है वो छुपा हुआ है गर्मी से बचने का। ये गर्मी से बचने के हमारे प्राकृतिक तरीके ही हैं जो आज के समय में भी लोगों को जो है वो हेल्प करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गर्मी के मौसम में हमें पर्याप्त मात्रा में जो है वो पानी जो है वो पीना चाहिए। शरीर को ठंडा रखने का सबसे आसान और सबसे जरूरी तरीका यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। जब तापमान बढ़ता है तब शरीर पसीने के माध्यम से खुद को ठंडा रखने की जो है वो कोशिश करता है, लेकिन पसीने के साथ शरीर से पानी और जरूरी मिनरल्स भी बाहर निकल जाते हैं। अगर समय पर पानी ना पिया जाए तो हमारी बॉडी में कमजोरी, चक्कर, सिर दर्द और डिहाइड्रेशन जैसी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है वो हो जाती हैं। इसीलिए कोशिश करें कि दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है वो पानी पीते रहें। कई लोग तब पानी पीते हैं जब उन्हें प्यास लगती है, लेकिन ये आदत जो है वो सही नहीं है। शरीर को लगातार जो है वो ठंडा रखने के लिए और संतुलित रखने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी जो है हमें पीते रहना चाहिए। और अगर आप सादा पानी के साथ कुछ प्राकृतिक पेय जो है उन्हें शामिल कर सके तो वो और भी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, जैसे कि नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, बेल का शरबत, आम का पना, सौंफ का पानी। ये सारे पेय जो है वो बॉडी को ठंडक देने के साथ साथ ऊर्जा भी देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लिक्विड वाली चीज़ें जो है वो बॉडी के अंदर कंज्यूम करनी है। इसके अलावा अगर बात करें, दो नंबर पे आता है कि पानी से भरपूर जो फल होते हैं उनका हमें सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। गर्मियों में प्रकृति हमें ऐसे फल देती है जो शरीर को अंदर से ठंडा रखने में बहुत सारी हेल्प करती है, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, संतरा, अंगूर। बहुत सारे फलों में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ये शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। साथ ही साथ गर्मियों में होने वाली जो थकान है, बिना रीजन के या जल्दी जल्दी जो थकान हमारे अंदर हो जाती है उसको कम करते हैं। तो बस हमें इन चीज़ों का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। और स्पेशली हम देखें तो तरबूज जो है वो गर्मियों में सबसे अच्छा फल माना जाता है। इस पर लगभग 90% तक जो है वो पानी होता है। ये शरीर को ठंडक देता है और साथ ही साथ डाइजेशन में भी बेहतर काम करता है। खीरा, ककड़ी भी शरीर की गर्मी कम करने में हेल्प करते हैं। इन्हें हम सलाद के रूप में कैसे भी जो है वो इनका यूज़ कर सकते हैं। फलों का ये जो सेवन है वो हमारी बॉडी को ना सिर्फ ठंडा रखता है बल्कि विटामिन्स और मिनरल्स भी हमें जो है वो प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो मजबूत बनता है, अच्छा बना रहता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी है, हल्का और संतुलित भोजन करना। गर्मियों में बहुत ज़्यादा मसालेदार, तला भुना, भारी भोजन हमारे शरीर में जो गर्मी होती है उसे और बढ़ा सकता है। ऐसे में भोजन को पचाने में शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे थकान और आलस जो है वो महसूस हो सकता है। इसीलिए इस मौसम में हल्का, ताज़ा, पौष्टिक भोजन करना जो है वो बेहतर माना जाता है। आप खाने में बेसिक चीज़ें,
दही छाछ।

सब्जियां, सलाद, दाल, मौसमी फल, ये सारी चीज़ें जो है वो खाने में ऐड कर सकते हैं। बहुत लोग गर्मी में बाहर का जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा मीठे और गैस वाले पेय शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो ऐसे में प्राकृतिक चीज़ें हमेशा ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो बस ज़रूरत है हमें उन प्राकृतिक चीज़ों की ओर कदम बढ़ाने की। ऐसे ही और भी बहुत सारे प्राकृतिक तरीके हैं जिनके ज़रिए हम इस गर्मी के मौसम में खुद का और खुद के शरीर का जो है वो ध्यान रख सकते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस कार्यक्रम में बातें यूं ही जारी हैं, लेकिन फिलहाल आपको एक सुनवाते हैं प्यारा सा गाना।

जी, स्वागत है दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम युवानी में। एक खास सेगमेंट चल रहा है हेल्थ एंड फिटनेस, जहां ब्रेक पे जाने से पहले हम बातें कर रहे थे उन तरीकों के बारे में जिनके जरिए इस मौसम में, इस गर्मी के मौसम में खुद को जो है वो फिट रखा जा सकता है, खुद को स्वस्थ रखा जा सकता है। ऐसे कौन कौन से प्राकृतिक तरीके हैं जिनके जरिए आज के समय में हम इस भयंकर तेज गर्मी में हमारा और हमारे शरीर का जो है वो ध्यान रख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है, उसके साथ ही साथ ये जो मौसमी जो फल है उनका भरपूर सेवन करना है, इसके साथ साथ हल्का और बैलेंस डाइट जो है हमें फॉलो करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फिट रहने के लिए इस मौसम में हम क्या करें, तो योग या फिर हल्की एक्सरसाइज जो है हम उसका भी जो है वह सहारा ले सकते हैं। फिट रहने के लिए एक्सरसाइज हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा भारी वर्कआउट करना जो है हमारी बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। इस मौसम में सुबह या शाम के समय हल्की एक्सरसाइज, योग या फिर प्राणायाम जैसी चीज़ें करना बेहतर माना जाता है। योग जो है वो शरीर को अंदर से शांत रखता है और मानसिक तनाव को भी कम करता है। बहुत से ऐसे योग हैं, बहुत से ऐसे व्यायाम हैं जिनके जरिए आप कर अपनी बॉडी को गर्मियों में जो है वो संतुलित रख सकते हैं। साथ ही साथ गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने में भी ये जो एक्सरसाइज है वो हमें हेल्प करती है। अगर हम इसके अलावा और बातें करें तो क्या चीज़ें हैं जिनके जरिए या फिर कौन से वो प्राकृतिक तरीके हैं जिनके जरिए हम गर्मियों में हमारी बॉडी को जो है वो हेल्दी रख सकते हैं। उसमें पर्याप्त नींद लेना सबसे इम्पॉर्टेंट है। गर्मियों में हमारी बॉडी जो है वो जल्दी थक जाती है, जिसके लिए पर्याप्त आराम जो है वो ज़रूरी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो शरीर में थकान, चिड़चिड़ापन और कमजोरी जो है वो फील होती है आपको। कोशिश करें कि रोज़ कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो आप पर्याप्त लें। रात को देर तक सोना या फिर सुबह लेट तक सोना, इस चीज़ को जो है वो अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छी नींद जो है वो शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है, साथ ही साथ गर्मियों का जो असर है हमारी बॉडी पर और हमें जो है वो कम महसूस होता है। इसके अलावा हम सूती वस्त्र, ढीले कपड़े पहनकर भी जो है वो गर्मी से खुद को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गर्मियों में कपड़ों का चुनाव जो है वो बहुत मायने रखता है। टाइट या फिर सिंथेटिक जो टाइप के कपड़े होते हैं वो गर्मी जो है हमारी बॉडी में बढ़ा सकते हैं, इसलिए इस मौसम में हल्के रंग के ढीले सूती वस्त्र जो है वो पहनना बेहतर होता है। कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो पसीना सोखने और हवा को बॉडी तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, जिससे हमारा शरीर ठंडा जो है वो फील करता है। धूप में बाहर जाते समय सिर को कपड़े से, टोपी से ढकना भी जो है इस मौसम में जो है वो ज़रूरी माना जाता है, जिससे लू लगने का खतरा भी जो है वो कम होता है। साथ ही साथ अब जब बात कर रहे हैं हम गर्मियों की, तो सबसे इसका एक बड़ा रीज़न होता है कि धूप से जो है वो खुद की रक्षा करना। अगर

जरूरी ना हो तो दोपहर 12 से 3 के बीच का जो समय है उसमें बाहर निकलने से बचे। गर्मियों में दोपहर के समय धूप जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगर बाहर जाना ज़रूरी हो तो छाता यूज़ करें, अपने शरीर अपनी जो शरीर है उसको ढकें, पानी साथ लेकर चलें, धूप के चश्मे पहनें। ये छोटी छोटी सावधानियां हैं दोस्तों जो आपको गर्मी के दुष्प्रभावों से जो है वो बचा सकती हैं। इनके अलावा आप प्राकृतिक घरेलू बहुत से छोटे छोटे उपाय हैं जिनके ज़रिए भी आप गर्मी से खुद की जो है वो रक्षा कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घरों में कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मौजूद हैं जो बॉडी को जो है वो ठंडक देने में हेल्प करती है, जैसे कि पुदीना। पुदीना शरीर को ताजगी तो देता ही है, साथ ही साथ ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सौंफ अगर हम देखें तो इसका पानी जो है वो शरीर को गर्मी को कम करता है, उसके साथ साथ हमारे पेट को जो है वो ठंडा रखता है। गुलकंद की अगर बात करें तो गुलकंद शरीर की गर्मी को शांत करने में भी हेल्प करता है। बेल का शरबत, ये गर्मी में सबसे अच्छे प्राकृतिक पेयों में से एक माना जाता है, जो हमारे पेट को ठंडा रखने के साथ साथ हमें ऊर्जा देता है। दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और उन सब के अलावा एक और बात इम्पॉर्टेंट आती है कि कई बार गर्मियों में सिर्फ शरीर ही नहीं हमारे मन को भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है ये गर्मियाँ। अधिक गर्मी की वजह से लोग जल्दी गुस्सा, तनाव और चिड़चिड़ापन जो है वो फील करते हैं, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जो है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को शांत बनाए रखने के लिए आप पॉजिटिव सोचें, अपना जो पसंदीदा सॉन्ग्स है या गाने हैं जो भी हो आपके वो सुन सकते हैं। फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करें। मोबाइल स्क्रीन, ये जो सारी चीज़ें हैं इनका थोड़ा सा यूज़ कम करें। अगर आपका मन शांत रहेगा तो आप शरीर से जो है वो अच्छा फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, और जब आप पॉजिटिव फील करते हैं तो आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर बना रहेगा। तो दोस्तों बस बहुत सी चीज़ें हैं। गर्मियों का मौसम भले ही आपको कठिन लगे, लेकिन अगर अपनी दिनचर्या और खान पान में हम कुछ अच्छी आदतें जो है अगर ऐड ऑन कर लें तो इस मौसम में खुद को स्वस्थ और फिट हम जो है वो रख सकते हैं। प्राकृतिक तरीके न सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि हमें अंदर से मजबूत भी बनाते हैं। पानी, सही भोजन, फल, योग, एक्सरसाइज, अच्छी नींद और साथ ही साथ पॉजिटिव सोच जो है, ये सभी चीज़ें मिलकर हमें स्वस्थ जीवन जीने की ओर जो है वो लेकर जाती है। तो बस आपको यही याद रखना है दोस्तों कि स्वस्थ शरीर ही खुशहाल जीवन की पहचान है, इसलिए अपनी सेहत को नज़रअंदाज मत कीजिए। छोटी छोटी आदतें ही आपको एक बड़े बदलाव की ओर लेकर जाती है। तो बस उन छोटी छोटी आदतों को आज से ही अपने जीवन में शामिल किए और इस मौसम में खुद का, अपनों का और अपने घर वालों का ध्यान रखें। कार्यक्रम यूं ही जारी है, फिलहाल आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गाना।

जी स्वागत है दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम चल रहा है युवानी और खास सेगमेंट चल रहा है हेल्थ एंड फिटनेस, जहां बातें हो रही है आपके स्वास्थ्य की, आपके सेहत की, कि किस तरीके से हम इस गर्मी के मौसम में खुद का ख्याल रख सकते हैं। दोस्तों अब एक और बात जो है हम आपके साथ जो है वो करना चाहेंगे। अक्सर आज के समय में हम देखें तो केवल हमारा शरीर जो है वो ही केवल स्वस्थ नहीं रहना चाहिए, बल्कि मन की जो सेहत है उसका भी ध्यान रखना हमारी जो है वो जिम्मेदारी है, क्योंकि आज के समय में फिटनेस का मतलब केवल और केवल अच्छा दिखना नहीं, बल्कि अंदर से स्वस्थ और मानसिक रूप से मजबूत फील करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आज की तेज भागती जिंदगी में एक शब्द जो है हम अक्सर सुनते हैं, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, और दूसरा मुझे एंजाइटी हो रही है। कई लोग इन दोनों शब्दों को एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन सच में अगर हम देखें इनकी गहराई को तो स्ट्रेस और एंजाइटी एक ही चीज़ है या नहीं, दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। भले ही हमें देखने में एक जैसी लगे, सुनने में एक जैसी लगी, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्या क्या इनके सिम्टम्स होते हैं, क्या इनमें बेसिक डिफरेंस होता है, और हम इनसे कैसे जो है वो डील कर सकते हैं, इन सब की बात हम जो है अब आपके साथ इस हेल्थ एंड फिटनेस कार्यक्रम में करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। जब हमारे ऊपर किसी काम का, किसी जिम्मेदारी, डर, दबाव का अगर बोझ बढ़ जाता है, तब हमारा दिमाग जो है वो शरीर को एक प्रतिक्रिया देता है जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, जैसे कि एग्जाम का दबाव, नौकरी की चिंता, समय पर काम पूरा ना करने की टेंशन, या फिर फैमिली या फिर जो भी हमारे रिलेशंस होते हैं उन सब की प्रॉब्लम्स। इन परिस्थितियों में जो बेचैनी या फिर जो दबाव हम महसूस करते हैं वो स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेस जो है वो अक्सर किसी विशेष रीज़न से जो है वो जुड़ा होता है, और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जब वह समस्या यानी कि जो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है तो स्ट्रेस भी धीरे धीरे कम होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बताएं तो अगर किसी छात्र को परीक्षा का तनाव है तो जैसे ही आपकी परीक्षाएं ख़त्म होने वाली होती है वो सामान्य जो है वो धीरे धीरे फील करने लग जाता है। इसका मतलब दोस्तों स्ट्रेस जो है हमारी जीवन की परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। और अगर अब हम बात करें कि एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता या फिर घबराहट, लेकिन ये सामान्य चिंता से थोड़ी अलग होती है। एंजाइटी में व्यक्ति को लगातार डर, बेचैनी और घबराहट जो है वो महसूस होती है, कई बार बिना किसी स्पष्ट रीज़न के भी। यानी कि बाहर सब सामान्य हो सकता है लेकिन अंदर मन लगातार जो है वो परेशान रहता है। ऐसा लग सकता है आपको कि कुछ गलत होने वाला है, या फिर मन शांत नहीं हो रहा, या फिर दिल तेजी से जो है वो धड़क रहा है। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा चिंता जो है वो हो रही है। एंजाइटी सिर्फ सोच तक सीमित नहीं होती, इसका असर शरीर पर भी जो है वो दिखाई देने लगता है, जैसे कि पसीना आना, सांस तेज चलना, हाथ कांपना, नींद ना आना, या फिर किसी भी चीज़ पर जो है वो फोकस ना कर पाना। और सबसे खास बात, एंजाइटी कई बार बिना किसी बड़े कारण के भी लंबे समय तक जो है वो बनी रह सकती है। तो सो बेसिक सा हमने बात की कि क्या होता है स्ट्रेस, क्या होता है एंजाइटी। अगर हम देखें कि इन दोनों में बेसिक सा अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है, तो स्ट्रेस की जो रीज़न है वो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस किसी स्थिति की वजह से होता है। वो कोई भी ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में किसी चीज़ से आती है, जबकि एंजाइटी उस स्थिति के ख़त्म होने के बाद भी मन में जो है वो बनी रह सकती है। स्ट्रेस अक्सर बाहर की जो भी परिस्थितियाँ होती है वहाँ से आता है, जबकि एंजाइटी जो है वो अंदर की लगातार चिंता और डर से जुड़ी हुई होती है। अगर हम इसके डिफरेंस को अगर किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो मान लीजिए कि कल आपका इंटरव्यू है, इसलिए आप तनाव में हैं, ये आपका स्ट्रेस है। लेकिन इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद भी कई दिनों तक मन में डर, घबराहट और बेचैनी अगर आपके अंदर बनी रही तो यह एंजाइटी हो सकती है। अगर हम बात करें आज के समय में यूथ्स की, युवाओं की, तो आज जो सोशल मीडिया, कंपैरिजन, करियर
और साथ ही साथ लगातार बेहतर बनने की दौड़ ने हमें मानसिक दबाव को जो है वो बढ़ा दिया है। लोग बाहर से खुश दिखते हैं लेकिन अंदर से थके हुए महसूस करते हैं। हर समय ऑनलाइन रहना, दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना, फ्यूचर की चिंता और खुद को साबित करने का ये जो प्रेशर है, ये सब धीरे धीरे स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ाते जाते हैं। कई बार लोग अपनी जो फीलिंग्स उसे शेयर नहीं कर पाते और सब कुछ अंदर दबा कर रखते हैं। इससे भी हमारी जो मानसिक परेशानियां हैं वो और बढ़ जाती हैं। अगर हम कहें कि जो स्ट्रेस है वो क्या एकदम हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, तो हम कहेंगे कि नहीं, हर एक जो स्ट्रेस है वो एकदम ख़राब नहीं होता। कभी कभी हल्का सा स्ट्रेस ले लेना भी जो है वो अच्छा होता है। थोड़ा सा स्ट्रेस लेकर अगर हम किसी काम को करते हैं तो वो हमें उस काम को बेहतर करने में प्रेरित करता है। जैसे कि परीक्षा की एग्ज़ाम्स के अगर डेज आने वाले हैं तो हल्की सी एग्ज़ाम को फील करना और फिर तैयारी करना बेहतर होता है, समय पर पूरा काम करना या फिर किसी लक्ष्य के लिए जो है वो मेहनत करना। लेकिन जब यही स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाए तब भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, या फिर वो थोड़े लंबे समय तक लगातार बना रहे, तब ये हमारी बॉडी के लिए और हमारे मन दोनों के लिए जो वह हार्मफुल हो सकता है। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि आप पॉजिटिव स्ट्रेस के जो स्टेज है वह

वहाँ तक ही पहुँचे, उसके आगे नहीं। जैसे ही वो स्ट्रेस लगातार बना रहा या फिर थोड़ा सा उसका लेवल अगर ज़्यादा हो गया है तो वो आपके लिए हार्मफुल होना हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप कुछ चीज़ें हैं जिनको देखकर, जिन्हें अपनाकर या जिन्हें फॉलो करकर आप इनसे बच सकते हैं। जैसे कि जब भी आप स्ट्रेस फील करें, एंजाइटी फील करें, तो आप जो है अपने मन की बातों को जो है वो शेयर कर सकते हैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ। बात करने से आपका मन जो है वो हल्का हो सकता है। साथ ही साथ पर्याप्त नींद ले सकते हैं। रोज़ अच्छी नींद लेना जो है वो बेहद ज़रूरी होता है। जब आप ऐसा फील कर रहे हो तब आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, योगा की ओर जो है वो जा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और ख़ुद पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव जो है वो नहीं डालना। हर एक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हर समय परफेक्ट बनने की कोशिश करना मानसिक थकान को जो है वो बढ़ा सकता है। तो बस आपको आपके मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान उतना ही रखना है। हम अक्सर बॉडी को तो इम्पोर्टेंस देते हैं, उसकी बीमारी को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन मन की थकान को जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार उदास, डरा हुआ या फिर परेशान जो है वो महसूस कर रहा है तो उसे समझाएं और सहारा देने की ज़रूरत होती है। उसे जज ना करें, उसे सहारा दें, उसे समझाएं। मानसिक स्वास्थ्य कमजोरी नहीं बल्कि इंसानी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उस महत्वपूर्ण हिस्से में सबसे ज़रूरी है उसका ध्यान रखकर। तो दोस्तों, स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो दोनों ही हमारी मानसिक स्थिति से जुड़े हैं, लेकिन दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा है। तो बस स्ट्रेस जब भी आए आपकी किसी भी जीवन की परिस्थितियों से तो उससे घबराना नहीं है, और जब एंजाइटी आए बिना वजह, कई बार बिना वजह भी लंबे समय तक हमारे मन को जो परेशान चीज़ें करती रहती है वो एंजाइटी होती है। तो बस हमें ज़रूरी है उस समय करना कि हमें अपने मन की सुननी है, खुद को समय देना है और ज़रूरत पड़ने पर मदद लेने में भी जो है वो किसी से जो है वो संकोच नहीं करना है। याद रखिए, जैसे शरीर को आराम चाहिए वैसे ही मन को भी आराम चाहिए। स्वस्थ शरीर के साथ ही स्वस्थ मन भी जो है वो ज़रूरी है। तो बस अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपके मानसिक स्वास्थ्य का भी उतना ही जो है वो ध्यान रखें।

जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवानी और खास सेगमेंट चल रहा है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी उन चीज़ों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि बदलते मौसम के साथ हमारी जीवन शैली और सावधानियां भी बदलनी उतनी ज़रूरी होती है। गर्मियों के मौसम की हमने एक ब्रेक से पहले बात की कि हर तरफ तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान है। कई लोग जो है इस मौसम को सिर्फ पसीना और गर्मी तक मानते हैं, लेकिन सच ये है कि ज़्यादा गर्मी हमारे शरीर पर गंभीर जो है वो प्रभाव डाल सकती है। और इन्हीं समस्याओं में से एक और समस्या जो है वो सामने आती है, और वो है हीट एग्जॉशन, यानी कि गर्मी की वजह से शरीर का अत्यधिक थक जाना। आज के सेगमेंट में हम जो है वो बात करने वाले हैं कि हीट एग्जॉशन क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये क्यों होता है, और सबसे ज़रूरी इससे बचाव जो है वो कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में लंबे समय तक तेज गर्मी या धूप जो है वो बनी रहती है और शरीर से बहुत ज़्यादा पानी और नमक पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है, तब शरीर कमज़ोर और हल्का और थका हुआ महसूस करने लगता है। इसी स्थिति को जो है वो हीट एग्जॉशन कहा जाता है। आसान भाषा में कहिए तो जब शरीर खुद को ठंडा रखने में जो है वो संघर्ष करने लग जाए और ज़्यादा गर्मी के कारण ऊर्जा कम होने लगे, तब ये जो स्थिति जो है वो बनती है। यह समस्या खासकर गर्मियों में ज़्यादा देखने को मिलती है, और स्पेशली उन लोगों में जो लंबे समय तक धूप में काम करते हैं, कम पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो शारीरिक मेहनत करते हैं, या फिर तेज गर्मी में सफ़र करते हैं। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो ये जो स्थिति है और गंभीर हो सकती है। होने के बाद ये हीट स्ट्रोक में भी जो है वो बदल सकती है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर हम इस जो हीट एग्जॉशन है इसे पहचाने कैसे, कैसे पता करें कि किसी व्यक्ति को जो है वो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके कुछ बेसिक से जो है वो सिम्टम्स है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पसीना आना, बॉडी में कमजोरी फील करना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, जी मचलना, उल्टी जैसा फील होना, दिल की धड़कन तेज होना, त्वचा का ठंडा या फिर चिपचिपा फील करना, अचानक बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, या फिर आपको ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना। कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शरीर

में बिल्कुल ताकत नहीं बची। अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे तो आपको तुरंत जो है वो सावधान होने की ज़रूरत है। दोस्तों ये तो थे इसके बेसिक से जो है वो सिम्टम्स, लेकिन अब बात करें कि ये होता क्यों है। हमारा शरीर जो है वो सामान्य तापमान बनाए रखने की कोशिश करता है, जबकि शरीर ज़्यादा गर्म होता है तब वो ऐसा नहीं कर पाता, तब पसीना निकलता है और शरीर ठंडा होने लगता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, कम पानी पिया जाए और शरीर लगातार मेहनत कर रहा हो, तब बॉडी का संतुलन जो है वो बिगड़ने लग जाता है। और इसका मेन रीज़न जो है वो हम बात करें तो वो है कि कम पानी पीना, बहुत समय तक धूप में खड़े रहना, बहुत ज़्यादा कसरत करना, शारीरिक मेहनत करना, गलत कपड़े पहनना, इन सब चीज़ों के कारण जो है हमें ये प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ सकती है। तो इनसे बचने के क्या उपाय हैं, वही बेसिक से जो हम पहले भी आपसे जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि हमें इस मौसम में जो है वो खूब सारा पानी पीना है, धूप से बचना है, हल्के और सूती कपड़े पहनने हैं, खान पान का जो है वो विशेष ध्यान रखना है, तरल और ठंडे पेय हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है और ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो मेहनत ना करें, क्योंकि इस बीच जो हमारी एनर्जी और ऊर्जा जो है वो ज़्यादा लगती है, हमें बीच बीच में आराम की ज़रूरत पड़ती है। अगर बाहर काम करना पड़ता है तो थोड़ी थोड़ी देर आप छांव में बैठकर जो है वो ज़रूर आप अपने आप को जो है वो आराम दे सकते हैं। तो बस वो बेसिक सी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आपको लगे कि किसी व्यक्ति को हीट एग्जॉशन के जो है वो सिम्टम्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, तो आप कुछ हेल्प उनकी कर सकते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति को ठंडी या छायादार जगह पर ले जा सकते हैं, उसे आराम करने दे सकते हैं, पानी या फिर ORS का घोल दे सकते हैं, शरीर और चेहरे पर ठंडा कपड़ा रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने पर आप डॉक्टर के पास जो है वो लेकर जा सकते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज़रूरी बात यही है कि समय पर ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आवश्यक है। दोस्तों कई लोग गर्मी के मौसम को बहुत हल्के में लेते हैं और शरीर के संकेतों को जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन याद रखिए हमारा शरीर हमारे संकेत हमें समझा देता है, बस ज़रूरत हमें उनकी ओर ध्यान देने की है। विशेष रूप से अगर बात करें बच्चों बुज़ुर्गों को बाहर निकलने से जो है वो बचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी जो है उन्हें बरतनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये हीट एग्जॉशन वाली जो समस्या है वह छोटी नहीं है। हमारे शरीर का संकेत है कि उसे आराम, पानी और देखभाल की ज़रूरत है। अगर हम समय रहते सही आदतें अपनाएं, जैसे कि पानी पीना, पर्याप्त धूप से बचना, सही खाना खाना और शरीर को आराम देना, तो इन समस्या से जो है वो आसानी से जो है वो बचा जा सकता है। गर्मियों में सिर्फ बाहर की गर्मी से नहीं बल्कि अपनी सेहत की जिम्मेदारियों से भी लड़ना ज़रूरी है। याद रखना है कि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। बस अपना और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखना है, स्वस्थ रहना है और सुरक्षित रहना है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: राजस्थान पब्लिक स्कूल रिसाव,
4: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट,
3: कृषि विज्ञान कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध,
4: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति,
3: अनुभवी साफ सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम,
4: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में।
3: राजस्थान पब्लिक स्कूल रिसाव 9413366097।
5: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
6: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
2: फसा अनजान ऐप से बचें,
1: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: जी दोस्तों, आज का ये खास कार्यक्रम रहा हेल्थ एंड फिटनेस को जो है वो डेडिकेटेड। और आज के इस हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट में हमने जाना कि गर्मियों में शरीर को प्राकृतिक तरीके से ठंडा किस प्रकार रखें, हीट एग्जॉशन से कैसे बचा जा सकता है, साथ ही साथ स्ट्रेस और एंजाइटी में क्या डिफरेंस होता है। इन सभी बातों का एक ही जो है वो संदेश है कि अच्छी सेहत के लिए सिर्फ शरीर ही नहीं, मन का स्वस्थ होना भी जरूरी है। सही खान पान, पर्याप्त नींद, पर्याप्त पानी और पॉजिटिव सोच हमें अंदर से मजबूत बनाती है। इसीलिए अपनी सेहत को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही और स्वस्थ जीवन ही खुशहाल जीवन की पहचान होती है। इसी पॉजिटिव सोच के साथ जो है वो जाने की अब आपसे आज्ञा लेंगे और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और साथ ही साथ जुड़े रहिए ओनली ऑन 100.7 के साथ। फिलहाल जाने की इजाजत दें आपकी आरजे दोस्त भावना को। आप सभी को मेरा

शुभम से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से शाम 6:05 पर। देशभक्ति फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:20 पर। संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। और हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से शाम 6:30 पर आप सुनेंगे। जिले की चिट्ठी का प्रसारण समय रहेगा शाम 6:40 पर। और शाम 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

0: हमारे किसान भाई बहनों का कार्यक्रम खेती और गृहस्थी आप सुनेंगे शाम 7 बजे। आज के इस कार्यक्रम में आप चर्चा सुनेंगे राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना के बारे में। आज के इसी कार्यक्रम में एक और चर्चा होगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। कार्यक्रम में एक और चर्चा होगी जलवायु परिवर्तन और कृषि के बारे में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। रात्रि 8:45 पर समय रहेगा समाचार संध्या का और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे News@9। बातें ही चाले कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। आपके ईमेल्स पर आधारित राजस्थानी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गोरबंद समय रहेगा रात्रि 10 बजे। श्रोता इस कार्यक्रम में आप हमें मेल कर सकते हैं अभी शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक। इस कार्यक्रम के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है gorbandchuru@gmail.com gorbandch। रात्रि 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे। रात्रि 11:05 आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वित्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरल में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी

0: कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Senior BJP leader Suvendra Adhikari will be the new Chief Minister of West Bengal. BJP Legislature Party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP Chief Minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: The election process was completed just a few days ago. Around 8 proposals and supporting nominations were received and all of them were in favor of the same name. Sufficient time was also given for any other nomination but no second name was proposed. Therefore, as the central observer, I declare Suvendu Adhikari as the elected leader of the West Bengal Legislative Party.
2: विधान मंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: Tomorrow morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. Prime Minister Narendra Modi, along with the host of union ministers and several chief ministers from the BJP ruled states, will attend the ceremony. As the ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, cultural performances will also form part of the program. In the formation of a new government in Tamil Nadu, TVK, the single largest party, has been seeking support from the CPI, CPM and the VCK.

देशभक्ति फिल्मी गीतों में श्रोताओं, अभी आपने सुना कर्मा फिल्म का ये गीत। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत में समाचार। इन समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन नवनिर्वाचितानां भाजपा विधायकानां दलस्य वरिष्ठ नेतॄणां च उपस्थितौ औपचारिक रूपेण घोषितम्।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: नव भाजपा सर्वकारस्य शपथ ग्रहण समारोहः श्वः कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मई मासस्य एकादश दिनांके गुजरात राज्यस्थितस्य सोमनाथ मंदिरस्य दर्शनं करिष्यति। एकपञ्चाशदधिक नवदशशततमे वर्षे भारतस्य प्रथम राष्ट्रपतिना डॉ राजेन्द्र प्रसादेन नवीकृतस्य मंदिरस्य उद्घाटनं कृतमासीत्। तस्याः ऐतिहासिक घटनायाः 75 वर्ष पूर्तेः स्मरणार्थम् एषा यात्रा आयोज्यते। अद्य प्रधानमन्त्रिणा स्वस्य राष्ट्रिय दैनिके लेखे एषा सूचना प्रदत्ता। स्वस्य लेखे सः उक्तवान् यत् गत केषुचित् मासेषु सोमनाथ सम्बद्धेषु महत्वपूर्णेषु कार्यक्रमेषु भागग्रहणं तस्य कृते महान् सौभाग्यस्य विषयः अस्ति। अस्य वर्षस्य आरम्भे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इत्यस्मिन् कार्यक्रमे अपि सहभागित्वं कृतवान्। अयं कार्यक्रमः मन्दिरस्य उपरि जातस्य प्रथम आक्रमणस्य सहस्रवर्षपूर्त्यवसरे आयोजितः आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा सोमनाथः भारतस्य सभ्यतायाः, शक्तेः, राष्ट्रिय एकतायाः, संघर्षशीलतायाश्च प्रतीकत्वेन वर्णितम्। डीआरडीओ तथा भारतीय वायुसेना इत्येताभ्यां ह्यः ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन तारा इति शस्त्रस्य प्रथमं साफल्यं उड्डयन परीक्षणं संपादितम्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अस्य सफलोड्डयन परीक्षणस्य कृते डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, डीसीपीपी तथा संबद्ध उद्योगान् अभिनन्दितवान्। सः एतत् भारतस्य स्वदेशीय रक्षाक्षमता संवर्धनस्य दिशि महत्वपूर्णं पदाक्षेपम् इति वर्णितवान्। तारा भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्रप्रणाली इति अस्ति, या अमार्गनिर्देशित विस्फोटकान् सूक्ष्म मार्गनिर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। अन्याभिः डीआरडीओ प्रयोगशालाभिः सह सहयोगेन हैदराबाद स्थितेन अनुसंधान केन्द्रेण अस्य परिकल्पना तथा विकासः कृतः। एषा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्र प्रणाली स्वप्रकारे प्रथमास्ति, यस्याम् अत्याधुनिकाः अल्पव्ययुक्ताः प्रौद्योगिकयः उपयोजिताः सन्ति। एतत् न्यूनव्ययुतस्य शस्त्रस्य अग्निशक्तिं तथा लक्ष्यभेदन यथार्थतां वर्धयित्वा भूलक्ष्यान् प्रभाविरीत्या निष्प्रभाविकरोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः वैश्विक आर्थिक स्थिरतायाः स्तंभरूपेण भारतस्य वर्धमान भूमिकायाः विषये अवधानं प्रदत्तवान्, तथा च अन्ताराष्ट्रिय समृद्ध्यै राष्ट्रस्य महत्वपूर्णं योगदानम् अवधानं प्रदत्तवान्। सुरीनाम देशे सुरीनामी समाजस्य विभिन्नानां वर्गाणां प्रतिनिधिवर्गाणां सम्बोधनावधौ मन्त्रिणा इदमुक्तम्। सः भारतस्य प्रभावस्य परिणामम् अधोरेखितुम् अद्यतनीयां दत्तांशान् सूचयन् उक्तवान् यत् अस्मिन् वर्षे वैश्विकवृद्धेः आईएमएफ इत्यस्य अपेक्षानुसारं भारतस्य योगदानं सम्पूर्णे वैश्विकवृद्धेः 17% यावदस्ति।
2: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
2: इंक्लूडिंग मोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर कंट्रीज टू अवेल ऑफ इट।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंहः अवदत् यत् प्रवास विषये भारतस्य दृष्टिकोणः प्रवासिनां संरक्षणस्य मूल प्रचालन सिद्धान्तैः प्रवासस्य जीवन चक्रस्य सर्वसमावेशक शासनेन सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगेन च मार्गदर्शितः अस्ति। श्रीमंत्री न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र संघस्य भारतस्य स्थायी अभियाने द्वितीयान्तर्राष्ट्रिय प्रवास समीक्षा मंचे प्रतिनिधि दलस्य प्रमुखान संबोधयनासीत।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: प्रशासनेन उक्तं यत् सम्पूर्णे देशे गृह्य LPG इत्यस्य आपूर्तिः सुकरः अस्ति। कस्मिन्नपि वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना नास्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर मन्त्रालयीयं वार्तालापं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य सचिवः सुजाता शर्मा इत्येषा उक्तवती यत् प्रशासनस्य प्रयासः अस्ति यत् देशीय ग्राहकेभ्यः गैस इत्यस्य अभावः न भवेत् तथा च पश्चिम एशियायाः विकसित स्थितौ मूल्यानि स्थिराणि एव भवेयुः।
4: भारत सरकार ने ये कोशिश की अभी तक कि कोई प्राइस इंक्रीज ना हो और इसके लिए एक्साइज ड्यूटी भी कम की। इसके अलावा और भी बहुत सारे कदम लिए, जैसे कि रिफाइनरीज के अंदर LPG प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, PNG कनेक्शंस को प्रमोट करना, हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाया गया और अब लगभग 98% तक उनकी सप्लाई इंश्योर की गई है।
0: आकाशवाण्या स्वीय 90तमस्य वार्षिकोत्सवस्यावसरे अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां मैराथन इत्यस्य आयोजनं कृतम्। प्रायः 3.5 किलोमीटर मितं मैराथन इत्येतत् आकाशवाणी भवनात् आरभ्य कृषिभवने, रेलभवने, RBI भवने च भूत्वा पुनः आकाशवाण्याम् एव समाप्तम्। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य प्रसारभारत्याः च कर्मचारिणः स्वीयपरिवारस्य सदस्यैः च सह अस्यां मैराथन धावन प्रतियोगितायां भागं गृहीतवन्तः। सर्वे प्रतिभागिनः धावन समापन पदकं प्राप्तवन्तः। पुरुष महिला विभागयोः शीर्षत्रयेभ्यः धावकेभ्यः पारितोषकानि प्रदत्तानि। अस्माकं संवाददात्रानुसारं प्रसारभारत्याः CEO गौरव द्विवेदी, आकाशवाण्याः महानिर्देशकः राजीव कुमार जैनः च स्पर्धायै हरितध्वजं प्रदर्शितवन्तौ। भारतस्य सिमरनजीत कौर इत्येषा अद्य सांघाई नगरे आयोजितस्य आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 इत्यस्मिन् महिलानां रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवती इति वार्ताः।
5: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार किसानों को नई कृषि तकनीकों और नवाचारों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। RPSC की ओर से SI भर्ती परीक्षा 2021 फिर से आयोजित की जाएगी। इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कल प्रदेश की सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा और पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के प्रकोप से एक ओर जनजीवन प्रभावित, वहीं कुछ जिलों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार कृषि और उससे जुड़े विभिन्न विभागों का एक क्लस्टर बनाकर काम कर रही है ताकि किसानों को तकनीक और निवेश का पूरा लाभ मिल सके। वे आज हैदराबाद में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत आयोजित इन्वेस्टर मीट को संबोधित कर रहे थे।

0: मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक फूड प्रोसेसिंग और टिकाऊ खेती के मॉडल राजस्थान की कृषि भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं श्री शर्मा ने हैदराबाद को आईटी और एग्रीटेक नवाचारों का बड़ा केंद्र बताते हुए वहां के निवेशकों और उद्यमियों को 23 से 25 मई तक जयपुर में होने वाले ग्राम में शामिल होने का निमंत्रण दिया
1: हम एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और किसानों को मार्केट से सीधे जोड़ने की पहल भी हम कर रहे हैं राजस्थान में हम बीज उत्पादन ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्री प्रोसेसिंग के बड़े हब विकसित करना चाहते हैं अगर आपकी एक दो यूनिट यहाँ लग रही है तो एक राजस्थान में भी लगाएं इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप नई तकनीकी के आधार पर नए विचारों के आधार पर पधारो हमारे देश
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर ब्लॉक में सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी खोली जाएंगी श्री शर्मा ने कहा कि सभी जिलों में महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय और 16 नए छात्रावास बनाए जाएंगे साथ ही बूंदी के हिंडोली में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर आधारित नुरमा और पुस्तकालय भी बनाया जाएगा राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त कर दिया है अब ये परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि परीक्षा इस वर्ष सितंबर में होना संभावित है इस परीक्षा में केवल वे ही 383,097 अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो पूर्व में आयोजित दोनों प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षा में बैठे थे नए आवेदकों को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्रों में सुधार के लिए 16 मई से 30 मई तक का समय दिया गया है इस दौरान मोबाइल नंबर ईमेल और पत्राचार का पता अपडेट किया जा सकेगा कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मृत्यु के मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी इस बीच अस्पताल प्रशासन ने आज 4 महिलाओं की किडनी फेल होने की पुष्टि की है जिनका डायलिसिस किया जा रहा है वहीं आज राज्य के ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने अस्पताल का दौरा कर वार्डों और ऑपरेशन थिएटर में स्टेरिलाइजेशन व्यवस्था का निरीक्षण किया औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से दवाओं और फ्लूइड के 23 नमूने लिए गए हैं एहतियात के तौर पर संबंधित दवाओं के इस्तेमाल पर पूरे प्रदेश में तत्काल रोक लगा दी गई है गौरतलब है कि इस घटना में अब तक 2 प्रसूताओं की मृत्यु हो चुकी है उपमुख्यमंत्री और महिला तथा बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि सरकार प्रदेश में बच्चों और मातृशक्ति के बेहतर स्वास्थ्य पोषण तथा सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है वे आज जयपुर में विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों पर निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक आहार समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए उपमुख्यमंत्री ने पोषाहार वितरण में पारदर्शिता और स्वच्छता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे स्वस्थ और सशक्त राजस्थान का संकल्प साकार होगा केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें सचिव ने बताया कि मार्च से अब तक 6 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं
2: अभी तक 6.5 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ इसके अलावा 2,66,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है 7 लाख से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं प्रदेश भर में कल इस साल की दूसरी राष्ट्रीय

0: राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसमें आपसी सहमति से ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस, बैंक ऋण और पारिवारिक विवादों को सुलझाया जाएगा। सवाईमाधोपुर जिले में लोक अदालत के लिए कुल 10 बेंचों का गठन किया गया है। झुंझुनू जिले में करीब 15,000 मामलों को राजीनामा के लिए चिन्हित किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉ. महेंद्र के सिंह सोलंकी ने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निस्तारण आपसी समझ और सहमति से किया जाता है।
1: पार्टीज के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। समझौते के आधार पर दोनों पक्षों में जब राजीनामा हो जाता है, अंतिम रूप से प्रकरण का निस्तारण हो जाता है। इसके लिए पूरे जिले में 11 बेंचों का गठन किया गया है। मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोक अदालत में पधारें और अपने जो समझौते वाले जो प्रकरण हैं उनका राजीनामा के द्वारा अधिक से अधिक निस्तारण करवाएं। समाधान नाम से एक पोर्टल है जिससे ऑनलाइन के माध्यम से भी इनका निस्तारण करवाया जा सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में इन दिनों प्रदेश भर में काउंटडाउन योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सवाईमाधोपुर में आयुर्वेद विभाग की ओर से दशहरा मैदान में योग शिविर लगाया गया। इसमें पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया और करो योग रहो निरोग का संदेश दिया। कोटपुतली बहरोड के पावटा और पाली के कोलीवाड़ा में भी स्कूली विद्यार्थियों के लिए योग शिविर आयोजित किए गए। और अब मौसम। प्रदेश में आज ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में तेज गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां चिलचिलाती धूप से लोगों की दिनचर्या पर असर हुआ है। अस्पतालों में लू और तापघात के मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बाड़मेर संवाददाता।
2: जिले में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के चलते लोग बेहाल हैं। गर्मी और लू की गंभीरता को देखते हुए तापघात और अन्य ताप जनित बीमारियों के मरीजों के इलाज के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। जिला अस्पताल में 18 बेड आरक्षित रखने के अलावा 2 विशेष टीमों का गठन किया गया है। भामाशाहों के सहयोग से अस्पताल परिसर में प्याऊ और वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: पाली में भी तेज गर्मी को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को कड़ी धूप में नहीं निकलने और सूती कपड़े पहनने का परामर्श दिया है। मौसम विभाग ने जोधपुर और बीकानेर संभाग में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है। वहीं आज नागौर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर तथा टोंक जिलों में धूल भरी तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। इन स्थानों पर कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। वहीं सवाईमाधोपुर और बूंदी में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात का येलो अलर्ट दिया गया है। सवाईमाधोपुर जिले में टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान के तहत विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आज बामनवास के भावरा और खंडार के बलवन खुर्द में शिविर लगाए गए। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. अमित कुमार गोयल ने बताया कि ये अभियान 12 मई तक जिले के विभिन्न गांवों में जारी रहेगा। इन शिविरों में टीबी से जुड़ी विभिन्न जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। पाली के व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी भरत पवार का चयन भारतीय टीम में हुआ है। वे श्रीलंका में 25 से 28 मई तक आयोजित होने वाली इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट T20 सीरीज में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भरत पवार ने साल 2019 में इस खेल की शुरुआत की थी और वे साल 2022 में राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। क्रिकेट के साथ साथ उन्होंने पैरा स्विमिंग में स्वर्ण और राष्ट्रीय स्तर पर व्हीलचेयर रग्बी में रजत पदक हासिल किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। ये भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में

0: सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर कल ओडिशा तट पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार किसानों को नई कृषि तकनीकों और नवाचारों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। आरपीएससी की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 फिर से आयोजित की जाएगी। इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कल प्रदेश की सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। और पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के प्रकोप से एक ओर जनजीवन प्रभावित, वहीं कुछ जिलों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख हरीश पालीवाल ने तैयार किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों उदयपुर का दौरा किया। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सड़क, पानी, बिजली और सरकारी योजनाओं की धरातल पर प्रगति पर चर्चा की गई। उन्होंने उदयपुर में पर्यटन को विकसित करने संबंधी दिशा निर्देश भी दिए। विशेष रूप से उदयपुर के मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री इसके बाद प्रतापगढ़ के भंभोरी गांव के लिए रवाना हुए। इससे पहले डबोक हवाई अड्डे पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उदयपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई हालिया कार्रवाई में गड़बड़ियों के कारण दो निजी आईवीएफ सेंटरों का पंजीयन निलंबित किया गया। राज्य सरकार ने प्रदेश में चलाए जा रहे आईवीएफ सेंटर्स में पारदर्शिता, वैधानिक अनुपालन और नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रवैया अपनाया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले दो सेंटरों का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि इन सेंटर्स में बड़ी गड़बड़ियां पाई गईं। राज्य स्तर पर जांच के लिए सरोगेसी के नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया है। साथ ही जिले में पंजीकृत सभी आईवीएफ सेंटर्स की सघन जांच के लिए अलग अलग टीमें बनाकर औचक निरीक्षण किया गया। इन्होंने 28 केंद्रों का निरीक्षण किया। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि एआरटीवी नियमन अधिनियम 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अधीन चलाए जा रहे महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय के ईएनटी विभाग ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विभाग के अध्यक्ष डॉ. नवनीत माथुर ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों ने क्षेत्र में पहली बार बिना किसी बाहरी चीरे के मुंह के रास्ते से थायराइड ग्रंथि का ऑपरेशन करने में सफलता हासिल की है। ऑपरेशन में अत्याधुनिक अल्ट्रासोनिक डिवाइस का प्रयोग किया गया और एंडोस्कोपी की मदद से स्क्रीन पर देखते हुए ये ऑपरेशन हुआ। इससे मरीज को दर्द भी कम होता है और रक्तस्राव भी कम होता है। जिले में इन दिनों ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उदयपुर ग्रामीण, मावली, वल्लभनगर, गोगुंदा और खेरवाड़ा क्षेत्र के गांवों में ये रथ पहुंचा। इस दौरान कला जत्थों की ओर से आकर्षक प्रस्तुतियों के माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। जगह जगह ग्रामीणों ने रथ का पूजन कर स्वागत किया। गौरतलब है कि इस अभियान के तहत 13 विभागों की जानकारी घर घर पहुंचाई जा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पिछले दिनों उदयपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने बड़गांव की वाटी ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने बेदला में भी राजकीय विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। वाटी में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों से मेवाड़ के महापुरुषों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जर्जर विद्यालय भवनों को ध्वस्त कर नए विद्यालय भवन बनाने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। श्री दिलावर ने गांवों में नियमित साफ सफाई के भी निर्देश जारी किए। वहीं बेदला में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने शौर्य चक्र विजेता मेजर मुस्तफा और प्रकाश खटीक की माताओं का सम्मान किया। राज्य सरकार की ओर से उदयपुर, बांसवाड़ा और सिरोही में चंदन वन विकसित करने को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। वन मंत्री संजय शर्मा उदयपुर पहुंचे। उन्होंने पिछोला झील के पास कालका

0: माता वन क्षेत्र का जायजा लिया। वन मंत्री ने अधिकारियों से चंदन वन विकसित करने की योजना पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि चंदन के पेड़ आर्थिक, औषधीय और पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कल से होने वाली प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा के लिए जिले में व्यापक तैयारियां की गई हैं। ये परीक्षा जिले में 189 केंद्रों पर होगी, जिसमें करीब 59,300 से ज्यादा अभ्यर्थी हिस्सा लेंगी। ये परीक्षा 2 दिनों में अलग अलग विषयों के लिए होंगी। प्रशासन की ओर से सुचारू और पारदर्शी परीक्षा के आयोजन के लिए पूरी तैयारी की गई है। इसके साथ ही उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, राज्य सरकार किसाना ने नवी तकनीक और नवाचाराओं जोड़ वो तय कीनो। राजस्थान लोक सेवा आयोग री ओर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 उजू ली जावेला। प्रदेश में ई साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत काल लगाई जावेला। और राज्य रा तुणी हल्का में जबरदस्त गर्मी, दूजा हल्का में कठे कठे बरसात रा आसार। समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे बस समाचार विगतवार। किसाना ने तकनीक और निवेश रो पूरो फायदो दिरावन सारू राजस्थान सरकार खेतीबाड़ी और वाऊ जुड़िया महकमा रो एक जोड़ बनार काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 रा सिलसिला माए आज हैदराबाद माए राखी जिया निवेशक सम्मेलन माए आ जानकारी दीनी। वह हैदराबाद ने आईटी और एग्रीटेक नवाचारां रो मोटो केंद्र बताता था का कहो के ड्रोन तकनीक, फूड प्रोसेसिंग और टिकाऊ खेती रा मॉडल राजस्थान रा कृषि भविष्य सारू खास है। वह राज्य में चल रही ईआरसीपी और यमुना जल समझौता सरीखी मोटी परियोजनाओं रो जिक्र करता था का कहो के सरकार किसाना ने जरूरी तादाद में पानी और साधन मुहैया कराउनो तय कीनो है। श्री शर्मा निवेशक और उद्यमियों ने 23-25 मई ताई जयपुर माई फेवन वाला खास ग्राम सम्मेलन माई शामिल फेवन रो न्योतो दिनो।
2: हम एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और किसानों को मार्केट से सीधे जोड़ने की पहल भी हम कर रहे हैं। राजस्थान में हम बीज उत्पादन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्री प्रोसेसिंग के बड़े हब विकसित करना चाहते हैं। अगर आपकी 1-2 यूनिट यहाँ लग रही है तो एक राजस्थान में भी लगाएं। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप नई तकनीकी के आधार पर, नए विचारों के आधार पर पधारो हमारे देश।
1: इनु पहली मुख्यमंत्री महात्मा ज्योतिबा फुलेरी 200वीं जयंती रा सिलसिला माए जयपुर माए राखी जिया कार्यक्रम माए शामिल फिया। श्री शर्मा कहो कि प्रदेश रा हर ब्लॉक माए सावित्री बाई फुले ई लाइब्रेरी खोली जावेला और सगला जिला माए महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय खोलिया जावेला और 16 नुआ छात्रावास बनाया जावेला। श्री शर्मा कहो कि बूंदी जिला रा हिंडौली माए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले री जिंदगी रो दर्शाव करण वालो पैनोरमा और लाइब्रेरी ही बनाया जावेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग पुलिस उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 निरस्त करती नी है। राज्य सरकार री सिफारिश पाछे निरस्त करी जी आ परीक्षा अब नुआ सिराओं पाछी ली जावेला। आयोग रा अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि सितंबर 2026 माए संभावित ई परीक्षा माए पहले लेरी जी लिखित परीक्षा रा दोनों पेपर देवन वाला 383,097 उम्मीदवार ही शामिल फै सकेला। नुआ उम्मीदवार आ परीक्षा नहीं दे सकेला। उम्मीदवारां ने अर्जियां माए सुधार सारू 16-30 मई ताई रो टेम दियो चियो है। इन माए मोबाइल नंबर, ईमेल और चिट्ठी पत्री रो पतो अपडेट करियो जा सकेला। बदलाव पहली वन टाइम रजिस्ट्रेशन रातेत केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनो जरूरी फैला। कोई बदलाव नहीं करण री सूरत माई पोर्टल माथा जार फोटो और दस्तखत काम लेवन सारू सहमति देवणो और अर्जी फाइनल सबमिट करनो जरूरी फैला। कोटारा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जापावड़े लुगाइयां री मौत रा मामला री जांच सारू समिति बनाती रीची है।

0: संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल आ जानकारी दिनी। इन बीच अस्पताल प्रशासन जापा वाली चार महिलाओं रे किडनी फेल वजावन री आज पुष्टि कर दिनी। आरो डायलिसिस करियो चाचियो है। राज्यरा ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक अस्पताल रो दौरो कर वार्डा और ऑपरेशन थिएटर माय साफ सफाई री व्यवस्था रो जायजो लिनो। औषधि नियंत्रण विभाग री ओरू दवाइयां और फ्लूइड रा 23 नमूना लिया चिया है। ये बीच जयपुर बुलाई चिया डॉक्टरों री टीम ही मरीजों रा इलाज रा काम माथा नजर रख रही है। एहतियातन सरकार संबंधित दवाइयां काम लेवन पर पूरा राज्य माय तुरंत रोक लगाती नी है। ध्यान जोग है कई घटना माए हाल ताई जापा वाली दो लुगाइयां री मौत वे की है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कहो है कि राज्य सरकार बच्चा और मायड़ा रा बेहतर स्वास्थ्य पोषण और पूरा विकास सारू पूरा मनु काम कर रही है। वे आज जयपुर माए महिला और बाल विकास विभाग रा एहलकारा सागर राखी जी मीटिंग माए बोल रही ही। दिया कुमारी पोषाहार वितरण माए साफ गोई और साफ सफाई तय करण माथे जोर देता था का कहो कि इणु स्वस्थ और मजबूत राजस्थान रो सपनो साँचो वेला। देश में आए घरेलू रसोई गैस रिपूर्ति आसानियों करी जा रही है और कठे हुई पूर्ति माए कमीरा कोई समाचार नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय रे सचिव सुजाता शर्मा आज नई दिल्ली माए कहो कि सरकार ग्राहका ने गैस री कमियों बचावन और इनरा मोल माए थरता राखण सारू सगला जरूरी जतन कर रही है। वे बतायो कि मार्च महीना हाल ताई 6 लाख हूं बत्ता PNG कनेक्शन चालू कर दिया चिया है।
1: अभी तक 6.5 लाख से अधिक PNG कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया, ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2,66,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। 7 लाख से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को PNG कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है।
0: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश में आए काल इन साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जावेला। इन तेत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण री ओरू सगली अदालतां उपभोक्ता मंचां और राजस्व अदालतां माए गाड़ियां रा चालान चेक बाउंस वेवन बैंकों लिया जिया कर्ज रा चुकारा और घरेलू झगड़ा सरीखा राजीनामाओं निपटाया जावन वाला मामला रो निपटारो करियो जावेला। सवाई माधोपुर जिला माए लोक अदालत सारू 10 बेंच बनाई ची है। जिला मुख्यालय माथा 4 और गंगापुर सिटी माए 2 बेंच सुनवाई करेला। इनके अलावा बौनली खंडार बामनवास और चौथ का बरवाड़ा माई 1-1 बेंच लगार मामला निपटाया जावेला। झुंझुनू जिला माए लोक अदालत निपटारा सारू ले जाया जावन वाला करीब 15,000 मामला ने पिछाण करी ची है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रा सचिव डॉक्टर महेंद्र के सिंह सोलंकी बतायो के लोक अदालत माए मामला रो निपटारो समझाइश और आपसी सहमतियों करियो चावे है।
2: पार्टीज के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। समझौते के आधार पर दोनों पक्षों में जब राजीनामा हो जाता है अंतिम रूप से प्रकरण का निस्तारण हो जाता है। इसके लिए पूरे जिले में 11 बेंचों का गठन किया गया है। मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोक अदालत में पधारें और अपने जो समझौते वाले जो प्रकरण है उनका राजीनामा के द्वारा अधिक से अधिक निस्तारण करवाएं। समाधान नाम से एक पोर्टल है जिससे ऑनलाइन के माध्यम से भी इनका निस्तारण करवाया जा सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी रा आला नेता सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल रा नुआ मुख्यमंत्री बनेला। आज कोलकाता माए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह री मौजूदगी माए भी भाजपा विधायक दल री मीटिंग माए वाना दल रा नेता चुनी चिया। श्री अधिकारी बंगाल माए भाजपा री पहली सरकार रा मुखिया फैला। पश्चिम बंगाल माए पहली दफा भाजपा रा राज माए मंत्रिमंडल माए शामिल करया जावन वाला ने काल कोलकाता रा ब्रिगेड परेड ग्राउंड माए शपथ दिराई जावेला। 21 जून ने मनाया जावन वाला 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए राज्य माए जागरूकता कार्यक्रम रख्या जा रहा है। सवाई माधोपुर माए आयुर्वेद विभाग री ओरू 50 दिन रो काउंटडाउन योगा अभ्यास कार्यक्रम चलायो जा रहा है। वठे पहली वाला सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया दशहरा मैदान माए लोगों सागे योग रो अभ्यास कीनो और करो योग रहो निरोग रो संदेश दिनो। कोटपुतली बहरोड जिलारा पावटा और पाली जिलारा कोलीवाड़ा माई स्कूली विद्यार्थियां सारू योग शिविर लगाई चिया। टीबी मुक्त भारत बनावन रा 100 दिन रा अभियान माए सवाई माधोपुर जिला माए खास स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। आज बामनवास कने भावरा और खंडार कने बलवन खुर्द माए शिविर लगाई जा। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार गोयल बतायो कि शिविर माए चलती फिरती मशीनाओं छाती रा एक्सरे खून माए शुगर और ब्लड प्रेशर री जांच करी जी। वो अभियान जिला रा न्यारा न्यारा गांव माए

0: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਥੇ ਅਸਰ ਪੜਿਓ ਹੈ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਮਾਏ ਲੂਰਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਰੂ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੀਚੀ ਹੈ।
1: ज़िले में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के चलते लोग बेहाल हैं। गर्मी और लू की गंभीरता को देखते हुए तापघात और अन्य तापजनित बीमारियों के मरीजों के इलाज के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। जिला अस्पताल में 18 बेड आरक्षित रखने के अलावा 2 विशेष टीमों का गठन किया गया है। भामाशाहों के सहयोग से अस्पताल परिसर में प्याऊ और वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: बालोतरा जिला माए जसोल री लड़कियां री सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल माए आज मतदाता जागरूकता कार्यक्रम राखी चियो। इन तेज टाबरियां जागरूकता रैली निकाली। रैली माए नारा लगार वोट देवन रा महत्व री जानकारी दी री ची। ये मौके विद्यार्थियां ने वोट देवन री प्रक्रिया और लोकतांत्रिक अधिकार माथे आधारित नानी फिल्म बताई ची। शिक्षा मंत्रालय री ओरू एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल रा तेत छठो युवा संगम राख्यो चारियो है। इनरो मकसद न्यारा न्यारा राज्यां और केंद्र राज वाला प्रदेशां रा नौजवानां माए सांस्कृतिक एको बधावन सागे लोगां बीच संपर्क मजबूत बनावणु है। इन कार्यक्रम रा तहत देश भर उ चुनी जा युवा प्रतिभागी काम करण रा बेहतर तरीका रा न्यारा न्यारा पहलुआं री समझ हासिल करण सारू सहयोगी राज्यां और केंद्र राज वाला प्रदेशां रो दौरो कर रिया है। पाली रा दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी भरत पवार इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट T20 सीरीज सारू भारत री टीम माई चुनी चिया है। आहोर श्रीलंका माई 25 हूँ 28 मई ताई राखी चावेला। भरत पवार साल 2022 माई राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम रा कप्तानी रहा। आखिर माई खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राज्य सरकार किसाना ने नवी तकनीक और नवाचाराओं जोड़ वो तहकीनो। राजस्थान लोक सेवा आयोग री ओरू SI भर्ती परीक्षा 2021 पाछी ली जावेला। प्रदेश में ई साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत का लगाई जावेला। और राज्य रा तुनी हलका माए जबरदस्त गर्मी दूजा हलका माए कठे कठे बरसात रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो चावेला। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। सुबह शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं हमारे किसान भाई बहनों का कार्यक्रम खेती और गृहस्थी।

0: कार्यक्रम खेती और गृहस्थी सुनने वाला सगला किसान भाई बहनों ने लाडे श्रोता ने टाबरा ने बड़े बुजुर्ग ने सह ने भाई राजगुर कनिशो
1: और भाई किसने कनिशो मोकला मोकला
0: राम राम
1: राम राम राजमार भाई राम राम।
0: देखो तावड़ा बगड़ा इतना तकड़ा पड़ रहा है जेठ दो आ गया।
1: अच्छा अच्छा
0: जरा ये मान लो गए दो बिना तावड़ा पड़सी
1: पड़सी सा
0: अब के है के खेत में जावा काम करने के लिए तो भी टाइम के है के कई सावधानी रखा एक तो सिर पर तोलियो रखा एक सग सग जठा आप खेत का मायने कोई भी काम कर रहे हैं खाद घिनाने को कोई मतलब छड़ी वेला करने को कोई मिल्डर लगाने को कोई अड़सोट करने को तो भी जम के आपको एक कोरो मटको रख।
1: अच्छा
0: तो तिस ने मारनी नहीं है जद भी प्यास लगे जद पानी
1: पीलो।
0: अब एक सागे सागे जिया कई किसान भाई है जगह जिया गड्डो बाव है तो बन के करनो चाहिए एक दो लीटर वाली बोतल है बी को ऊपर बोरी सी लियो और बा आपकी बिरेडी रखे
1: ठंडो को ठंडो रहसी जठे ही तीस लागी आपका गुटका दो पी ले। और भाई ये गर्मी के मायने देखो जितनी रोटियां की जरूरत को नहीं बीती पानी की जरूरत रहे और देखो जका भी समझदार लोग है बा कह के भी दिन के मायने हर एक घंटे का

0: या मान लो कोई 15 लीटर 20 लीटर दूध देने लाग रहे है खड़को, तो बिको देखो शरीर को कितो कैल्शियम बारे निकल लाग रही है। तो जितो वो दूध दे भी की एवज के मायने बिको देखो खानो भी बिने देनो जरूरी है। कैल्शियम की पूर्ति भी के शरीर में ओटी हुए वो आपके शरीर से उतरे नहीं, कमजोर नहीं हुए, ई खातिर बिने पौष्टिक आहार देनो बहुत जरूरी है। आपने किसान बहने देखो के मिला के कई चीजा ने मिला के एक पौष्टिक आहार तैयार करना चाहिए, तो 20 सूबा के मायने कोई विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, आ चीजा की कमी नहीं आवे, और बांगो दूध है वो भी बड़बोक रहे और शरीर के मायने बांगे मजबूती रहे। नहीं कि ज्यादा दूध देने वालों पशु आप देखा एक दो साल लगातार आप भी को दूध काट बोकरा अगर बिना पूरा खाणो नहीं मिलो तो भी को शरीर भी कमजोर हो जा, और आने वालों जो ब्यावत है वो भी को देखो कमजोर साबित हो उसके। कई बरे जहाँ मान लो के पाटड़ियों है बाछड़ियों है समय से पहली गिर जा और पूरा वक्त नहीं ले, या मान लो के जे वो ब्यावे भी तो भी का जो बच्चों वो कमजोर पैदा हुए, ये सारी शरीर की कमजोरी की वजह से हुए। तो पशु ने आपा किए के खानो दानो अगर बढ़िया देशा तो बितो ही फायदो किसान मिन ने उसी।
1: तो देखो पशुधन को पूरा ध्यान रखना है और एक साथ साथ देखो के अब वक्त बदल रही, तो अब अपने क्षेत्र में भी सिंचाई का साधन हो गया, कुआ हो गया, ट्यूबवेल बड़ा हो गया, भी
0: हो गया बहुत हो गया,
1: तो कई बिजली चलने वाला है, कई सौर ऊर्जा चलने वाला है, तो कहने मतलब का आपा बारह मासी हरे चारो पैदा कर सका तो हरे चारे में क्या है कि बिन अच्छी तरीके से काट के और भी के बाद में आपा सूखे चारा मिला के भी दे सका और पशु में अलग से भी दे सका। तो हरे चारो में देखो क्या थे बार जी नाम लिया प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वसा मोकली हुए
0: सगली पूर्ति हुए
1: कैल्शियम, तो हरे चारो आपने देनो है और एक साथ साथ देखो अब उपली पड़ागी, उपली पड़ागी तो अपन खेत भी तैयार करना है,
0: बिल्कुल तैयार करना पड़ते हैं
1: भाई। अब जहाँ एक तो बात यहाँ का अपने रबी फसलाऊ खेत है जगह
0: खाली गया,
1: तो खाली हो गया तो बा खेता का मैन कोई तूड़ी कोई पल्लर है की है तो बिन एडे लगाओ घराल जाके संग्रहित करो बिन और भी जमीन का मैन के गए अब गर्मी की पहाड़
0: लगाओ।
1: अब पहाड़ कराने से क्या उसी का जमीन के अंदर जगह लट है बेमर्सी और बेमर्सी जिना चौमास वाली जगह फसल है बा सुरक्षित रह सी।
0: भाई अभी मौको है
1: तो अपन पहाड़ करानी चीज है। एक साथ साथ देखो कह किसान कह की है कह हर काम वो कर ली पण भी कह बजट वाली हमेशा ही रहे
0: बजट की पिसांगी तो देखो के टेंशन रही और ऊपरली पड़ आता है तो मैंने बहुत सारी चिंता होने लग जाएगा भाई आपने खेती बाड़ी भी करनी है खाद भी देनी है फिर ए बीज को जो को मौसम भी कमाए ना भाई मिनक ने देखो घर पेट भरने की भी समस्या रहे अरे के सागे सागे जहाँ नई नई स्कूल खुल जाए तो टाबरा के पढ़ने खातिर भी देखो किताब भी लानी है बाकी फीस भी भरानी है बहुत सारा खर्चा किसान के एक सागे बढ़ जाए
1: भी खर्चा बढ़ जान। एक बात और है कि बीज क्या कोई लो चाहिए अब बाजरी भी 25 रुपए किलो बिक है और वो प्रमाणित बीज मार को लगा के कैसी गई का तो 700 रुपए थैली का दे दियो। अब वो यहाँ सोचा गया इतो तो सिंचाई को खर्चो इतो खाद को खर्चो तो बीज का खर्चन क्यों तो बोले आसी लियासी जना की अगर रोकड़ा चाहिए तो बिक के लिए देखो कि सरकार आपकी सहायता करे जहा बहुत सी योजना है जहा एक आप बात करांगे केसीसी बने जमीन की तो बिल क्या है गए आपन कोई साहूकार का आगे जाके पक्को नहीं पकड़ना पड़े आपनी जमीन है बिक केसीसी बढ़ा लियो बहुत ही कम ब्याज दर पर बा केसीसी का रुपया आपने मिल जाए। अब क्या केसीसी कराइडियो सी तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बैंक आपन पूछ के बिन जोड़ दे
0: सही है
1: कभी आपनी फसल आप बवा तो फिर आपने की है कि कोई दिक्कत नहीं रहे काल ना कोई खराब हो गया। आजकल की है कि हर आदमी जोखिम उठलनो चाहे
0: भाई जोखिम देखो हर चीज में हो लगी और आपा के भी 5 रुपया लगा और भी जोखिम अगर नहीं टला

0: तो फिर अपना आने की गुंजाइश तो खत्म हो जाए, तो मिनक जल्दी से आपको कदम आगे उठावे को नहीं, तो बी की पहली स्विद्यापन करनी पड़ेगी।
1: और एक सागे सागे देखो बड़ी बड़ी जगह योजना है, बाकी अपन जानकारी होनी चाहिए है कि एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है कि आपना जगह कृषक है भाई, एक तरीका से ही मान लो कि किसान है जो अंधता है, अगर आपने घर सुनने ही थाली होती ने तो भाभी अनमीना तो खाली रहती,
0: खाली रहती,
1: किसी भी थाली ने बजा के थोड़ी पेट भर जाता
0: ना कौन भरे सा।
1: तो आपने सरकार के है कि 2007 हुई योजना शुरू करी, आ योजना एक ही हिसाब की है कि आपने जखी वार्षिक विकास दर है बिन बढ़ाने को इको मैंने बिंदु है
0: भाई, एक मायने जहा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है तो राजमर एक मायने किसान की लगभग सगली जकी योजनाएं भाई का मायने शामिल करी गई, अटो लेके जा मान लो थे बार बीज की बात करी, बीज की सुविधा भी का मायने है, फिर जे मान लो गए खाद की जे बात करी तो खाद की सुविधा भी सरकार की ओर से एक मायने शामिल है, फिर जहाँ मान लो गए आपने किसाना का यंत्री जगह खेती बाड़ी के मायने काम आने वाला, थ्रेसर से संबंधित है, ट्रैक्टर से संबंधित है, ऐ सगला जका साधन भाई देखो मोकला पीछा लागे। अब किसान जहाँ खेती बाड़ी करनी हो कहीं देखो आपको रोजगार को साधन करे तो आ चीजा देखो मैंने लेनी भी पड़े, तो सरकार आपकी योजना के थ्रू सुविधा दे रहा कि एक थे ई योजना ने काम में लेके और लोन लेके आ सामान थे खरीद सको। तो एक मायने जहाँ मान लो आपने केंद्र सरकार है राज्य सरकार है आपको दोनों की अलग अलग पैसा होता हो गया
1: भाई, एक मायने देखो केंद्र सरकार का 60% है, राज्य सरकार का 40% है।
0: अच्छा अच्छा,
1: पण आपने जगह पूर्वोत्तर राज्य है ने या हिमालयी राज्य है, बाग मायने केंद्र को योगदान 90% है, राज्य को योगदान 10% है। कहने का मतलब कि आपकी सरकार तो चाहे कि देश के कोने कोने का किसान है जगह ऊपर उठे भाई, आय में बढ़ोतरी हुए और आय में बढ़ोतरी तो जल्दी उसी के नवाचार अपना सा भाई। अब देखो पहले वाली सी बात तो अब रही गई
0: ना, ना पहले
1: पहली तो क्या होता होगा एक एक आदमी सौ सौ बीघा जमीन में आ करती और बिग माइन के अगर बाजरी बा देता ना 100 क्विंटल बाजरी हो जाती, अब भी बाजरी ओबरी में बढ़ लेता और फिर के अगर राबड़ी छाग सागे खा गए टाइम पास कर लेता
0: निमड़ती
1: को नहीं और पढ़ाई लिखाई गई तो पहली चरसों को नहीं हो। अब तो यहाँ मान लो कि पहली क्लास को बच्चों स्कूल जाओ ने जिद्दी भी बेग को वजन देखे तो 5 किला नेड़ो है, भांति भांति खेल की किताबा चाल की
0: भी समय के हिसाब से सो क्यों देखो बदलने लाग रहे।
1: तो अब जिद का खर्चा बढ़ गया ने वे खर्चा, अब देखो कह एक बात है कह एक बकौत है कह तो राम श्री वैर कह राज श्री वैर जड़ा तो नको जा
0: लागे अर नहीं तो घटो ही है।
1: तो अब क्या है कि आप जो थे कृषि यंत्र की बात करी तो पहली तो क्या होता है हर घर का मायने ऊंट होया करता और बा ऊंटा से क्या है जेठ के महीने जब बरसात होती जद क्या है हल जोड़ता फिर पूरा जेठ बा लेता फिर कहता गया अब झांझली दिए गए तो अब गुआर वाले आवड़ी में पाड़ कर दिया पाड़ करता उजू बस तो जना गुआर बा देता फिर कहता गया अब निनान लाग जाओ तो भी निनान का मैंने बांकड़ी रिश्रेड लीर बह जाती रह उठा ने
0: गाल पकड़ता काट पकड़ता।
1: अब जो जो वो वातावरण बदले ने जो जो आपने जगह पहली जगह घास होया करता वह तो अब खेता मुड़ो ही रह गया,
0: अब तो नए बांध का घास हो रहे हैं जगह आधा को तो आपने किसान भाई नाम ही कौन जाने। अच्छा आपको होने को कारण भी देखो क्या हो गयो के जिया आप जगह नए प्रकार का बीज काम में लेने लाग रहे हैं तो वे बीज आप छिड़कर बाक मायने जिया नाज के सागे कई बीज इसका घास का जाए और वे के गए आप भी खेत का मायने छिड़का फिर के गए निनान ढंग से आप करा को नहीं निनान नहीं करा तो वे के गए आप फसल लेवा फसल की आप लावणी करा बीज से पहली बांगा बीज जगह खेत का मैंने उजू खिंड जा तो अगली फसल ने उजू में नुकसान पहुंचा
1: भाई। देखो कह पहलिया कहता कह ऊंट भूको है तो तू तो यहां कर दो एक मती ले लिया

0: मैं ऊंट ताड़ी भारी होकर के लाऊं तो बांकड़ी या मान लो माथे जोर जोर
1: हाँ बहुत जोर की होती
0: तो बिन के करता गए या ध्यान रखता गए कांटो ने गिड़ जी अभी की जड़िया में हाथ गालता तो एक मुठियो करता ने बिन किया गया ऊंट दाब जाए तो पूरी बात रोटी से जाया करती और मतीरिया लाने जाता तो जो दो मतीरिया लिया तो ना जना सगला कर काम को ले सो
1: जाता
0: अब मतीरिया पे तो देखा ही नहीं
1: बार होन भी लाग रहे हैं तो बीज राजकुमार भाई तो खराब हो गयो के मतीरा को सो स्वाद ही कोनी रहयो बड्डो देखने में देख ले छो लेकिन बिन फोड़ की देख छो तो माई ने तो भी कोई स्वाद है और न कोई भी को रंग है तो चीजा वक्त के सागे सागे पूरी बदल गई। अच्छा ये बदलने के बाद ने केवल मान लो के भाई से कोई कमाई ना हाथ है आपनो भी हाथ है थोड़ा बहुत क्योंकि आप पहली जगह खेती है बा प्राकृतिक खेती जगह जैविक खेती लेता फिर धीरे धीरे आप लालच के मायन आया और रासायनिक खेती करने लगे आप। अब पिछले 15-20 साल के मायने तो भयंकर रासायनिक खेती करी उत्पादन देखो घणो ही लियो लेकिन अपनी धीरे धीरे जगह जमीन है बा भी खराब हुई है बीघे सागे सागे हर एक चीज को जो बीज है बी के ऊपर भी असर पड़े है तो अपनी जगह जमीन है बा भी देखो आ कह लाग रहा है ए जगह रसायन से बा उसर होगी सगली बैंक में पैदावार बहुत कम होगी
0: पैदावार कम होगी एक सागे सागे देखो अनाज के मायने जगह गुणवत्ता है बा कम होगी। पहली देखो क्या बाजरे की रोटी होती तो बात चौकी तरह से केड़ी होती कता का भी खेत आज लगाउन कौन करियो क्या कोई बात कौन दो प्याजिया भेज दो और बाजरे की दो रोटी भेज दो तो बस सकेड़ी सेकेड़ी रोटी होती भी सोंधी सोंधी महक आया करती और प्याजिया भी बो के बिना पोटास देड़ो प्याजी होता तो बिकी भी महक आया करती
1: स्वाद लाग तो
0: और गिवा की रोटी तो यहाँ मान लो क्या आपने कोई बटऊ आतुन करा जड़ा बनती तो वह फलका का मायने आती सुरम इतना लागता पे या स्वाद
1: बिना लगाव नहीं खा जाता
0: फलका फूलता ना जना या बान देखता ना जिसोरो तो
1: जिसोरो तो
0: आपने घरा का मायने खिचड़ी राबड़ी ए बनती खिचड़ो बनतो जना या पटाखा सा बोल बोकरता ढक उछड़ उछड़ के पटन मार जाता क्योंकि भी अनाज के मायने
1: ताकत होती
0: बा मोटा ही दाल है भी कमाने ताकत होया करती कुटड़ो बाजरो उंखड़ी कुटड़ो बाजरो भी कमाने ताकत होया करती और फिर मोकड़ा पशु दंद रखता तो खिचड़ी के ऊपर करके खाडो और घी गाल देता अब टब्बर राग स्थिति आ है के दूध गवान मलाई अजय तन कद मित कौन पिया
1: बे तो मलाई छाटती सी ना के और इया वेरो को नहीं कि भाई दूध मलाई बिना दूध है ही चीज तो क्रीम ही हो है लेकिन बा देखो के एक तो अपने किसान बहन की भी थोड़ी कमी रही कि भाई टाबरा ने इस चीज की समझ दी को शुरुआत के मायने बहुत सारा टाबर ईशा हुए के वे छोटा वे वे दूध कौन पीवे तो वे दूध कौन पीवे जो आप गए और तो टाबर दूध पीवे ही कौन डॉक्टर कन कही जाएंगे डॉक्टर साहब वो तो दूध पीवे ही कौन तो बिन दूध पिए कौन तो शुरुआत के मायने बिन एक दो बार जबरदस्ती भी करनी पड़े बिन प्याने के लिए आपन मेहनत करनी पड़े फिर धीरे धीरे बिन आदत पड़ जा लेकिन आपा भी वो पीवे ही कौन तो पी मुख ही कौन लगावा के अब हाथ ही कौन लगा आपा मेहनत ही कौन करा बिक सके तो आदत भी बाहर पड़ जा तो एक लिए आपा भी देखो भुगत भोगी हाँ थोड़ा
0: आपा हार कई देखो आपने किसान बनना है भाई यहाँ कह कह थोड़ी चाह पत्ती गेर दिया ना जना तो पी ले
1: जना पी ले
0: अब वो चाह पत्ती गेर दी जना तो बाद दूध रहे
1: नहीं उन दूध तो फिर तो वो प्याओ चाहे मत प्याओ भाई चाय जिकी है बिक के लिए आप मान लो के 15-20 साल तक वो जब तक टाबर होने बिना चाय पानी नहीं चाहिए भाई बड़ो हो जाए बी के बाद में तो देखो अभी को तो शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा मजबूती आने लग जाए वो सहन कर दिया लेकिन टाबर हो अभी को तो देखो अंदर को जो शरीर एकदम से काचो हुए अब बी का मायने जाए मान लिया कि जगह चाय भी एक प्रकार को नशो ही है कि नशीली चीज जासी तो भी कई प्रकार को नुकसान भी कर सके और धीरे धीरे फिर वो भी चीज को आदि होने लग जा तो 20 साल तक टाबर ने देखो आ चीजा से दूर रखनी चाहिए दूध पियाओ दही खिलाओ और जगह बढ़िया बढ़िया चीजें बे खिलाओ लेकिन ये की चीज है जगह बिगी शरीर के लिए नुकसानदेह हुए वहां से बिन दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए
0: और एक साग साग देखो एजका आजकल कुरकुरा क्रांति आई है तो इससे भी किएगा बच्चा ने बचाना जरूरी आजकल कोई भी दुकान पर जाके देख लियो बही बटंगी डाल दे और बे टाबर खान तो बाकी नुकसान फेर के है गया, अपनी मृदा मिले, अपनी खाद में मिले तो वो मैनी उगले।

0: ने वो थे 5 साल बाद में खोद काट ले विशील आदि।
1: भाई देखो पैकिंग प्रोडक्ट्स कोई भी है बांस है बचनो चाहे झट तक उसके, लेकिन अब देखो के धीरे धीरे ये चीजा चारू का दिखे लागी कोशिश करे लेकिन फिर भी बच को नहीं पावे। लेकिन आपा आ कह गार्जना ने कि भाई कम से कम बी के प्रति बच्चे ने लगाव रखें, कम से कम भी ने इस चीज़ को ज्ञान बीच बीच में देता रहें कि भाई आ चीज़ के नुकसान करे और इस चीज़ की बजाय आ चीज़ खाँ तो अपने शरीर का मैंने के फायदो है ऐज की चीज़ें। मैं देखो परिवार में एक साथ टाबर बैठे हों जिदे अपन बता तो रहना चाहिए तो बात नहीं तो देखो कि मोकली कर ली आपा करता ही रहें, लेकिन आप तो मन करे कोई शांति सी लोक रचना सुना दो।
0: हाँ तो सुनो अठावड़ी सी लोक रचना।

0: राजस्थान पब्लिक स्कूल दिसाओ।
1: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट।
0: कृषि विज्ञान कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध।
1: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति।
0: अनुभवी साफ सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम।
1: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में।
0: राजस्थान पब्लिक स्कूल दिसाओ 9413360।
2: तो अभी आप संदेश सुनो और संदेश से पहले पप्पू मस्ताना और साथियों गायडो ठावड़ो सो लोक भजन सुनो। और अब देखो के आपा जे बात नहीं कर रहा भी बात नहीं आगे बढ़ाओ
3: भाई। देखो राजकुमार भाई, एक बात तो आ है के जिया पहली देखो जोर की सर्दी पड़ा करती और फिर जोर की पड़ा करती गर्मी। आपने याद है के मई जून और मई जून के अप्रैल भी देसा के ले लो, अप्रैल मई जून ए तीन महीना इतनी कड़ाके की गर्मी का होया करता के आ मान लो के टाबर जगा कई बार भणे पगा बारे निकल जाता तो आग लो जुगो ठा में बोलने मुश्किल हो जातो और पग हो जाता लाल फला हो जाता। बा स्थिति बा गर्मी की स्थिति

0: भी टाइम देखो कह भाई साधन भी तो हा को नहीं, अब बार तो देखो हजार साधन ही, पण भी मौसम ने आज के मौसम ने जे आपा मिलावा मिलान करा तो थे देखो गयो के गेरडी बार सर्दी कितनी की सर्दी थी, मुश्किल से 15-20 दिन की सर्दी हुई होगी जकी जोर की सर्दी जकी ना आपा माना
1: भाई। देखो के सर्दी की टाइम सर्दी पड़नी जरूरी है, गर्मी की टाइम गर्मी पड़नी जरूरी है, और वर्षा की टाइम वर्षा होनी बहुत जरूरी है। अब बात यह रही के आजकल वो जो अचानक मौसम बदला है ने, वो आपने स्वास्थ्य के लिए घातक हो सके। अब लेले दिना का मायने आप जी टाइम लावनी सिकरा भी टाइम गर्मी पड़ती, एक दिन ठंड हो शुरू अगर लोग कोट काट दिया स्वेटर पछी काट दी का आज तो सर्दी उड़ रही होनी अब के है के कोई 10 दिन गेड़ो है कोई गांव उतर गेड़ो है वो कपड़ा को पूरा प्रबंध करके जागो नहीं तो बस सर्दी के चपेट में आ गयो ने। अब इस हिसाब से जिया की है गर्मी है तो गर्मी का कोई दिन तो टुकड़ो तो तावड़ो निकलेगा या 12 ही निकलो जा बिग 2 दिन बाद मौसम और किसी बदल गया। अब इसके वेगा ओ जो बिचकी थे ना मौसम ने मक्खी मच्छर है तो ज्यादा पनप है पहले आपने यहाँ कहता के मक्खी के मक्खी तो गोरा का ढोकलिया खार उड़ जी कहो मतलब इतनी तकड़ी गोरा बाद में गर्मी पड़ती के मक्खी मच्छर रहता ही कौन और रोटी खा गए और बारे खुला आसमान के नीचे माचा काट काट के सोता तो न मक्खी खाती न मच्छर खाता
0: भाई। वो देखो जमानो अलग हो, अब जबको जलवायु को मायने परिवर्तन हो रही है तो इस जलवायु परिवर्तन के सागे सागे आपने जी की खेती बाड़ी है बेको प्रिको देखो बहुत विपरीत असर पड़ने लग रहे है। जहाँ मान लो अचानक तापमान को बढ़ जानो, फिर कई बार देखो के अनियमित बिरख्या होनी, कह तो बिरख्या लंबो दे दे और कह जद बिरख्या की जरूरत नहीं हो भी टाइम बिरख्या हो जाए। जहाँ गेड़े दिन आप देखा कि भाई आपने रबी की फसल की लावणी की लोग तैयारी करने लाग रहा और कभी अब तो आपने भी काट कूट करके भेड़ो करनो है भी बखत बिरख्या आ गई तो बा बिरख्या फायदो तो करेगा नहीं बल्कि नुकसान कर दे। और एक सागे सागे कई बार क्या जहाँ सूखो लंबे वक्त तक बिरख्या नहीं होने सूखो पड़ जा और कई बार इतनी ज़्यादा बारिश आ जा कि बाढ़ आने लग जा तो एज की अनियमित चीजें ही एज जलवायु में परिवर्तन की वजह से हो रही और जलवायु में जहाँ जहाँ परिवर्तन हो रहे वो आपने खेती बाड़ी के मायने बहुत ज्यादा नुकसान होने लग
1: रहा है। खेती बाड़ी नुकसान होने लग रही है। अब गलत देखो खरीफ फसल आई ना अपने पीछे तो लोग कहो कि अब गलत तो बहुत तकड़ी लगी है मूंगा का तो फली बहुत जोर की लगी है तो बेमौसम में बरसात होनी वो भी एक जलवायु परिवर्तन का संकेत है। इसके वह कभी किसान है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो एक तो क्या है कि आपा की कर लिए बावा आप ज्यादा उत्पादन लेने के लिए ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ज्यादा अपने अनाज हुआ है ज्यादा चारो है भी के लिए बावा वो अपन की है मिले नहीं। अब अनाज बावा तो अनाज की आई चेष्टा रखेंगे अपने ज्यादा में ज्यादा अनाज हुआ है और ज्यादा में ज्यादा अनाज हो सीजन के खर्चा बा उड़ी और ज्यादा में ज्यादा चारो हुआ है। अब वो की है कि जो जलवायु परिवर्तन है वो इसी चपेट में ले है कि नए तो भी अनाज में सही छोटे अब मोटे का मुंगा का खड़ा कटाया तो थ्रेसर में दाल दलीजगी आते हो
0: बिछिल हो गए वो और फिर कई बार क्या गया जहाँ बे टाइम की बीर क्या होने से भाई दाना खराब हो जा तो मोल चोर हो जा आप 5 रुपया मान लियो जिक्का लेना चाहो अपन मिले को नहीं तो उत्पादन के मायने बहुत ज्यादा असर होने लग रही को कारण भाई कहे जहाँ तापमान में अचानक वृद्धि हो जानी बिरख्या की अनिश्चितता कदे जब चाहे जब बरसी को नहीं जब नहीं चाहे जब बरस की तो एक मायने आपने किसान के सौ ज्यादा नुकसान हो रहे कि उत्पादन है वो औसत जी तो होना चाहिए भी तो हो रो को नहीं। और एक बात और है कि जी मान लो कि बाहर थे बताने लग रहा कि भाई मार्च के मायने लगभग के गर्मी पड़ने लग जाती तो माखी मच्छर लगभग खत्म होने लग जाता और अबार

0: राह देख लो थे, स्थिति आया कह जिया मई को महीनो है, लेकिन माखीर मच्छर अबार भी बही स्थिति है। तो ऐ जगह कीट ही अरे बीमारियां ही ऐ बदलती जलवायु के मायने आपन बहुत ज्यादा नुकसान करने लाग रहे हैं। तो अब की अगर ज्या मान लो के मौसम की जलवायु ज्या परिवर्तन हो बी के सागे सागे आपन देखो सावधान होना पड़ेगा भाई, वो तो परिवर्तन होने लाग रहे वो आपने बस को तो है को नहीं। तो आपन भी जको भी काम करना एक हिसाब से करना पड़ेगा। आप जिकी भी मान लो बिजाई करा कोई बुआई करा कौन सु आपन फसल लेनी है और कितने तापमान वाली फसल आपन लेनी है। जै मान लो कि गर्मी ज़्यादा पड़न लागी, अब गर्मी ज़्यादा पड़न लागी तो आप भाई पैदावार ज़्यादा लें जिकी भी गर्मी सहन करें, या मान लो अचानक ठंड जी बढ़न लागी तो आप बा पैदावार लें जिकी ठंड ने सहन कर सके। तो आपन ने क्या करना पड़ेगा के फसल चक्र जो है वो आपने बार बार के मायने लेना पड़ेगा, बदलाव भी मायने करना पड़ेगा। और आप जगह भी कृषि विशेषज्ञों बाहू जानकारी ले कि भाई अबार औसत तापमान इतो रहने लाग रही है। तो एक हिसाब से आपने सबसे ज्यादा कौन सी फसल है जिसकी बोनी चाहिए जिकी आपन घणो उत्पादन दे सके। आपना जगह किसान भाई के रह गए आजकल भाव दे की फसल ले लागे कि भाई जहाँ मूंगा को भाव ज़्यादा है तो आपने अपने खेत के मायने ज़्यादा से ज़्यादा मूंग है इसका बाना चाहिए। अब जब मान लो कि मूंग को भाव तो ज़्यादा है लेकिन आपनी जो की धरती है मौसम है जलवायु अब्बा जे मूंग ने मानरी को नहीं तो फिर आप जे वो भी देशा तो आपने उत्पादन कटूँ देश
1: भाई। बहुत मुद्दे की बात थे कही है कि सिंचाई का जो साधन बढ़िया है तो लोग बोलिया कि मूंगफली में बहुत फायदा है।
0: हाँ
1: मूंगफली भाव अब स्थिति आ है कि मूंगफली एक साल तो मान जा फिर आपनी जमीन ने पानी मानने को नहीं जना अभी का गोटो है अभी मन पर कैंसर वाली मूंगफली निकले और बाजार भाव भी मंदार उत्पादन भी कम हो गयो। अब भी किस जगह देखो कि आपनी जमीन ने जिया कृषि विशेषज्ञ बतावा ने कहते बढ़िया प्रमाणित बाजरो भाव तो बाजरो अगर बढ़िया उत्पादन दो तो बाजरो भी बढ़ो चीज है, अगर मूंग बढ़िया उत्पादन दो तो मूंग भी बढ़ना चाहिए, एक सागर जगह तिलन ही फसल आई वह भी बढ़नी चाहिए। अब एक मायने एक बात तो आ के अब जे कीट की रंग की बात करी ने तो इनके है कि आप फसल चक्र अपना सने जना बा कर्म ने तोड़ सका कर्म ने तोड़ सका कभी आप बाजरो बायो भी माओ तीस साल बाजरो नहीं बाओ भी कमाई अच्छी तरह पाड़ करके गुआर बावा या मूंग बावा तो भी सके अगर बाजरे में जगह रूखड़ी पड़ने की संभावना है बाकम रहे और आप ले साल अगर गुआर बाए या मूंग बाया या रबी फसल में चना बाया तो भी कमाई की अगर बाजरो बाओ बाजरो तकड़ो सी तो फसल चक्र अपनाने से भी की है आप बीमारिया से आ किटा से कुछ हद तक नहीं जाते इसका।
0: और फिर के जिया मान लो के आपा इगो समाधान अगर करना चाहें तो झट तक हो सके देखो मिश्रित खेती है बा भी देखो फायदो करे एक ही फसल ने आपा नहीं बाकी जिया मान लो के आपा चाहो भाई के आपा बदला भी को नहीं तो भाई दो तीन नाच जहाँ मिला के फिर भी नबास कहाँ बीच भी वो फायदो हुआ कि भाई कई बार अपनी जगह जमीन है आपन पहले वो जहाँ क्या करें कि भाई किसान है जो वो वक्त निकल जाएंगे बाद में शानो है वो खेती देख है कि भाई वो नाज आप उगाता तो आपने चुख हो तो और वो आपने हो को नहीं तो यहाँ की स्थिति के मायने दो तीन नाज मिला के आप बाजा तो जको मान लो आपने जमीन जे माने वो दाणो आपने ढंग से उग्या सी भी गो आपने उत्पादन ठीक मिल जैसी और जो नहीं माने वो रह जैसी तो एक आपने के मिश्रित खेती है बी को भी उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और पारंपरिक जगह तरीका है जैविक खेती का जगह पारंपरिक तरीका ही बन आपन वापिस देखो अपनाना पड़ेगा। रासायनिक खेती से आपने ध्यान भटकानो पड़ेगा और जकी पारंपरिक खेती आप पहली क्रिया करता जैविक जी खाद उपयोग में लिया करता बी खाद ने वापिस उपयोग में आपन लेनी पड़ेगी।
1: भाई थे बहुत सही बात बताई है कि आज किसान है जो को जो दबाई तो करे नहीं डीएपी खाते तो पूछ तो फिर अर ग्राम 50 कटा खात है बा खेत में उनके रे तो थे हम बताओ का देसी गोबर की सडेड़ी खात है बा जिसो काम कर सी जिसो की कुन करे
0: करेगी कोनी
1: बा एक कौत है का कर्म की चली जा खाद की कौन जा
0: कौन जा
1: खाद गेरी हो सी ने बीजा बाजरे को बूंटो लग

0: गेंसर
1: सी।
0: तो अपन क्या है कि एक तो क्या है खाद है बा गेरनी बहुत जरूरी है। अब खाद गेरने वाले में भी एक बात कहनी चाहवा कि आज किसान है जिसको मेहनत तो बहुत कम करनी चाहे। कि पहले तो क्या होता कि गड्ढा का मायने खाद भरता और फिर क्या गया तीन चार ढीली करके जंटी गए ऊंट ने बांध देता और कसी कन हुई थी तो भी खाद ने खिंडा के ही घर आता। अब इतो सोरो तो काम चले का ट्रैक्टर की ट्रॉली भरने वाली मशीन तो अलग है ब्यू भरीजे बिन रीतान आरो तरीको है कि सीधे बटन ही दबाना पड़े बा उल्ल के मते ही रीति जा। अब बिन की है कि संभाले को नहीं क्यों संभाले तो मेहनत करनी पड़े और मैं जाग देना कहें कि अब के करा क्यों बा खाद के नीचे जमीन है जगह तो बिया कौन बीजी
1: बस बीजे ही नहीं बा।
0: एर फेर के ताकड़ के मायने बा खाद भी कौन खिंडाई जाए। तो कहना मतलब वो है कि जितो भी काम करो बिन तरीके से करो बिन सुंदर तरीके से करो और आपका जुगा जैविक खेती का जुगा तरीका है वह पक्ष अपनाओ भी सकेगा अपने अनाज में भी गुणवत्ता रहसी और आप अनाज खसिया पे भी निरोगा रहसी।
1: और एक देखो सागे सागे जका सिंचित क्षेत्र है जगह मान लो सिंचाई प्रबंधन कर रखे है बार नहीं भी आप कहनी चाहूंगा कि जबकि आपनी फुहारा पद्धति है भी पद्धति ने आप धीरे धीरे कम करा और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है बा देखो कि अबार के वक्त की मांग है क्योंकि जमीन के मायने पानी को स्तर धीरे धीरे कम होने लाग रहे है। आने वालों जो वक्त है भी कमाए देखो जमीन के मायने पताल तोड़ पानी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपन अब भी समझना पड़ेगा और जके सिंचित क्षेत्र में सिंचाई जटा आपा कर रहे हैं बूंद बूंद सिंचाई योजना है इन आपा ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लिया और एक लिए देखो सरकार है भी देखो बहुत प्रोत्साहित कर रही है एक लिए योजना के लिए आपा ने भाई आपकी ओर से जो लोन की व्यवस्था वह भी बहुत कर रखी है। तो आपा ने जो ट्रेक पहले से चाल ली है बिन थोड़ी बदलनी पड़ेगी और नए जमाने के सागे आपा चालना पड़ेगा जब भी देखो कि आपा मोकलो फायदा उठा सका। तो बात भी देखो आप और भी करांगा पने अबार मन करे कोई शांति सी लोक रचना सुन लें।
0: तो सुनो मांगीलाल पुजारी और साथी अंगाइडो उठावड़ो सो लोग गुजर।

0: किसको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
2: तो अभी आप देखो संदेश सुन रहे, संदेश से पहले शांति जी लोक रचना भी सुनी, और राजकुमार भाई एक छोटी सी चर्चा अपन और भी करनी है के जी आप बक्सर करता ही रहा के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ई योजना से देखो घनकरा के अपना किसान भाई जुट रहे भी है, पर जका किसान भाई ऐसे वंचित है बाना आप कहनी चाहूंगा के किसान निधि की जी योजना के पोर्टल पर जाके और भाई की खुद भी अप्लाई कर सके, या मान लो मित्र पर जाके और आपका जगह कागजी पे सगला ले जाकर ई योजना से जुड़ सके। और ई योजना की जी आप बात करें तो देखो के लगभग आ मान के चला गया 12 जुलाई का महीना अगर किस्त आएगी तो वह 23वीं किस्त होगी, काफ़ी देखो लंबो वक्त हो गयो। और साल के महीने 3 बार हर 4 महीना के अंतराल के महीने 2000 की किस्त मिले, यानी किसान ने लगभग 6000 को फायदो सरकार आपकी ओर से दे रही है।
3: भाई देखो के अड़ी वक्त के माइन की है के 500 रुपया काम आ जाए, और एक माइन की है कोई को पिसो हाथ को नहीं सरकार को पिसो है, तो आपनो अगर आवेदन नहीं करेड़ो तो आपने आवेदन है जो करना चाहिए।
2: अरे देखो के योजना कोई भी हो, सरकार आपने हित के लिए योजना चलावे, अगर मान लो के वह योजना को फायदो आप खुद नहीं उठा रहे का मतलब देखो कि आप सावधान को नहीं, आप गलती कर रहे हैं। तो और एज का रिपेयर भी देखो यहाँ के वक्त के ऊपर मिले कि किसान ज्या आपकी खेती बाड़ी करे तो अभी शुरुआत के मैंने बिजाई को वक्त हो बी टाइम, फिर भी के बाद के मैंने निनाण को वक्त आवे बी टाइम, और फिर भी के बाद के मैं ज्या लावणी को वक्त आवे बी टाइम। देखो के हिसाब से पिसा जिसकी सरकार है बात देवे के बी टाइम आपन पिसा की सख्त जरूरत है,
3: मौका पर मिले।
2: तो किसान ने तो देखो भी जरूरत रही बोकर पिसा, क्योंकि भाई जब खेती बाड़ी करे तो कमाई देखो लगभग बंद हो जाए जब तक भी लावणी नहीं हुए। तो ई योजना को बहुत सारा किसान फायदा उठा रहे हैं, और जका नहीं जुड़ रहे हैं बने ई योजना से जुड़ना चाहिए।
3: और अब देखो के टाइम पड़े तो एक लोकसना और सुन लिया,
2: तो सुनाया
3: रागिनी और साथी गाइडिया सुनो ठावड़ी सी लोक रचना।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: तो आप संदेश सुने और संदेश से पहले रागिनी और साथियों की आवाज के मायने सुनी लोक रचना। इरे साथी आज को खेती और गृहस्थी कार्यक्रम अठाई तक ओजू मिनट ने किसने भाई ने
2: राजकुमार भाई ने सीख गिराव करा
1: राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

श्रोताओं, फिल्म संगीत की पहली प्रस्तुति आप सुनेंगे। हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म से। इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और साथियों ने।

श्रवण फिल्म संगीत की पहली प्रस्तुति अभी आपने सुनी अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। आइए बढ़ते हैं फिल्म संगीत में अगली प्रस्तुति की ओर। अगली प्रस्तुति आप सुनेंगे हम दिल दे चुके फिल्म से, ये गीत आप सुनेंगे कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू और साथियों की आवाज़ों में।

श्रोतम फिल्म संगीत की ये प्रस्तुति अभी आपने सुनी हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से। आइए बढ़ते हैं फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति की ओर। दिल फिल्म का ये नगमा अब आप सुनेंगे उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की युगल आवाजों में।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: श्रवण फिल्म संगीत की ये प्रस्तुति आप सुनेंगे यारा दिलदारा फिल्म से। गीत को गाया है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: श्रवण फिल्म संगीत की ये प्रस्तुति अब आप सुनेंगे यलगार फिल्म से। गीत को गाया है उदित नारायण और सपना मुखर्जी ने।
2: ऐ मेरी हमराज, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
3: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: शोधम फिल्म संगीत की प्रस्तुति आप सुनेंगे सरफरोश फिल्म से जगजीत सिंह की आवाज में।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से। सरफरोश फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज़ में। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत में एक और प्रस्तुति। श्रोताओं, ये गीत अब आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की युगल आवाज़ों में।

श्रवण फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से। श्रवण कार्यक्रम का ये गीत अभी आप सुन रहे हैं दिल है कि मानता नहीं फिल्म से। इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने। गीत के शब्द लिखे हैं फैज अनवर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

और इस गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या, और रात्रि 9 बजे समय रहेगा News@9 का। श्रोताओं, इन समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद।

0: थे। वहाँ राज्यपाल आर एन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहाँ तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन

0: पूर्व की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
2: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
3: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा।

0: इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर

चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दिन छिपता ही रोज की आंधी दे फटकार, दिन छिपता ही रोज की आंधी दे फटकार, और रेत बुरक दे थाली में किरकर कर दे यार।
1: कार्यक्रम बताई सुनना रहे सगले भाई बहना ने टावरा ने बड़े बुजुर्ग ने भाई अयूब खान गोड़
0: और पंकज भाई का न्यू
1: मोकला राम राम राम। देखो पंकज भाई थे बखत सारू जी की बात कही है, कभी आंधी आसी तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई रोटिया में भी पड़सी, सिर में भी पड़सी, आंखिया में भी पड़सी। अब देखो बखत है, बखत पर ओणो भी चाहिए
0: भाई, आपनो कार्यक्रम भी वही है बखत बखत की बात। और बखत बखत की बात जकी है वे आपा ई कमाई नहीं करा, आपने हेतालवान कहानी सुनावा, आपने हेतालवान सांखी सुनावा, आपने हेतालवान ने कोई किस्सो सुनावा, मुहावरो सोल्ठ है बयान कोई सुनावा, एक सागे सागे सामिक चर्चा भी करा, क्योंकि कार्यक्रम जको है वो की है आपनो बाता ही चाल है।
1: बिल्कुल।
0: अब जो बखत की आप बात करा तो ओ जको बखत है और आज की संख्या आ एकदम सटीक भी बैठे। अयूब भाई देखो गैरडा जगह तीन चार दिन गए हैं, बागवान छिपते दिन मेरी आंधी भी जोर की आई है, और आंधी आवे के जो धूल को जो गुबार
1: है
0: वो थे कई जगह बात है, वो फिर क्या में कोता ही कौन बरते, नए कम ज्यादा करे वो सही में बराबर
1: बराबर ले है। बिल्कुल। अब देखो बखत की बात जो चल रही है पंकज भाई, तो देखो जेठा बेटा बाजरी,
0: अच्छा
1: जेठा बेटा
0: बाजरी
1: बड़ भागी रे होए,
0: वासावा
1: बुरो संग जड़ रूखड़ी घर खेत ने खाए।
0: भाई बात सही है, देखो जेठ की जगी बाजरी है, जे मान लो सावल सी बरखा लाग जा और जेठ की जगी बाजरी है बा पेस चढ़ जा, तो देसी जगी बाजरी है ने बा फिर कितनी को जाई बात को अंदाज को नहीं, उना कुना सह भर दे। और जे थे देखो अब बात आ करी है अपन ओ भी वेरो का मौसम के मायने तावड़ियो जोर को पड़े, धूप जकी है बा जोर की, जेठ के महीने की चर्चा थे करी दी तो दो लाइन देखो मेरे भी याद आ गई, के तपे धरा अरु नब तपे, तपे धरा अरु नब तपे, बड़े जेठ की धूप और ताती ताती लू चाले विकराल मरु को रूप। अब न अब यहां लागे जे आप सड़क पर चला जे को लागे तो मैंने उजड़ निकल दिए भैया, जे अपन ने ई टाइम ताती माटी में चालनो पड़ जा, और जे मान लो सावल सी जाब तो नहीं होवे, पुराने टाइम की थाने याद आती होगी जब उगाना पगा चलिया करता या जूती जकी होती बांग मायने, क्यों सड़क तो होती कोनी पैदल चालता जो
1: का धूड़
0: बाड़ू जकी माटी है बाड़ू जूते के जूतिया मांगल जाती ताती होड़ी रहे दो पैर गवा जोर की, तो बा फिर के संचार सगड़ा ले लिया यू भाई।
1: बिल्कुल। और देखो पंकज भाई ताती धूल की जब बात चाल गई तो आपा जो टाबर हा तो दोहरा में जब यूं चल जाता है कभी सांग

0: देखो ओ जको मौसम है ना कुनसो उन्यालो ई उन्यालो को मेवो वे यु भाई सांगरी
1: बिल्कुल तो बा सांगरी तोड़ की लाता तो पग और सिर और हाथ में जिकी छड़िया रुपेड़ी बे देखो आपा ने है जिकी कई दिन तक सेद थी
0: सेद थी सा
1: कई दिन तक इया सेद थी कब देखो जद सांगरी जे तोड़ना आपा खेजड़ी पे चढ़ना तो बा आता ने भी बतला ले और सिर ने भी है जिको बतला ले
0: जय माल्यो जंटियो है कोई और जे छंगोरो नहीं करेड़ो है या कोई बड़ी जंटी और बा कंट्याली है तो बा फिर बक्से थोड़ी है अपा मतलब सांगरी को एक हैवी सिस्टम सांगरी जकी है ना कच्ची सांगरी जकी हो सिन बा ऊंची जकी टूरो सिन है बिपर लागे अब भी तक पुंच बे चाहे बा कंट्याली जंटी है चाहे जामफड़ो बंग मक्की अपन निकलनो पड़सी
1: बिल्कुल
0: निकलनो पड़सी जब बा देखो फिर चाहे कड़तो हो चाहे भूखिया हो चाहे छाती हो चाहे को रगड़ तो कटाई लागे
1: जदि देखो क्या करे है ना के बोले कच्ची कच्ची कामणी सुवा सो रंग सुवा को सो
0: अरे ओ सुवे पर को
1: रंग 11 देवर रीज लिया पण रही जेठ के संग
0: भाई आते संख्या कही है पाली बुजिया मेरे भी समझ में को नहीं आई है बात
1: देखो पंकज भाई
0: बोली तो के संख्या लग गया पाली सी है
1: अब पाली भी है और असंख्या भी है अब इनको बताओ थे
0: भाई देखो के संख्या जो तो सुनने में लगी है सुनने में जोर की लगी है और जे पाली है जदस देखो पाली तो बड़ी गहरी गुड होवे तो वो तो बताने वालों जिसी जान सके विशेष सुनने वालों थोड़ी जान सके
1: देखो पंकज भाई एक मायने देखो अपने जैसे सांगरी की बात चल रही है तो काची काची जे सांगरी हूँ जंटी पे लाग टंगेड़ी दिखे ने तो देखो थारो भी मन है वो करे के तोड़ लिया और राह चालते मानस भी आ सोचे के यार सांगरी बहुत जोर की
0: कोई टाबर पड़े में खोखा तो खाई ताबर
1: हाँ।
0: सांगरी मान लियो काची नहीं रहती फिर भाई खोखा बन जाती है खोखो जो को है वो खाने में बड़ो जी कर तो अब देखो ये भाई जब थे पाड़िया की बात छेड़ी दी तो फिर एक आधी पाड़ी तो मैं भी बुझ सुन सीधा तो कह जान दे
1: बोलो सा
0: भाई देखो मन्ने थाली नहीं संख्या तो आऊंगा पाली मारकन तो सीधी सीधी के इसी कौन सी चीज है जकीने जितनी ज्यादा काम में लिया बीती तेज हो
1: जितनी ज्यादा
0: काम में लिया
1: जुबान
0: नहीं नहीं दिमाग हो
1: दिमाग
0: चलो और बुझो दूसरी भाई इसी कौन सी चीज है जकीने पकड़ सका पर फेंक कौन सका
1: अब देखो पंकज भाई थे तो उलझावा लग गया माने कार्यक्रम के बीच के मायने
0: भाई देखो क्या मौसम है
1: मैं पकड़ कौन से कहां पा
0: पानी पानी अब अपन 30 लागे और जे ठंडो पानी पी जाए पानी लड़ जाने लड़ जाए लड़ता है जुकाम लागे तो जुकाम ने पकड़ी जा सके जुकाम ने
1: रोकी कौन जा सके
0: चलो अब कल बता दो अगली तो बताई दे इसी कौन सी चीज है जबकि जितनी ज्यादा हो ने बीती कम देख सका पा
1: जितनी ज्यादा है बीती
0: कम देख सका पा
1: अब थे फेर उड़ जा जियो मन
0: भाई बहुत सीधो से अंधेरो
1: अंधेरो
0: अंधेरो जितो ज्यादा गहरा होगा अपन देख नहीं क्षमता बीती कम होगी
1: कम हो जाएगी
0: तो बहुत सीधो से और भाई यहां मान लियो के ओ ने ओ थे बता सको इसी के चीज है जगह पूरी दुनिया घूमे आवे पर आपकी जगह वो नहीं आले
1: पूरी दुनिया घूमे और आपकी जगह वो नहीं आले
0: तो नहीं आले
1: इसी तो कोई चीज है ही नहीं
0: है यू भाई
1: तो बताओ
0: डाक टिकट
1: डाक टिकट
0: वो टिकट जकी है बस जटे चिपेड़ी है बड़े चिपेड़ी रहेगी घुमाएगी पूरी दुनिया में
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो देखो ये हमने थोड़ी बड़ी मस्करी में भी कर सका
1: बिल्कुल देखो पंकज भाई अब मस्करी की जब बात चल गई तो मस्करी मस्करी के मायने कई बार है जिको नुकसान हो जावे
0: हो जा हंसी में खांसी हो जा
1: हंसी में खांसी जब क्या करे ना ज्या कहे ने घणो है तर लाड लड़ावा अमृत बरसे नैण घणो है तर लाड लड़ावा अमृत बरसे नैण थारे आंचल री छाया में पाऊं सगड़ो चैन
0: ठीक बात है अब देखो एक कहानी और कुलबुला बा पाड़ी एक कुलबुला और माइन मारतो एक एक और बुझ लो
1: ठीक है बुझ लो
0: भाई इसी कौन सी चीज है जकी बिना पगांगे तो चाले और बिना मुंह के बोले
1: बिना पगांगे चाले
0: बिना पगांगे तो चाले दबिया दब चाले और बिना मुंह के बोले
1: अब देखो पंकज भाई फिर थे तो आज ये मन पालिया में उलझा लियो आज थे ए पाली मतलब अपा बडेरा गन बैठा को नहीं अहीं आपा सीखी को नहीं
0: भाई थे बा पाली पूछ के छेड़ दियो वो छेड़े बाद में तो धन भेरो देखो राग तो छिड़ेगी
1: तो ई खातर आपा अपने तालवा ने भी कह देवा कि ई हल्की पाली पूछने सुनने खातर सीखने खातर अपना गन बडेरा गन बैठनो बहुत जरूरी
0: है। मारी जिक्याडी है बिको अर्थ है आवा पूर्ण इके पक्को नहीं हो लेकिन कितनी जोर उबाग है और नए के जवान हो मुंह थोड़ी है पर फिर भी
1: संसना करे
0: अन दिया हुआ ने जब अपन 15 मिनट पहली बेरो पड़ जाए संसना तो सुन जाए तुम्हारी आड़ी को अर्थ है ओ,
1: ओ।
0: अब तो, देखो अयूब भाई आपा दुआ मुआवरा का भी चाल पड़िया पाली भी बूझ ली अब वक्त है गर्मी को लू को तातेड़ को और वो वक्त सहमे सिद्ध है भले ही मानस होवे भले ही धन पशु होवे भले ही कोई जीव जंतु पखेरु है पेड़ पौधा ही अपना सहमे वो फोड़ा गल है तो यू बचने की जगह जुगत इन्हें सही तरीके सहज के आराम आपा किया निकल सकाई कमाई नो अपने शरीर ने अपने पशुधन ने अपने घर के माहौल ने आप गर्मी के महीने क्या बचा के रख सका सही तरीकों के मेंटेन कर सका आप बताओ आप अपने
1: बिल्कुल देखो पंकज भाई बखत सारू आप अपने हितड़वा ने बताता भी रहा कि गर्मी के मौसम में अपन इस तरह से अपनो बचाव करनो है इस तरह से अपने पशुधन को बचाव करनो है तो गर्मिया में लू से बचने के लिए देखो सबसे पहला आप अपने बडेरा की तरफ बढ़ा तो पंकज भाई एक तो अपन को पहनाओ एकदम सूती
0: बिल्कुल
1: सिर से लेकर पगा तक है जिको ढकेड़ो शरीर
0: हाँ।
1: सिर पर पगड़ी
0: बिल्कुल
1: सूती चोलो और धोती और पगा गमाइने जूती इसे लू को भी बचाओ गर्मी से भी आपा बच सका और गर्मी से खान पान
0: रेण सेण खान
1: पान
0: अब थे देखो खान पान की जो बात छेड़ती ने तो एक तो गर्मी जकी है ने जो गर्मी की पहली आप बात करा तो गर्मी पड़ने तो आप रोक सका भाई मौसम में गर्मी तो पड़ेगी लेकिन भी गर्मी जको असर है बिना आप कहीं कम कर सका के उपाय हो खाने की और पीने की जो तंग थी बात करी तो एक तो एक के गर्मी के महीने तरल जको है वो अपन ज्यादा लेने की जरूरत है लिक्विड ज्यादा लेने की जरूरत है सब पहले तो पानी ज्यादा पियो शरीर में पानी की मांग ज्यादा हो एक बाद में जे आप ठंडी तासीर की जगह चीजा इन्हें वे खावा दिन के जय मान लो कलेव करा तो रात में खिचड़ी बना ली कोई दलियो बना लियो बिना दही के सागे खास का ठीक है ने एक सागे सागे रात ने जे आप बाजरो मुख्य भोजन है बाजरे की रोटी आप पो के छोड़ दी दिन के बिन दही के सागे छके सागे खास का बात जे सब्जी की करा तो सब्जी के मायने भी ठंडी तासीर की सब्जी है जैसे काकड़ी है कोई लोयो है तोरू है घिया है टमाटर है इन की ठंडी तासीर की जगह सब्जी है बना पा खास का सलाद जको है सलाद भी इस समय बहुत मायनो रख
1: बहुत जरूरी भी
0: जरूरी है जैसे खीरो है ठीक है ने काकड़ी है
1: प्याज
0: दरियो है प्याज है कांदो है तो सब्जी है लेकिन अनापा सलाद के रूप में भी ले सकता पानी की पूर्ति भी करे और पीने की जो बात करा आपा तो पीने के मायने पानी ज्यादा पियो तो चर्चा करी ली एक सागे सागे पुदीने को रस भरपूर अपन लेना चाहिए नींबू को पानी पीना चाहिए बील को रस जो है वो इस मौसम में रामबाण होवे तो आप बील को रस पियो गन्ने को रस है पुदीनो नींबू गाल के जे पियो तो वो जोर को रहे बाजार के महीने ठंडाई भी मिले अलग अलग मिश्रण की ठंडाई भी आप इसका गोंद के तीरों है वो भी बहुत ठंडो रहे एक पुराने टाइम के महीने अभी भी हालांकि घरा में बने बीरबा ने बनावे इसी बात को नहीं है जकी कैरी हो नहीं को कैरी को पानी
1: को पानी इमली को पानी
0: इमली को पानी इमली को पानी तो अलग चीज है खाद्य के हिसाब बोले आप कोई खिचड़ी गए भैया सागर लिया लेकिन कैरी को जो पड़ो है ना कैरी को पानी है वो पीण के काम में आवे वो गर्मी में बचावे बी कमाई ने बुनेडो जीरो भी गेर दिया काली मिर्च भी गेरा लौंग लांग गेर केर वो इस टाइप में बने के वो गर्मी के महीने शरीर ने पोषण दे गर्मी में बचावे ठीक है ना फिर जय आप बात करा कि भाई पीना और खानो सागव है तो ई बखत के मायने और जको आपने आंचल के मायने ई एरिया के मायने सबसे ज्यादा पौष्टिक सबसे ज्यादा स्वाद और आपने शेखावाटी की आन बान और शान एक इशो व्यंजन है जकन आप बोलना राबड़ी
1: अब राबड़ी की जब पंकज भाई बात आ गई तो मेरे एक कहावत है भाई याद आ गई, बाजरे री राबड़ी और बिलोणे री छाछ। अब देखो

0: बिलोण और बाजरे की राबड़ी आज के टाबरा ने जी को पंकज भाई
1: आपको स्वरूप जो है वो धीरे धीरे खोती जा रही है
0: खोती जा रही है। बाजरे री राबड़ी और बिलोण री छाछ तपती इन दोपहरी में आई सांचो सांच।
1: बिल्कुल बिल्कुल बहुत जोर की बात कही थे और ई बात में आगे बढ़ावा के तपती जगी दोपहरी है बिक मायने इन बढ़िया साथ कोई कौन देश के बढ़िया चोखो खाटो ओल के ठीक है ने राबड़ी बनाई डी होवे और जे थे बताओ भैया बिलोणे की छाव है एक कांदो गेरले मायने और बढ़िया रात की बाजरे की रोटी पड़ी बिन थोड़ी सी खीरांग के मायने मान लो सेक ली और बिन मरको के और दिन के पहले मान लो खाके जे धड़ंग हो जाए मानस तो छिपे ताई सारे को नहीं किचो ही चाहे लू चाल वो करो न तो उड़ो वे और न लू के सारे तपत के सारे
0: दोनों से बचाओ
1: दोनों बचा तो राबड़ी जकी ने बिन गाल कांदो दिन के पहले जे अपन चेप लिया ने तो फिर छिपे ताई न चीता ठीक है ने। फिर खाने की अपन बात करा तो गर्मी के महीने जको गुलकंद है ने वो गुलकंद भी पेट के लिए निरोग रखने भी पेट ने ठंडो रखने भी बहुत कीमिया है बहुत कीमिया है और गुलकंद भी तो यहां भी बताऊं कि गुलकंद पेट की 100 बीमारियों का एक इलाज है गुलकंद ठीक है ने। तो गुलकंद जको है वो एक निश्चित मात्रा का महीना अपा खास का अब रसोई की जहां पर बात करा तो जकी चौमासे की अपनी सब्जी है ना कि सुकेड़ी करा चाहे टींडसी होवे चाहे काचर होवे लोयो होवे फोफड़िया खेलरिया ये भी बहुत ठंडा रहे इन आप कड़ी बना के खासका सूखी सब्जी खासका ए ठंडी रहे। फिर सूप जकी है ना सूप सूप आपने रसोई को मसालो है सूप भी बहुत ठंडी रहे। सूप को पानी जको है वो शरीर ने पोषण थी
0: बिल्कुल
1: शरीर ने ठंडो रख और पेट की जकी गर्मी है बिन भी दूर करे ठीक है ना। एक सागर अयूब भाई ए वक्त के मायने और आपने जकी धरती है आपने जकी जमीन ने बा एक नगीनो और पैदा करे और उपजावे हालांकि असालां के मायने मात्रा बहुत कम होगी लेकिन
0: भोगली
1: फिर भी
0: मात्रा में की बात है वो जान गयो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भोगली जको है ना वो यहाँ मान लो थे ई गर्मी के महीने खाने के मामले में राम बाण जकी आपने धरती को उपहार है अपन फोगलिया ने खास तौर पर रायता के रूप में काम में लिया बढ़िया जको फोगलिया बिन चुके छांट के और उबाल के बढ़िया मीठो जे दही होवे थे बताओ भैया पूरे दिन को कड़ावनी मस्के सीजेड़ो पकेड़ो और भी दही के मायने जे फोगलियो गेर के आप
0: रायतो बना लिया
1: तो बिकी जकी तासीर ने बाया मान लो थे सुरक्का सा एहसास करा दे बढ़िया बाजरे की रोटी जे चूंटियो घी मिल जा और मिल जा सागा आपने रायतो फोगलिए को तो मैं तान बताऊं या मान लो थे एक जाड़ तो खा और एक जाड़ तरसे
0: सूरज अमेरिका निकट आवे
1: सूरज का जका देवता ही ने वे भी इसे भोजन ने तरसे वो जो को भोजन है ने जकेर की आपा बात कर दिया वो भाग्यों भी नहीं मिले लोगों ने नाम को बेरो है फोटो भी देख सके लेकिन खाने की भी दुकान बैठे वो भाग आपा ही लेके आया जका ई एरिया में रह रहा ई आंचल में रह रहा
0: देखो क्या करे ना कैर कुमटिया सांगरी तरसे देव अधीर तो आपने राजस्थान की कहावत भी एक भी कैर कुमटिया सांगरी अपने जिको फोगलियो ने वापस शामिल कर लिया तो फोगलिए की जिकी कैरिये की सांगरी की और वो सीजन भी है पंकज भाई ये सीजन का महीना अपन ने कोई खाने के रूप में विशेष रूप से अपन इस्तेमाल है वो करनो चाहिए।
1: एक सागे सागे थे जिकी पहनावे की बात करी अब देखो विपर भी आशा पहनावे की बात करी बिना बात पूरी थोड़ी होगा अपनी पहनावे को वो है कि शरीर पूरो ढकेड़ो है पूरी बाया को एक थे जकी बात बताई गई सुत्तु गब्बो है सुत्तु गब्बे की एक खासियत है कि सुत्तु गब्बो एक तो पसीनो सोस ले दूसरी बात आवाज की है बिना शरीर तक पहुंचावे बिना छनके जाए थे टेरिकोट का या आजकल सिंथेटिक जगह प्लास्टिक सा चाल जाए पे पैर बलाए लो बे सोरा भी उसके वजन में भी हल्का उसके लेकिन तो शरीर के लिए उपयोगी कौन है उसका आराम कौन दे इसके में तो एक तो आके सुत्तु गब्बो पैर दूसरो शरीर ढकेड़ो है चोलो भी है पजामो है बुरशेट है जो भी है कोशिश आ करा कि थोड़ा खोड़ा खोड़ा में ढीला ढीला में चिप तो नहीं होगा शरीर के एकदम सिर जको है बारह निकला तो सिर ढकेड़ो जरूर होना चाहिए, भले चाहे आप तोली हो वे, कोई लुंगी हो वे, कोई गब हो मड़ासी मार लिया ढक लिया, चाहे टोपी हो, आजकल बाजार में टोपी भी चाल रही, टाबर छोटी उम्र का टाबर हो, मड़ासी मार लो तोलियो सिर पर लेनो बन थोड़ो
0: सोखो
1: हो लागे शर्म आवे तो बे टोपी पहस के। बाकी देखो कपड़ो तो कपड़ो, ये कपड़े की ओढ़ दिखी है, दूसरी चीज कौन कर
0: सके,
1: मतलब जे आप कोई लंबो 5-7 फुट को रखा ना तो बिका और इस्तेमाल भी उसके कटे बैठा तो जगह झड़का लिया,
0: झड़का गिर
1: आटेड करनी हो तो बिछा के आडा हो जावा, टोपी होने तो जगह साफ होने, टोपी जगह बिछे
0: आटेड हो
1: भाई आटेड कटाऊ करा तो गाबो जो कुछ है वो हमेशा ही लाभदायक रहे, गर्मी के मौसम में सिर पर गाबो रखना जरूरी। दूसरी बात कि जे बारे निकला तो बारे निकले को टेम अपन तय करना चाहिए, जोर की जकी गर्मी है दो पैर की बिन टालने की जोर
0: टालनो है
1: भाई, दिन के मान लो 10-11 बजे पहले जाए आओ, छिपे जा तो 4-5 बजे बाद में चल जाओ, पर फिर भी आयु भाई आप सामाजिक प्राणियां घर में रहनी आदमी यार इसी जरूरत पड़ी जाएगा जानो भी पड़े तो जानो पड़े बठे एक चीज जरूर ध्यान रखने की जरूरत है, एक तो जगह आप बात करी पूरे बाया को गाबो पैर के जानो सिर पर गाबो लेनो, दूसरी बात जके काम जावा आपनो काम जो सरग्यो तो फिर बैठे रुक के न तो चौधर करने की जरूरत ज्यादा न इन्हें भी न मुंह पाड़ने की जरूरत, जो आपनो काम सरग्यो तो ही आप अपने घर
0: बावड़ा
1: कहने को मतलब गर्मी के मायने जितना ज्यादा बच सकांगा बितो ही फायदो है। एक सागे सागे एक अपील आप अपने हितागो कराइया हमेशा आज फेरू करा, गर्मी बचने को प्राकृतिक जगो तरीको वो है कि आप अपने रहवास के चारों ओर पेड़ लगावा,
0: बिल्कुल
1: कोई भी घर के बार की अगर पेड़ आग रहे ही तो भी घर के तापमान में 4-6 डिग्री को 5-7 डिग्री को 6-8 डिग्री को अंतर जको है वो सिर्फ पेड़
0: दिखाई बिल्कुल। तो पंकज भाई अपना इताड़वा ने एक बार फिर अपने कार्यक्रम के माध्यम से कहूंगा कि गर्मियों बचने के लिए अपने दिन के नाश्तो करके भरपेट खाली पेट अपन बिल्कुल भी नहीं निकलना है, और उसके बढ़ तक 12 बजे से लेके 4 बजे के टेम ने टालनो है भी टेम ने, और फिर भी कोई अलग परिस्थिति बन गई टेम ने कौन टाल सका तो खानो खा के आपके घर आर पानी की बोतल है बस अगर लेके निकलो और आपको काम सरता ही पाछा आ जाएगा घर बावड़ो। पंकज भाई बातचीत तो आप और भी अपने तालवान से कर सिया, अब बखत है गीत संगीत को और सुनावा है का मीठी सी लोक रचना।

0: को नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
2: किसान भाई, आ संदेश पाछो आपरो कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत। और पंकज भाई, इस संदेश में पहला अपना इताड़वान आपा एक मीठो सो लोकगीत सुनायो अनुराधा पोडवाल और साथिया की आवाज में। और अब अपने कार्यक्रम ने आगे बढ़ा और करा आपा
3: बकर बकर बात।

0: ये गलती होगी कृपा कहो की होगी। बोली मेरो जद ब्याह करियो ने जद मैं ब्यावली गई जब मेरी सासू मुंह दिखाई गए मैं मन चार लाल दी गए लाल मैं एक चील दम बान गया आलम छोड़ेगी और मैं भूल गई बठों आ गई जब मैं आती लिया ती तो आज आपने दुख पानो को नहीं होता फोड़ो को नहीं होता अपनो काम और सावल चाल तो वो जगराम तो वो बात सुने ही हो बन फेरो थोड़ी है वो वही है
1: वही है
0: क्यों तो पिछाड़ी गई
1: बदल लियो
0: वो भी टाइम बन गए बोले भाई काम कुम कर लियो अभी तो करूंगा मैं मेरा हिसाब कर दियो मैं जासियो भाई क्यों भी निकलो वो जगह ले जावा तेरा यार ले वो घर आ गए अभी आलम हाथ मारियो जाते ही हाथ मारियो उसमें लाल ला दिया लाल तो दे समझो बहुत महंगी चीज हो गए वो किया बने चार बन बेच दी बेच कर मोटा पिस्सा आया व्यापार शुरू कर लियो अब अयुब भाई बखत जको है बत फिर की हुए थे फिरत गिरत की छाया बखत घूमे और भी को व्यापार जको वो चाल पड़े जब थोड़े ही टाइम में पूरे एरिया के मायने चर्चा होगी जगराम सेठ जगराम सेठ जगराम सेठ बड़ो सेठ बन गयो अब बड़ो सेठ बन गयो बात तो देखो उड़ती उड़ती छणती छणती सासरे ताई भी जाएगी
1: पहुंचेगी
0: बड़े बात पहुंची जब ताजुब हो कभी आपने जुआई तो थोड़ा से टाइम में बढ़िया तरक्की करी बढ़िया पैसा बनाया बढ़िया पैसा कमाया बड़ो नाम हो गयो बड़ो काम हो गयो तो बोले तो के भाई अब बेटी ने घर रख लो कोई समझदारी को नहीं बड़ पानड़ी लिखी पुराने टाइम में तो देखो
1: पानड़ी होया करती
0: बड़ पानड़ी लिखी के भाई जकी होई गई गैल गैल की बात माफ करो और थारी व्याप्ता है थारा जन्म जन्म का साथ है इन आओ
1: और ले जाओ
0: लेके जाओ जगराम तैयार होगा भाई लुगाई है तो लेनी भी चाहिए
1: लेनी भी
0: तो वो देखो लवाजमो पूरो लियो घोड़ार बग्गी रथ हर बे सब ले गए चलो गांव के गोरों पुंचे जहां धूल उड़े ऊपर यहां बेरो पड़े जाए कोई साई सवारी आ रही है
1: घोड़ा की टाप से वे धूल तोड़नी है
0: और बटे गए जब देखो सासू न्यारा छेछवा कर दी है सुसरो जको वो न्यारा छेछवा कर रियो है जगराम जी मानस बरका मानस तो जगराम जी है ठिकाना तो मारा घना ही है पर जगराम जी आलो सो ठिकानो बनी आज चारों मेर सगड़े तुत्ती बोले मारो जुआई जगो है अभी की चर्चा चल है सासू है जगी कदे कोई भांत भांत की चीज बना रही है कदे क्यों ही बना रही है
1: नैरा नैरा स्वाद
0: हाँ जद जगराम कहो बोले सासू जी थे थानी भी गलती को नहीं थे थारी जगह हो आ दुनिया जकी है आईनो दिखावा आदमी ने दिखावे भी की औकात बतावे बिन बिन पिछाण बतावे जब्बा कहो कि थे या बेकी बेकी बात के यहाँ करो सासरे आया वो कुकड़ लगवाओ आराम जी मो ठाट करो थारे के चीज की कमी है जब कहो कि मैं तो बोई जगराम हो जकन थारी बेटी जी के बाद छोड़ के आ गई अब मेरे जद में के अंतर है वो मैं थान समझा दूंगे जब्बा कहो बता दियो जद वो कह है जगराम के कह कह माया तू है ठगणी ठगो है
1: माया तू है ठगणी
0: नाम धरियो जगराम बिगो नाम जगराम होने कह माया तू है ठगणी और नाम धरियो जगराम पिस्सा नहीं आ पास में जगदीन पिस्सा को नहीं अमेरिकन कह माया तू है ठगणी नाम धरियो जगराम और पिस्सा नहीं आ पास में जो क्यों पड़ गयो नाम भाई घर का नाम तो मेरो जगराम धर के गया मेरो बाप जगराम धरियो लेकिन माया ठगनी आप मन ठग लियो जगदीन मेरे को माया नहीं ने भी दिन मेरो नाम के पड़ गयो जोकियो लोग मन जोकियो कहता और थारी जानकारी के लिए बता दू मैं जोक कठे नाक के कौन गेरी कठे गेरी जोक ई थाली बठी में गेर के गयो जोक जद भी सासू के आंख हुई थोड़ी तो देखो के आज की पिस्सो है ने जकी माया है इको अयुब भाई कोई सिस्टम को नहीं हो पल के मायने तो राजा ने रंक बना दे जे रूठ के चली गई तो और जे आगिर भाग खुल गया तो फिर अरसु फरसर फरसु अरस टाइम को लगे
1: बिल्कुल देखो थे पंकज भाई माया की जिस बात पड़ी ने कभी माया बड़ी मोह घट्यो माया बड़ी मोह घट्यो बढ़ गयो जग में बैर
0: वासावा
1: सगा भाई लड़ मरे करे पराया खैर करे पराया खैर
0: बात सही है, देखो पिस्सो जो है ना वो माजा है भाई, नहीं लड़ा दे।

0: सीमा मिश्रा और बद्री व्यास की गायडी इ मीठी सी लोक रचना का सा गई। आज को कार्यक्रम बाता ही चाले अठाई ताई फेरू मिलन ताई पंकज भाई ने
1: अयु भाई ने सीख जो करा आपसे
0: राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाता ही चाले। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं आपके ईमेल्स पर आधारित राजस्थानी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गोरबंद।

तो हे बालू कार्यक्रम गौर बंद भारतीय सुन रहे हो आकाशवाणी के चूरू केंद्र से सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज में आते लोक रचना आभार सुन रहे हो। अभी लोक रचना के मायने कुछ मेल और भी है जिका आपा शामिल करा भाई का मेल माने हेतालू लिखकर भेजा है बाका नाम थाने सुनाना चाचा वो मेल मारकन आयो है चूरू से। चूरू से ये हेतालू लिखना रहा है जगदीश यादव, संदीप पाटिल, योगेश जिगोड़, बाबू पाटिल, पिंटू ओझा, मुकेश शर्मा और नवीन शर्मा। ए हेतालू मैंने लिखा है चूरू से। अगली मेल मारकन आई है लिखा है वडिंग खेड़ा से, पंजाब से ये लिख रहे हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा,

और नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से माने लिखकर भेज रहे हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, दिशा गोस्वामी, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक, और फाजिलका पंजाब से मारे कने यो मेल आयो है, लिख रहा है ये भूषण खेड़ा, खेड़ा परिवार का सगड़ा सदस्य है, विशु खेड़ा, विशाल, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, दिवानशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आर बी खेड़ा, जीवन सिंह बूक और खेड़ा परिवार का सगड़ा सदस्य, और गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश, योगेश कड़वासरा, युद्धव कड़वासरा और आका दोस्त है लीलाधर स्वामी। तो या आप फरमाइश पूरी करी सीमा मिश्रा और साथियों री आवाज़ में, अब रफीक सागर और साथियों री आवाज़ में गाइड हो एक लोक भजन की मार्के फरमाइश आई है, और आप लिख रहे हो शीतला गेट बीकानेर से, मोहम्मद शफी खींची, मोहम्मद शरीफ खींची, मोहम्मद सुजैन खींची, नूर फातमा खींची, मोहम्मद आजम खींची, अकमल हुसैन बियानी, अमजद अली खींची और एम शफी मिस्त्री, और गांव जाखोद से लिख रहा है शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। एमान लिख रहे हैं रफीक सागर और साथिया रही गाइडी एक लोक रचना लोक भजन सुनना चाहिए है।

रफीक सागर और साथियों री आवाज में आते लोक रचना बार सुनी मेल ई लोक रचना में शामिल करा लिखना रहा यह है तलु है गांव फ्रांसी हिसार से लिखना रहा है राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार पुष्पेंद्र कुमार चंडीगढ़ सिटी से लिख रहे सतीश नेजा विमला नेजा कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार हैप्पी राय दुविहा नेवादा जिला गाजीपुर से लिख रहे हैं प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय प्रांजल राय गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता और गांव खोखरा वाली गंगानगर से लिख रहे हैं विनोद बरासा विशाल विकास रोशनी और शगुन नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह है पल्लवी शाह है प्रखर शाह है कुशल शाह है नीति सुरभि अश्विनी मंगलाबेन शाह है और राजेंद्र जी शाह है सादुल शहर गंगानगर से लिख रहा है रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी नसरीन अंसारी नौरीन अंसारी आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी मारहरा दरवाजा एटा से लिख रहा है नबी हसन अब्बासी शहनाज नवेद हसन सुहेल हसन राशिद वारसी अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी सिकंदरा राउ से मुबीन अब्बासी लिख रहा है सागे सागे पदमपुर जिला गंगानगर से मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति और भूमिका सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से लिख रहा है टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह ठाकुर कालका से शुभचंद्र बजाज बिट्टा बजाज रघुनाथपुरा जिला गंगानगर से लिख रहा है लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी एमाने या मेल लिखकर भेजा है अगली जी की फरमाइश आई है सुजान सिंह की ची और साथ ही आवाज में लोक रचना सुनना चाहा है लिखन आ रहा है दत्रे की भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा पारसमणि पुष्पेंद्र मणि और नोकेलाल वर्मा दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से मोहम्मद यासिन अंजान और आगा परिवार का सगड़ा सदस्य साइमा नवाज हसन नवाज बाबू अहद मिफरा नवाज और बेबी चाहत सदर बाजार कुरावली से लिख रहे हैं अनिल कुमार वर्मा माया देवी राहुल कुमार विनीत कुमार और सोनम और आपका परिवार का सगड़ा सदस्य तो आप सुना कार्यक्रम की या आखिरी लोक रचना

सुजान सिंह खींची और साथियों री आवाज़ में या लोक रचना अवार्थे सुन रहे हो मेल आपाई लोक रचना के सागर शामिल करा गांव खरखड़ा चौबीसी से लिखे गोलू कागड़ा सागर आशिका और अंशिका के सागर लिखे तमन्ना कागड़ा सैयद मसरूर शाइना हसन नाजिया इब्राहिम गांव कुमारखेड़ा सहारनपुर से लिखा है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा प्रीति कार्तिक आर्यन वर्मा शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से लिखा मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी स्वर्णकार आर्यन कृष्ण और पीहू स्वर्णकार एयरपोर्ट नगर एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से यह लिख रहे हैं नारायण खर्चे ललित खर्चे गणेश कार्तिक परी स्वाति प्रयाग चौधरी ये लिखा है लोको कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया लक्ष्मी देवी सुरेंद्र कुमार चिंडालिया बरखा योगेंद्र कुमार चिंडालिया और नरेंद्र कुमार चिंडालिया सागर सागर का परिवार का सगड़ा सदस्य लिखा है मुकाम पोस्ट फूल चिंचोली तालुका पंडरपुर से लिखा है जाकिर मुलानी सुमैया सुबान सलमा मुमताज दिलशाद नासिर बानूबी और बादशाह मुलानी खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू लक्ष्य मल्होत्रा कोयल मल्होत्रा आगा पापा है नानक चंद्र मल्होत्रा शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कुनिका और डुगू आदर्श नगर मलोट पंजाब से लिखा है राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा निवान शर्मा सौरभ शर्मा साइना शर्मा और मैंडी शर्मा जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से लिखा है मोहम्मद फरमान मोहम्मद सलमान मोहम्मद इरफान मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून।

तालों यो हो आज को कार्यक्रम गोरबंद थे भी माने मेल भेज सको हो ये कार्यक्रम का मायने हर शुक्रवार ने रात 10 बजे लेकर मैं हाजिर हुआ हाँ। मारो ईमेल एड्रेस है gorbandchuru@gmail.com। अब देव सीख करा राम राम। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोरबंद, यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा बांसुरी वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया द्वारा बांसुरी वादन। यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब से

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जाँच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जाँच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 107.7 MHz पर। शोधन रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी सायकालीन सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह पहली सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।